0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6 बजे हैं।
2: छह बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। कुछ अहम खबरें जिन्हें हम विस्तार देंगे साढ़े छह बजे के समाचारों में। राज्यसभा में बजट का बहस जारी। श्रम मंत्री गिजाउद्दीन ने बजट 2026-2027 को साहसिक और जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार जरूरी है। उन्होंने मैटरनिटी लीव को एक वर्ष और पैटर्निटी लीव को 6 सप्ताह तक बढ़ाने के फैसले का भी स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम द्वारा मीन्स टेस्ट को फिलहाल स्थगित करने के फैसले का कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने स्वागत किया और नवाब मुगीस ने इसे जनता की आवाज की जीत बताया है। उधर बजट 2026-2027 में कलाकारों के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया और सरकार से इन घोषणाओं को जल्द लागू करने की अपील की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे। फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर अंतिम 32 में अपनी जगह पक्की कर ली है। इस मुकाबले में लियोनेल मेसी ने दोनों गोल किए और इसके साथ ही वे विश्व कप इतिहास के सबसे सफल गोल स्कोरर बन गए हैं। और अब चलिए जानती है मौसम का हाल। मस्करिंस के दक्षिण पश्चिम में एक जोर

0: दार एंटीसाइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर सामान्य और ठंडी हवाओं का असर बरकरार रहेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज सुबह के दौरान विशेष तौर पर ऊंचे इलाकों पर बरसात हो सकती है और अन्य जगहों पर धूप खिली रहेगी। शाम को और रात को भी पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर रहकर बरसात होगी और बादल घिरे रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में नहीं निकलने की मांग की जाती है। तापमान न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 14 से 16 और अधिकतम 20 से 23 डिग्री, न्यूनतम साहली इलाकों पर 18 से 20 और अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 7:45 बजे, सूर्यास्त 5:39 पर होगा।
1: RM3 Radio.

0: अमीन का टाइटल अता फरमाया। सो इन असबाब की बुनियाद पर हुजूर सलाम ने उनसे मोहब्बत की। अल्लाह पाक हमें भी सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।
1: सामीन, अभी आप इरफानी हक्कानी बयान बल्कि सिलसिलावार बयान जुमा मस्जिद की जानिब से मुफ्ती मोहम्मद सक्काद रज़वी दामद बरकातुहुम अलैह की ज़बानी समात कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।

0: सामी, जिसके आगाज महफिल में हमने आपको बताया था कि आज अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद शाकिर अली नूरी दामत बरकातुहु मालिया की ज़बानी जो बयान हम आपको गोश गुजार कराएंगे वो है फ़लसफ़े वाक़ियात करबला। इस बयान का पहला हिस्सा हम आपको गोश गुजार करा रहेंगे इंशाल्लाह, इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा अगले हफ्ते इसी वक्त हम आपको पेश करेंगे। समाप्त कीजिए फ़लसफ़े वाक़ियात करबला।
1: फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तकूलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात بل احیاء ولكن لا تشعرون صدق الله العظیم।

मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला के ताजदार इमाम हुसैन रजी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेंगे। अब मैं थोड़ा सा मौजूदा हालात के पेश नजर फलसफे शहादत और करबला का पस मंजर आपके सामने पेश करूं। सवाल ये पैदा होता है, आज पूरी दुनिया में जिस तरीके से इमाम हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश किया जाता है, इतना किसी और शहीद की बारगाह के अंदर खराज अकीदत पेश नहीं किया जाता। क्या इमाम हुसैन के करबला के अंदर वाके होने वाले उस वाके से पहले कोई जंग वाके नहीं हुई थी? करबला में भी जंग वाके हुई थी और अहद के मैदान में भी जंग वाके हुई थी, बद्र में भी जंग वाके हुई थी, हुनैन में भी जंग वाके हुई थी और गज़वे खंदक जिसका तज़किरा कुरान मुकद्दस में सराहत के साथ मिलता है, यह जंग भी हुई थी। लेकिन मुझे बताइए, आज अगर मुसलमानों से पूछा जाए इमाम हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की तारीख कौन सी है, तो आज का मुसलमान बता नहीं सकेगा। क्या हजरत अमीर हमजा की शहादत एक अजीम शहादत नहीं है? यकीनन बहुत अजीम शहादत है। अल्लाह अकबर, उनके कलेजे को निकालकर चबाया गया था और बेदर्दी से उन्हें शहीद किया गया था, उनके जिस्म के आजा को अलग अलग किया गया था, आप अंदाजा लगाएं। लेकिन दुनिया का इंसान उस तरीके से खराज अकीदत हजरत अमीर हमजा की बारगाह में पेश नहीं करता जिस तरीके से इमाम हुसैन की बारगाह में खराज अकीदत पेश करता है। क्या हजरत उमर फारूक शहीद नहीं हुए थे? क्या हजरत उस्मान गनी शहीद नहीं हुए थे? क्या हजरत मुसब इब्ने उमर शहीद नहीं हुए थे? क्या हजरत अब्दुल्ला बिन जहश शहीद नहीं हुए थे? यकीनन ये सारे शहदा हैं, लेकिन क्या बात है, जंग याद है तो करबला की और शहीद याद है तो इमाम हुसैन। जानते हो ये परवरदिगार की तरफ से एक निजाम है, ये परवरदिगार की तरफ से एक इंतजाम है। मेरा परवरदिगार अच्छी तरीके से जानता है, वो अलीमुन बिजाती सुदूर है और अलीमुन खबीर भी है। वो जानता है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती चारों तरफ से नरगे के अंदर आ जाएंगे, तो कभी ऐसा भी मौका होगा उनकी निगाहों के सामने उनके बच्चों को शहीद किया जाएगा, उनकी निगाहों के सामने उनके घर को उजाड़ा जाएगा, उनकी निगाहों के सामने उनको परेशानियों में मुब्तला किया जाएगा, उनकी निगाहों के सामने बुरा भला उन्हें कहा जाएगा, उन पर पानी बंद किया जाएगा, सोशल बायकॉट किया जाएगा। इमाम हुसैन से पेशतर के वाकयात और जंगों का मुताला करें तो पता चलेगा कि करबला के ताजदार का जिस तरीके से घेराव करके और जिस तरीके से करबला में जो जंग वाकई हुई, इमाम हुसैन से पेशतर जितनी भी जंगें करबला से पेशतर हुई है उसमें जंग का यह नक्शा आपको कभी नजर नहीं आ सकता। परवरदिगार ने इस जंग को इसलिए ताजा रखा ताकि जब जब मुसीबत आए तो मुसलमान घबराए नहीं बल्कि शुक्र अदा करें कि इस मुसीबत से गुजरना नबी के नवासे की सुन्नत मुबारक है, इस परेशानी से गुजरना नबी के नवासे की सुन्नत मुबारक है। 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है, लेकिन क्या कोई यह पेश कर सकता है कि इमाम हुसैन खौफजदा नजर आ रहे थे? क्या इमाम हुसैन की पेशानी पर शिकन नजर आ रही थी? नहीं नहीं, इमाम हुसैन न घबरा रहे थे, न इमाम हुसैन की पेशानी पर शिकन थी, न इमाम हुसैन खौफजदा थे। सवाल यह पैदा होता है, हम तसव्वुर से डरते हैं और वो तलवारों को देखकर नहीं डरते थे, हम तसव्वुरात से खौफजदा हैं, वो दुश्मनों के लश्कर जर्रार को देखकर भी खौफजदा नहीं थे। सबब क्या है, वजह क्या है? तो आज ये कुरान से हम पूछते हैं। मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, जो मेरी हिदायत का इत्तेबा करे न उसे कोई खौफ होगा न वो गमगीन होगा। इमाम हुसैन तबीयत के पैरोकार नहीं थे, मुस्तफा की शरीयत के मानने वाले थे, रसूल की शरीयत के पैरोकार थे, इसलिए इमाम हुसैन को खौफ नहीं था, इमाम हुसैन को खौफ नहीं था, इमाम हुसैन लर्जा बरंदाम नहीं थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर जर्रार ये किस बात की अक्कासी कर रहा है? वो जानते थे हक अगर चंद नुफूस कुदसिया पर मुश्तमिल हो तब भी बातिल उससे खौफजदा रहता है। वो लोग जानते थे कि इमाम हुसैन चंद अफराद पर मुश्तमिल काफले के साथ जरूर हैं, लेकिन अल्लाह के रास्ते पर चलने वाले हैं, रसूल की शरीयत पर चलने वाले हैं, हक के आलम बरदार हैं, इनका मुकाबला आसानी से नहीं किया जा सकता। कुरान वजाहत कर रहा है, इन यकुम मिनकुम इश्रू नसाबिरून यगलिबू मियतैन, अगर तुम में 20 सब्र करने वाले हो तो वो 200 पर गालिब आ सकते हैं, अगर 20 शरीयत पर अमल करने वाले हो तो 200 पर गालिब आ सकते हैं। यहां कुरान हमें नसीहत दे रहा है, कुरान हमें

हासिल किया, करबला के वाकया से हमने क्या नसीहतें हासिल की। दूसरे एंगल से आप सोचें, मैं अगर इमाम हुसैन के फजाइल और मनाकिब और उनके वाकयात शहादत आपके सामने पेश करूं तो ये बारहा आप सुन चुके होंगे, लेकिन आज मैं आपके गोश गुजार कुछ ऐसी बातें कर देना चाहता हूं जिससे आप असरार शहादत को समझ सके, मकसद कुर्बानी को समझ सके। आप देखें, दुनिया में कोई इंसान जब इख्तदार पाना चाहता है तो इख्तदार की कुर्सी पर पहुंचने के लिए न जाने वो कितने ताने बाने बुनता नजर आता है, न जाने किस किस किस्म की चापलूसी करता नजर आता है, न जाने किस किस तरीके से वो मक्कारियां और अय्यारियां करता नजर आता है, न जाने कितनों की दिलाजारी करता है, न जाने कितनों की लाशों के ऊपर अपने इख्तदार के तख्त को वो कायम करता है। मैं पूछता हूं, करबला के ताजदार भी अगर चाहते तो इख्तदार का वो मामला जिसके सिलसिले में यजीद बरसरे पैकार था, अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन दुआ कर देते तो यजीदी फौज शिकस्त खा जाती, इमाम हुसैन दुआ कर देते तो यजीदी लश्कर के अंदर एक अजीब सी कैफियत बपा हो जाती और बगैर जंग के परवरदिगार फतेह अता कर देता। और सुनो, अगर इमाम हुसैन चाहते तो नहरे फरात पर जो पहरा बिठा दिया गया था, आने वाहिद में नहरे फरात के पानी को अपने कुजे के अंदर वो लाने की ताकत और तवानाई रखते थे, इसलिए कि इमाम हुसैन तो बहुत बड़ी चीज है। जब उनके नवासे गरीब नवाज का ये आलम हो कि अनाज सागर को एक प्याले में वो जमा कर सकते हो तो इमाम हुसैन का आलम क्या होगा, वो रसूल के नवासे का आलम क्या होगा। लेकिन इमाम हुसैन जानते थे कि मेरे नाना के उम्मतियों पर मसाइब के पहाड़ टूटेंगे, उस वक्त करामत दिखाने वाला शायद कोई ना हो, तो उस मौके पर मेरी जिंदगी को याद करके वो ये सोच ले कि अगर बायकॉट भी किया जाए, पानी पर पहरा भी बिठा दिया जाए, तब भी हक से एक लम्हे के लिए अपने कदम को हटाना नहीं है, साबित कदम रखते हुए हक के लिए अपनी जान कुर्बान करने पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है। आप देखें, इमाम हुसैन के मुकाबले में जो लोग थे वो कौन थे? वो अल्लाह को एक मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते थे कि नहीं मानते थे? मानते थे। कुरान को खुदा की किताब मानते थे या नहीं? मानते थे। अरे हद तो यह है कि इमाम हुसैन को अल्लाह के रसूल का नवासा भी तस्लीम करते थे। तो नबी का नवासा तस्लीम कर लेने के बावजूद इमाम हुसैन से मुकाबले पर क्यों आमादा हुए? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अल मौला तबारक व तआला अन्हु के खून के प्यासे क्यों हुए? तो याद रखो, इख्तदार का नशा बड़ा बुरा नशा होता है। जब इख्तदार के नशे की पट्टियां आंखों पर बंध जाएं और इख्तदार की हवस दिलों के अंदर पैदा हो जाए तो यह नशा इतना खतरनाक नशा है कि मां अपने बेटे को कत्ल करवा देती है, बाप अपने बेटे को कत्ल करवा देता है, बेटा अपने बाप को कत्ल करवा देता है। और यह नशा इतना बुरा है कि नबी के नवासे पर जुल्म और सितम ढाने से नबी का कलिमा पढ़ने वाला भी गुरेज नहीं करता। और रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी भी इख्तदार के हवाले से, इख्तदार के नशे में चूर रहने के हवाले से अपने गुलामों को, अपने मानने वालों को तालीम नहीं दी, इसलिए कि यह नशा ऐसा नशा है कि लाशों के अंबार खड़े कर दिए जाते हैं और बेगुनाहों को कत्ल गारतगिरी के समंदर में ढकेल दिया जाता है। इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु से बैत लेने पर इतना इसरार क्यों था? क्या वजह थी उसकी? और इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जान देने के लिए तैयार है लेकिन यजीद की बैत कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आखिर उसकी बैत ले लेने से, उसकी बैत में आ जाने से, उसको खलीफा तस्लीम कर लेने से कौन सा ऐसा नुकसान था? इसको समझो बहुत अच्छी तरीके से और फिर अपने वजूद का हम खुद एहतसाब करें। तो करबला से जो पैगाम मिल रहा है, हम उस पैगाम की रोशनी में अपने मुस्तकबिल को भी देख सकते हैं, अपने हाल को भी देख सकते हैं। इमाम हुसैन ने जब आंख खोली थी तो हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इफ़ार को देखा था। इस्लाम की आबियारी के लिए सरकार की कुर्बानियों का मुलाहिजा उन्होंने किया था। इमाम हुसैन ने देखा था कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तरबीज और इशाअत के अंदर कितनी मशक्कतों को बर्दाश्त करते हैं। इमाम हुसैन ने देखा था कि कुरान मुकद्दस के खिलाफ एक लफ्ज भी अल्लाह के रसूल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और कुरान के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार शब्बेदारी भी करते हैं, पेट पर पत्थर भी बांधते हैं, लोगों की गालियां भी सुनते हैं, लोगों की तरफ से मिलने वाले पत्थरों को, जख्मों को बर्दाश्त करते हैं और इस्लाम के चेहरे को अच्छी तरीके से लोगों के सामने पेश

0: करते हैं, और जब भी इस्लाम के खिलाफ किसी का अमल होता है तो सजा और जजा के हवा, इस्लाम के खिलाफ किसी का अमल होता है तो सजा देने से इज्तनाब नहीं करते। इस्लाम की असलियत और इस्लाम की खूबियों को लोगों के सामने पहुंचाने के लिए सरकार ने मशक्कतें बर्दाश्त की। इमाम हुसैन ने हुजूर की जिंदगी का मुताला किया था, हुजूर के दर्द दीन का मुताला किया था, हुजूर की शब्बेदारी का मुताला किया था, हुजूर का इस्लाम के लिए कुर्बानी के जज्बे का मुशाहिदा किया था। अल्लाह अकबर, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन कुर्बानियों को देखने के बाद जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फर्शे गीती से दागे मुफारकत दे जाते हैं तो सिद्दीक अकबर के दौरे खिलाफत को इमाम हुसैन ने देखा। अल्लाह अकबर, वो सिद्दीक अकबर जिनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा इताअत रसूल में गुजरता था, सिद्दीक अकबर की सुबह शाम का मुताला कर रही थी। अच्छा, खलीफा ऐसे होते हैं, खिलाफत के मनसब पर फाइज होने वाले, इस्लाम और मुसलमानों की ऐसी खिदमत करते हैं। अल्लाह अकबर, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद फारूक आजम, और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कितना अजीम जज्बा पेश फरमाया। आज दीन हम ये समझते हैं, अम्मामा शरीफ अगर हमने सर पे सजा लिया, हमने इस्लामी लिबास ज़ेब-ए-तन कर लिया और पंच वक्ता नमाज के अलावा तहज्जुद के आदी बन गए, हम अपने आप को बहुत बड़ा दीनदार समझते हैं। लेकिन दीन की असलियत को और अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी के साथ साथ असली दीनदारी को मजीद समझना है तो फारूक आजम के उस जज्बे को देखो कि जब फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर नमाज पढ़ा रहे थे और एक मजूसी ने जब हमला किया और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु जख्मी होकर मुसल्ले पर जब आ गए, जख्मी होकर जमीन की तरफ जब आ गए और हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ आगे बढ़े और जाकर के उन्होंने नमाज मुकम्मल फरमा दी। फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु को नमाज के बाद जब उनके हुजरे में ले जाया गया तो उनसे उन्होंने होश में आने के बाद सवाल पूछा, बताओ मुझ पर हमला करने वाला कौन था? लोगों ने कहा, हुजूर एक मजूसी था। कहते, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। पूछने वाले ने कहा, हुजूर इस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं? इरशाद फरमाते हैं, हां, इसलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि अगर हसद के एवज के अंदर कोई कलमा पढ़ने वाला मुसलमान अगर जख्मी कर देता और उसके बाद में शहीद हो जाता तो मेरे कत्ल के एवज में उसे जहन्नम में जाना पड़ता। उमर यह गवारा नहीं करता कि रसूल का कोई उम्मती जहन्नम में चला जाए। आप अंदाजा तो लगाइए, यह है दीन का असली जज्बा, यह है दीन की खैरख्वाही। सैयदना फारूक आजम शहीद हो गए, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा के मशवरे से मनसबे खिलाफत पर फाइज हुए, जिंदगी उन्होंने गुजारी, इस्लाम को खूब उन्होंने बढ़ाया। उनके विसाल के बाद, उनकी शहादत के बाद जिम्मेदारी सैयदना मौलाए कायनात के कांधों पर आती है। उन्होंने इस्लाम को फरोग दिया, इस्लाम की तरफ जो इशात होती रही उसके बाद जब वो भी शहीद हो गए तो अब जिम्मेदारी हजरत हसन मुश्तबा पर, हजरत अमीर मुआविया, और इस तरीके से ये सिलसिला चलता नजर आता है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम किताबों में भी नजर आता और लिखे थे, ये झूठे नहीं हो सकते, ये गलत नहीं हो सकते, ये अपनी जिंदगी अजीब बनाए रखे हैं, इनको एक ही तरीका और एक ही चीज पसंद है और वो नबी की शरीयत है, नबी की सुन्नत है और कुरान मुकद्दस पर अमल है। अल्लाह अकबर, फारूक आजम, सिद्दीक अकबर, उस्मान गनी और मौलाए कायनात हसन मुश्तबा रजी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के मुताले के बाद इधर हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है और यजीद अपनी बैत के सिलसिले में जब ऐलान करता है तो इमाम हुसैन ने यजीद के कैरेक्टर को देखा, उसकी सुबह शाम के मुतालिक पहले ही से मशहूर था कि रंगीले मिजाज का आदमी है, नमाजों को कजा करने वाला है, जानी है, शराबी है। अब मुझे बताओ, अगर यजीद की बैत को इमाम हुसैन तस्लीम करते हैं तो पहले जिन असलाफ ने कुर्बानियां पेश की थी दुनिया यही तसव्वुर करती कि जैसा यजीद है माज़अल्लाह इससे पहले वाले भी ऐसे ही थे, तो इमाम हुसैन ने उनकी कुर्बानियां और असली इस्लाम के चेहरे को दुनिया वालों के सामने पेश करते हुए बता दिया कि अगर कोई खिलाफत का दावा भी करे और उसके हाथों में हजारों इंसान बैत भी कर ले लेकिन अगर उसकी जिंदगी शरीयत के खिलाफ हो तो हम ये नहीं देखेंगे कि उसके पास कितनी ताकत है, हमने तो अपने अल्लाह को सबसे बड़ा ताकत वाला माना है, इसलिए उसके दीन के तहफ्फुज़ और इस्लाम के असली चेहरे की खातिर जो भी कुर्बानी देनी होगी हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं।
1: फलसफे वाकयात करबला पर मबनी सामीन ईमान अफरोज बयान अभी आप समाप्त कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अहले बैत आले रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।

खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रदल्लाहु ताला अन्हा ने अपने नौनिहाल को ज़मीन करबला में खून बहाने के लिए अपना खून जिगर पिलाया। अली मुर्तज़ा रदल्लाहु ताला ने अपने जिगर को करबला की ज़मीन में दम तोड़ने के लिए सीने से लगा कर पाला। रहमत दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने राह खुदा में जान नज़र करने के लिए हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला को अपने आगोश मोहब्बत में तरबियत दी। हज़रत इमाम हुसैन रदल्लाहु ताला बड़े होते गए, जज्बा जानिसारी में रोज़ अफजू अजाफा होता गया। यह शहादत का कमाल है, ऐसा ऐलान आम हुआ कि अपने पराए सब जान गए, मकाम से आगाह हो गए, हक का तलब मौला की रज़ा के आगे सर तस्लीम खम किए हुए थे।

सब आखिर प्रोग्राम का मुकर्रर वक्त अपने अख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम को आपने पसंद फरमाया। अगली मुलाकात तक अनवर को रुखसत की इजाज़त। हम आपको बता दें कि अगले हफ्ते इंशाल्लाह फलसफे वाकयात करबला का दूसरा और आखिरी हिस्सा हम आपको गोश गुजार कराएंगे। अपनी दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

ये गो ये महीना पिंजरा बनाया सुनी का सादर करीता हूँ अजय वसा का कंजा वसा

0: रामदास माली। हाँ बोल। पांडरी गाड़ी है? करेक्ट। नंबर बोल। चश्म्याचा नाही गाडीचा। एमएचओ एमएचओ मला शिव्या देतो। एमएचओ 01123 करेक्ट। माल घेऊन टपकाव त्याला। नवेद
1: नवेद पंचावे।

वही आओ अमारी साथे गुजराती कार्यक्रम चाली रहे छे रेडियो मनोरंजन पर अने स्टूडियो ने गलियाण में 10:22 थई गई छे। तो श्रोताओ कहेवाय छे ने कि भाई कुदरत क्यारे शुं पाछुं लई शके छे एनी खबर नथी होती, माटे जे पासे छे तमारी जोड़े छे अने तमारी साथे छे ने तेनी कदर करी लेजो। क्यारे तमारी पासेथी लई जशे क्यारे जतुं रहेशे तमने पण नहीं खबर पड़े, एटले कहेवाय छे ने तमारी पासे जे छे वस्तु एनी कुदरत क्यारे लई लेशे खबर ना पड़े, एटले तेनी जोड़े भाई सारी रीते टाइम स्पेन्ड करी लेजो ने साथे रहेजो ने, के कुदरत क्यारे लई लई आपणने खबर नथी पड़ती। ने आजे मैं तमारा माटे गुजराती कलेक्शनों गीत थोड़ा गरबा ने थोड़ा रास लईने आव्या छे ने थोड़ा गीतो मिक्स एवुं कलेक्शन छे, तो सुंदर मजानो आगलो रास लई लईए तमारा माटे ऑन योर वे।

शक्ति। मंगलवार 23 जून घड़ी मिला लीजिए, दिन के 10:45 हो चुके हैं। रेडियो मनोरंजन पर आप सभी का भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम को लेकर आपकी सेवा में हम आ गए हैं श्रोताओं, और अभी से लेकर दिन के 11:30 तक हम आपका साथ देने वाले हैं। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे हैं और ईश्वर की अपार कृपा आप पर, आपके पूरे जीवन पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे, ऐसी कामना हम करते हैं। और ईश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर हम भी जो है चलने का प्रयास करते रहे। तो चलिए इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ भगवान गणेश के नाम से कार्यक्रम का श्री गणेश हम करते हैं।

जी हाँ श्रोताओं, चिंता मुक्त जीवन हर कोई चाहता है। हर कोई चिंता से, परेशानी से, दुविधा से, संकट से दूर रहना चाहता है। लेकिन कभी कभार होता ऐसा है कि हमारे हालात ऐसे हो जाते हैं, जाने अनजाने में हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, जाने अनजाने में हम कभी ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जिससे निकलना बड़ा कठिन होता है। ऐसे में ईश्वर की शरण ही है जो हमें शांति पहुँचाता है। ईश्वर की शरण ही है जिसमें जाने से हमें हर जो है दुविधा का हल मिलता है, हर परेशानी का हल मिलता है, हर संकट का समाधान मिलता है। बस ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए। कभी कभार एक व्यक्ति जब परेशानी में होता है, जब चिंता में होता है, तब वो अच्छा बुरा इन सब के बारे में नहीं सोच पाता है। तब उसके लिए क्या भला है, क्या बुरा है, इसकी समझ उतनी नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्ति ऐसे ही परेशानी में है। तो इसलिए जब भी हम ईश्वर की शरण में जाते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का सुमिरन करते हैं, इससे क्या होता है, हमारी आंतरिक शक्ति बढ़ती है और इससे हम जीवन में अच्छे निर्णय ले पाते हैं, सही गलत के बीच में जो है चयन कर पाते हैं, और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में ईश्वर ही सहायक है। और ईश्वर के बाद हमारे माता पिता है जो हमें हर परेशानी से निकालते हैं, हमें हमारी हर मुसीबत का, हर परेशानी का, हर संकट का हल उनके पास होता है। और साथ ही गुरुजनों का भी हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव होता है। गुरु अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे जीवन में जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में एक मेंटोर का होना बहुत आवश्यक है, एक ऐसे व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है जिससे जीवन का अनुभव है, जिसे जीवन के अच्छे बुराई के बारे में बहुत कुछ जानकारी, और जिनके अनुभव से हम अपने जीवन को और भी सुंदर बना सकते हैं। तो बस आशा बनाए रखे, विश्वास।

तुम आशा विश्वास हमारे। जीवन एक ऐसी चीज़ है, यदि जीवन में आशा न हो, विश्वास न हो, तो हम कहीं ना कहीं निराशा से घिरे रहते हैं। जीवन में हर कोई अपने जीवन को सदैव अच्छा बनाने का प्रयास करता है, अपने अच्छे कर्मों द्वारा, अपने अच्छे वाणी द्वारा, अपने अच्छे आचरण द्वारा। और ये अच्छाई जीवन के हर हिस्से में, जीवन के हर पहलू में, जीवन के हर एक क्षण में होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि कर्मों को हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व दिया गया है। जो भी बुरा कर्म हमारे द्वारा होता है, जाने अनजाने में किसी भी तरह से, उस बुराई का फल कहीं ना कहीं हमें भुगतना पड़ता ही है, आज नहीं तो कल। अगर ये जानकर भी हम किसी तरह से बुराई का हिस्सा बन गए हैं, बुराई से जुड़ गए हैं, तो अपने आप को उस बुराई से निकालने का प्रयास हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल उस बुराई का परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ेगा। तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर हमें इतनी सहन शक्ति दे, इतना आत्मज्ञान दे कि हम सही और गलत के बीच में सही निर्णय कर पाए, सही चयन कर पाए, और सदैव जो है अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलते रहे। तो चलिए अभी के लिए भक्ति गीतों के इस कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी की पूजा अर्चना होती है। इस अगले भक्ति गीत द्वारा भगवान राम और हनुमान जी दोनों ही का स्मरण हम करते हैं।

0: शक्ति,
1: भक्ति में शक्ति। यह कार्यक्रम दिन के 11:10 हो रहे हैं, रेडियो मनोरंजन पर आप साथ दे रहे हैं। श्रोताओं, बजरंग बली जी की बात करें तो वे बल का प्रतीक है, वे साहस का प्रतीक है, वे निडरता का प्रतीक है, लेकिन अपने आप में हनुमान जी जो है कहीं ना कहीं हमें बल, निडर होना, अपने आप में साहस दिखाने के साथ साथ धैर्य का भी पाठ पढ़ाते हैं। किस तरह से इतने जो है बलवान है, वो शक्तिशाली है, वो विशाल है, विराट है, वहीं पर उनमें जो है अपने आप में उतना धैर्य भी है। अपने प्रभु श्री राम के प्रति उनके मन में जो भक्ति की भावना है, कहीं ना कहीं

वो उन्हें भक्त से भगवान बनाने तक का जो ये जो सफ़र है इसे तय किया है। तो कहीं ना कहीं हम भी अपने भगवान से, अपने इष्ट से इन सभी गुणों को अपने जीवन में उतार सकते हैं। उस तरह से हम अपने जीवन को भी निडरता से जी सकते हैं, साहस तो दिखा सकते हैं, बल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आवश्यकता है। कहते हैं ना कि जहाँ पर जिस चीज़ की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर उस चीज़ को करना या कहना कहीं ना कहीं व्यर्थ जाता है। इसलिए ये समझना बहुत आवश्यक होता है कि कब कहाँ और कितना बोलना चाहिए, कब कहाँ और कितना जो है अपनी चीज़ों को हमें, अपने आप को हमें साबित करना चाहिए। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार हम कुछ ज़्यादा करने के जो है इच्छा में इस तरह के कार्य कर बैठते हैं, सामने वाला हमें गलत समझ बैठता है, हमारे बारे में गलत धारणा रखता है। इसलिए जहाँ पर आवश्यकता हो वहीं पर बोलना, उतना ही बोलना आवश्यक होता है। इससे क्या होता है, हम अपने जो है अपनी ऊर्जा को तो बचाते ही हैं, साथ ही सामने वाले के दृष्टिकोण में हमारा जो सम्मान है वो भी बना रहता है।

0: शक्ति।
1: श्रोताओं, भक्ति में शक्ति इस कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। जाते जाते हनुमान चालीसा के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हनुमान जी आपको बल प्रदान करे, आपको सहनशीलता प्रदान करे, आपको निडर बनाए और सभी दुखों से आपको दूर रखे। इसी के साथ हम आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार, शुभ दिन आप सबको हमारी ओर से। 11 बजे आप सुन पाएंगे चाइनीज़ भाषा में कार्यक्रम, और जिनकी प्रस्तुति में अगली भेंट तक के लिए हमारी ओर से आप सभी को नमस्कार।

0: सुनने के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं को भी नमस्कार। समाचारों में आप सभी का स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रीय सभा की बात करते हैं, जहां बजट 2026-2027 के संदर्भ में आज भी बहसें जारी हैं। आज दिन के 11:30 बजे कार्य शुरू किए गए। बता दें कि बजट 2026-2027 पर बहस की शुरुआत करते हुए श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने इसे एक साहसिक और जिम्मेदार बजट बताया। कल उन्होंने कहा कि पेंशन प्रणाली में सुधार जरूरी है और कि AI तथा ब्लू इकोनॉमी के लिए घोषित कदम देश को भविष्य की ओर ले जाएंगे। राष्ट्रीय सभा की बैठक आज सुबह, जिस तरह हमने कहा, 11:30 बजे फिर से शुरू हुई। बता दें कि श्रम मंत्री रिजाउद्दीन ने मैटरनिटी लीव को 1 वर्ष और पैटर्निटी लीव को 6 सप्ताह तक बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी भेदभाव को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद है। सामाजिक सुरक्षा मंत्री अशोक सुभो ने कहा कि मीन्स टेस्टिंग को स्थगित करने के मामले में प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के फैसले को प्राथमिकता दी गई और कि उनके अनुसार जरूरत पड़ने पर अन्य विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। अनावा मोहिस के नेता पैट्रिक बेल्को ने मीन्स टेस्टिंग को स्थगित करने के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ये नागरिकों की आवाज़ और लोकतांत्रिक बहस की अहमियत को दर्शाता है। बजट 2026-2027 में कलाकारों और सांस्कृतिक क्षेत्र के लिए घोषित कदमों का आर्टिस्ट यूनियन ने स्वागत किया। संगठन ने इन घोषणाओं को जल्द अमल में लाने की अपील की। और आपको बता दें कि PMSD के नेता रवि अलिकजीवाल ने आज सुबह पोर्टलिस में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया और इसके दौरान उन्होंने कहा कि बजट 2026-2027 को लेकर कुछ बातें स्पष्ट नहीं हैं और कुछ बातें समझ में नहीं आ रही हैं। उन्होंने बजट के फॉर्म का ही खंडन किया है। विदेशी समाचारों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। नए नेता के चयन तक वे प्रधानमंत्री बने रहेंगे, जबकि एंडी बर्नहम को संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। संक्षिप्त समाचार यहीं पर समाप्त हुए। अपने ध्यान दिया इसके लिए धन्यवाद। कुछ ही समय में शोक समाचार। कुसियाल लेन पाल्मा कैट्रो बोर्ड में 76 साल के 76 ओल्ड के श्री कीरालाल माना, जो ज्ञान नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थियां आज दिन के 1 बजे उनके घर खुर्सियाल लेन पाल्मा कैट्रोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पाल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रामचंद्र रोड रिश्माओ में 57 साल के 57 ओल्ड के श्री श्याम सुंदर तपसी जो श्याम नाम से भी जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम चार बजे उनके घर रामचंद्र रोड रिश्माओ से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदेमास्क की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। शोक मिडवीन परिवारों के साथ हमारी दिली हमदर्दी है।
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: 12:09 हो चुके हैं दोस्तों, क्या बात है। ये जैसा गाना था वैसे आज हमारे प्रोग्राम का नाम भी है सुहाना सफ़र। और बाहर जो मौसम है वो भी बहुत ही सुहाना हो चुका है, थोड़ी सी ठंडक, थोड़ी सी बारिश, और साथ में लेकर आए हैं हम थोड़े से गाने ऐसे जो कि आपके दिल को सुकून दे और साथ में थोड़े से रोमांस भी हो जाए तो क्या है। क्योंकि इतने रोमांटिक गाने जब होते हैं ना ऐसे मौसम में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि जब बहुत ही गर्मी होती है तब तो लगता है कि धूम धड़ाका बिल्कुल छोड़ दो, गज़लों को सुनो। और ऐसा टाइम हो बाहर जहाँ भी हमें मिल रहे हों गातो पीमा चाय या कुछ गर्म गर्म ऐसी चीज़ जिसे हम खा के हमारे को सुकून मिले, तो बस आपको भी यही कहूँगी, जहाँ भी हैं रेस्ट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, दोपहर का टाइम है, बस रेस्ट कीजिए। और जो काम कर रहे हैं बिल्कुल ताकत से, मेहनत से काम कीजिए, गानों के साथ जुड़े रहिए। क्योंकि मैं हूँ आपके साथ पूनम, और ये है आपका ही प्रोग्राम सुहाना सफ़र। अगर आप

0: आपको भी कोई मैसेज करना है, दिल की बात कहनी है, तो आप मैसेज कर सकते हैं 5250-6200 पर। इन्जॉय करें आपके गाने और जल्दी जल्दी अपनी लिस्ट मुझे भेजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके साथ आपके गानों को इन्जॉय करूँगी। और अगर जहाँ जहाँ आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा डांस करना है तो कर लीजिए।
1: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: 12:22 हो चुके हैं और प्यारा सा दिन मंगलवार का दिन। ये मंगलवार जो होता है ना बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं होता अभी आज हमने काम करना है या नहीं करना है, क्योंकि हमने तो संडे से सैटरडे संडे की जो छुट्टी होती है उसके बाद थोड़ी सी आलस होता है, थोड़ी सी ताकत आती है मंडे को, और फिर मंगलवार को लगता है अच्छा फिर से काम पे जाना है, फिर से काम करना है। पर कोई बात नहीं, काम बहुत ज़रूरी है, कामों के साथ में इंजॉय भी तो करना ज़रूरी है। तो इसलिए हमारे साथ हम टिकटॉक पे भी जुड़े हुए हैं इस टाइम, और साथ में हमारे व्हाट्सअप पे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और कॉल्स भी एक एक करके आ रहे हैं, तो हम एक एक करके वो भी लेने वाले हैं। तो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं डैनी जी जो कि गुडलैंड से हैं, और उसके साथ हैं योर स्पेस केशनी, फरा, लकी, ललित जी यूएसए से, इमली एंड एमी 14 भी हैं, और कल्याणी जी हैं, डैरन, सनवीर, केत्सिया एंड शबनम, रॉय, अफरोज, दुर्गा, दुशिका, वीना, नोवल फॉन्स से हैं, अपने पति देव के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और कहती हैं बस कि भाई तुम सामने सामने रहो तो सब ठीक लगता है, वरना सब कुछ उलझा उलझा सा लगता है। ये सच बात है, जब कोई होता है घर के सारे काम करने के लिए तो वो इंपॉर्टेंट, उसको तो थोड़ी सी तो इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए ना, तो यही प्यार होता है, ऐसे देते रहिए। बृंदा जी जुड़ी हुई हैं, एमडी एंजल जुड़े हैं, ज्योति जी ने भी एक फरमाइश किया एक प्यारे से गाने की, जो है उसका नाम बहुत ही प्यारा है क्योंकि रोज़ रोज़ आंखों तले ये गाना बहुत ही दिल के करीब है सभी के, आई थिंक सो। और बृंदा जी हैं जो अपनी फ्रेंड भानु के लिए एक सॉन्ग सुनाना चाहती हैं, सुबह जी हैं जो कि फीजी से हैं, तो आप मैसेजेस कर रहे हैं, आप सबका थैंक यू सो मच, और आप सबका वेलकम है जो भी किसी भी फॉर्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बट आपको इतना ही कहेंगे, अपना ख्याल रखिए और इन्जॉय कीजिए ये गाने, ये है सजना ओ सजना, हिमलता की आवाज़ में प्यारा सा गाना, इन्जॉय कीजिए।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम सुहाना सफ़र के साथ। 12:34 हो चुके हैं और हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस टाइम एक घंटे हम टिकटॉक पे रहेंगे और उसके बाद आपके फ़ोन कॉल्स लेंगे। हमने ये सोचा क्योंकि दोनों चीज़ों को मिक्स कर देते हैं तो डाइवर्जन सा हो जाता है, पता नहीं चलता कहाँ कौन सा किसका क्या मैसेज है। तो भाई बहुत ही प्यारे प्यारे से मैसेजेस आ रहे हैं। इस समय हमारे साथ अरुणा जी जुड़ी हुई हैं जो कि श्याम जी के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। जंगल लैंड जू भी हैं और मुझे नाम बहुत पसंद आया उनका। इंद्रास जी साथ जुड़ी हुई हैं गैलेश और बहुत ही मिस कर रहे हैं सभी को, दोस्तों को, और कह रहे हैं कि कोई तो मुझे फ़ोन करो, कोई तो मुझे मैसेज करो। बट यही होता है, ऐसे होता है, सारे बिजी रहते हैं। कविता जी जुड़ी हुई हैं, याना जी जुड़ी हैं साथ में, और उसके साथ में हमारे साथ रंभा जी जुड़ी हुई हैं जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, हमेशा साथ देती हैं। साथ में प्रकाशवंती जी जुड़ी हुई हैं बेल्जियम से, और उसके साथ में हमारी एक और बहुत प्यारी सी दोस्त हैं जिनका नाम है आस्था। आस्था कह रही हैं कि मैं सब स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ जो भी अभी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उनको ये कहना चाहती हूँ कंसंट्रेट करें पढ़ाई पर, क्योंकि आगे जो ज़िंदगी है थोड़ी सी हमारी टफ होने वाली है, या डोंट नो ईजी होने वाली है, बट मैं उनको इतना ही कहना चाहती हूँ थोड़ी सी पढ़ाई कर लो और उसके बाद ज़िंदगी बहुत ही कूल होगी। तो मैं भी इस बात को अग्री करती हूँ कि अगर आपके परिवार वाले थोड़ा सा अपने बिज़ी शेड्यूल में हैं तो आप भी थोड़ा सा बिज़ी शेड्यूल अपना, अपनी पढ़ाई का शेड्यूल बनाओ, इंजॉय करो खाना पीना और हेल्दी खाओ, आराम से सो, रेस्ट करो और बिल्कुल

0: सुहाना सफर, सुहाना सफर।
1: 12:45 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं अपने ही प्रोग्राम सुहाना सफ़र के साथ। और आज है बहुत सारे बच्चों का और बहुत सारे बड़ों का भी बर्थडे, बट सबसे स्पेशल आज बर्थडे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सुनीता जी की, बिटिया रानी की, क्योंकि वो कह रही हैं कि वो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सी शाय सी है। तो एक प्यारा सा गाना रखवाला।

0: से हो जाए। उसके साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई है इस समय अमीषा जी, गीता जी जो कि हॉलैंड से हैं, याना ने भी एक प्यारा सा गाना मांगा है, हम बिल्कुल चलाने वाले हैं। प्रिया, साक्षी, शर्मिला, हेमा, समीर, माया, रामदोस जी, उसके साथ में बहुत सारे मैसेजेस हमें व्हाट्सअप से आ रहे हैं, तो हम भी उनको अब बस लेने वाले हैं। टिकटॉक करेंगे हम, एक घंटे के लिए हमने बस शुरू किया था उसको करेंगे बंद, और आप शुरू करेंगे हम अपने फ़ोन कॉल्स को और व्हाट्सअप पे जितने भी मैसेजेस हैं उनके लिए। पर हम आपको यही कहेंगे सुनीता जी की बिटिया को कि बहुत लंबी उम्र हो, हमेशा खुश रहें, पढ़ाई करें, लिखाई करें और गानों के साथ में हमेशा इंजॉय करें, क्योंकि गाने जो है ना इंसान को बहुत ही प्यारा सा बना देते हैं। पता नहीं कैसे ये हमें तो नहीं समझ आता कैसे प्यारा बनाते हैं, बट ये सच बात है कि जो धुनें हैं, तरंगे हैं, सुर हैं, ये हमेशा ही दुनिया में कहते हैं दिमाग को बहुत ही रिलैक्स कर देते हैं। तो बस इंजॉय कीजिए अपने गाने और साथ में आज हम बोलेंगे आपकी बिटिया को हैप्पी बर्थडे। चलो जी, जिनका भी बर्थडे है आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो।
1: RM3 Radio.

0: आइए सुनते हैं समाचार सुमेरा अकबर अली के साथ नमस्कार और आदाब
1: नमस्कार आदाब राष्ट्रसभा के कार्य जारी रखे जा रहे हैं सत्र की शुरुआत में सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 नंबर 2 और 2026 बिल नंबर 7 पर बहस की गई मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर विपक्ष व्हिप एड्रियन जुवाल ने बहसों में भाग लिया इसी सत्र के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि केपीआई का आगाज जून 2024 में ही किया गया था और रैंकिंग प्रणाली को पिछली सरकार ने ही खारिज की थी विधेयक को पारित किया गया राष्ट्रीय बजट 2025-2026 के संदर्भ में अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 पर भी बहसें जारी रखी जा रही हैं शिक्षा मंत्री महेंद्र

0: गंगा प्रसाद ने कहा कि समाज में जुर्मों ध्वनि प्रदूषण और दूसरे प्रकार के अपराधों का हल तालीम है परवरिश की बुनियाद अच्छी शिक्षा पर निर्भर है बुलिंग के सिलसिले में बजट में ऐलान कदम पर बात करते हुए मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने चेतना अभियानों की अहमियत पर जोर दिया शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान कदमों की सराहना की है पीएमएसडी के नेता जावियर जुवाल ने आज पोर्टलुई में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया उन्होंने हालिया बजट भाषण पर टिप्पणी करते हुए कुछ खामियों और कंफ्यूजन का उल्लेख किया उन्होंने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के वास्ते माहिरों के आयोग की सिफारिशों का खंडन किया इसके अलावा जावियर जुवाल ने सरकार में अनुशासन और समग्र जिम्मेदारी की कमी पर भी बात की पीएमएसडी के नेता ने समाज सुरक्षा के प्रेस सम्मेलन को दाद दी विदेश में कल लखनऊ भारत की एक इमारत में आग लगने से कम 15 लोगों की मौत हुई है इस घटना के चलते एक जांच शुरू की गई है इमारत में पेट शॉप थी चश्मदीद गवाहों के मुताबिक आग से बचने के लिए लोगों को इमारत से कूदते हुए देखा गया जिंदगियां बचाने के लिए बचाव टीमों को दीवारें तोड़कर घुसना पड़ा अधिकारियों ने पाया कि वहां कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था इसलिए लोग अंदर फंस गए थे तो अभी के लिए बस इतना ही शोक समाचार सुनिए लावानी वाकुआ में 60 साल के 60 years old श्री सुतिकराव लिंबिया जो जीतन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी आज दो बजे इनके घर लावानी वाकुआ फिनिक्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 2 पीएम रामचंद्र रोड रिश्मो में 57 साल के 57 years old श्री श्याम सुंदर तपसी जो श्याम के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है अर्थी आज शाम 4 बजे इनके घर रामचंद्र रोड रिश्मो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन का निवास की शमशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 4 पीएम शोक में डूबे परिवारों से हमें हमदर्दी है
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: सुहाना सफर।
1: 1:09 हो चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उषा जी यानी कि परी जी बहुत खुश हो गई होंगी जब इस मूवी का ये गाना सुन गए, क्योंकि उन्होंने बहुत बार बोला कि काश ये वाला गाना चला दो, तो हम भी कहाँ पीछे रहेंगे, हमने भी चला दिया। इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वजरा जी, स्वराज जी, इंदिरा जी, प्रवीण कालीचरण जी, जो कि बहुत ही प्यार से उन्होंने एक गाने की फरमाइश की है, अमिता मोहावीर जी और निर्मला शोभा जी, और वो कहती हैं कि मेरी दोस्त जो है ना बहुत ही प्यारी है, इसीलिए मुझे एक गाना उसके लिए चाहिए। तो हम भी कहाँ जाने देंगे आपको भैया, आपके दोस्तों की यारी जो होती है बहुत ही खास और प्यारी होती है, तो बस अपने दोस्तों के साथ जुड़े रहिए, अपने गानों के साथ जुड़े रहिए। ये गाना जो चलने वाला है आराधना मूवी से, मेरे सपनों की रानी, भैया हमारी रानी कहाँ है कालीचरण जी ये तो हमें पता नहीं, पर हम आपके लिए ज़रूर लेकर आ रहे हैं ये आपका गाना जो आप ही की पसंद का है। इन्जॉय कीजिए आपका ये ट्रैक।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर। 1:22 हो चुके हैं और आप जुड़े हैं सुहाना सफर के साथ। ये प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत है इसलिए क्योंकि इसमें चलते हैं आपकी पसंद के गाने। और इस समय अगर आप देखें तो मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और आशा भोसले की आवाज़ में, मतलब तीनों आवाज़ें एक साथ होना बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि ऐसे गाने और वो भी ज़िंदगी के ऊपर, क्योंकि कहते हैं कि ज़िंदगी अगर अच्छे से कट जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ज़िंदगी कट कट के गुजरती है। तो इसलिए काटनी नहीं है ज़िंदगी को, जीना है, हंसना है, मुस्कुराना है, खुश रहना है। कोई भी टेंशन आए तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्या टेंशन जा रही है, कोई टेंशन नहीं है। इसी तरीके से ये बात लिखी है हमारी बहुत ही प्यारी सी दोस्त शीला जी ने, और बोल रही हैं कि जो बहन है प्रमिला बहुत ही अच्छी है, इतनी मेहनत करती है, हमेशा काम में लगी रहती है, और हम सबको भी यही सिखाती है कि हमेशा मेहनत करो, काम करो, क्योंकि काम के साथ ही आराम है। क्या बात है जी, भाई बहुत बढ़िया बात है। और उन्होंने बोला उनका एक पसंद का गाना है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, पत्ता पत्ता बूटा बूटा चलाएंगे हम बिल्कुल अभी। साथ में साधना जी जुड़ी हुई हैं, जीवन फैमिली के लिए गाना सुनाना चाहती है, और उन्हें यही कह रही हैं जीवन फैमिली बहुत ही खास है क्योंकि उन्होंने भी हमें जीवन जीना सिखाया। सही बात है, जिसको ये एहसास एक बार हो जाता है एक उम्र में आके कि हाँ जीवन कितना इम्पॉर्टेंट है, तो बस फिर और कुछ नहीं चाहिए होता। साथ में वाहिद, आदिल, ईरा, कृष्णा, सुमित, राजेश एंड सत्या हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि गाने बहुत मस्त चल रहे हैं, क्या आप हमारे लिए एक गाना चला सकते हैं? तो क्यों नहीं चलाएंगे, आपकी पसंद और हम ना चलाएं, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप कीजिए इंजॉय अपने ही गानों को। ये है आपका ही प्रोग्राम सुहाना सफर।
1: RM3 रेडियो।

0: खाना सफर।
1: 1:36 हो चुके हैं दोस्तों, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बन के आते हैं कुछ लोग, साथी बन जाते हैं, और धीरे धीरे वो इतने करीब आ जाते हैं कि वो उनके बिना तो जीना ही मुश्किल हो जाता है, और हमें एहसास भी नहीं होता कब हम उनके साथ ऐसे बन के चले गए, क्योंकि यही होता है दोस्ती और मोहब्बत, पता ही नहीं चलता प्यार और दोस्ती का जो डिफरेंस है हम भूल जाते हैं, क्योंकि कितने ही जैसे गर्ल्स होती हैं, बॉयज़ होते हैं, उनको एहसास होता है अरे ये तो दोस्त ही था, ऑफिस में काम करता था, पर कभी कभी उनके साथ में बैठ के खाना खाना, उनके साथ बातें करना, और थोड़े दिन के बाद ऐसे लगता है कि एक परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। तो अगर आप भी किसी के परिवार के हिस्सा बन चुके हैं और आपके आसपास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपके कोई पुराने दोस्त हैं जिनको आप बहुत समय से भूल चुके हैं तो उन्हें मैसेज कीजिए, उनका हाल चाल पूछिए, क्योंकि अगर एक छोटा सा भी मैसेज दूसरे को जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये टाइम भी ऐसा ही है, दोपहर के टाइम में ऐसे काम करना बहुत अच्छा रहता है क्योंकि सभी फ्री होते हैं, और एक उम्र में आके ऐसा एहसास होता है कि ये दोस्त जो थे जो बहुत बिछड़ गए, जिनको बहुत टाइम से हमने याद तक नहीं किया, भूल गए, या कहीं नाराज़गी हो गई तो नाराज़गी मिटा दीजिए और बस उनको गले लगा लीजिए। तो हमारे साथ में इस समय जुड़ी हुई हैं नंदा जी, और एक प्यारे से गाने की इस फरमाइश कर रही हैं दोस्ती मूवी की, तो मैं उनके लिए गाना ढूंढ रही हूँ, पर उससे पहले एक और गाना आ गया सूरज शर्मा साजदा जी की तरफ से, और वो भी यही कहते हैं कि सच बात है दोपहर का जब टाइम होता है, जब थोड़ा सा टाइम मिलता है उस टाइम अपने दोस्तों को ज़रूर याद करना चाहिए, ऐसे रिलेटिव्स को भी याद करना चाहिए, क्योंकि भैया हमारी ज़िंदगी में उनकी भी एक बहुत ही प्यारी सी जगह होती है। और साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता जी, जो कि बार बार फ़ोन भी कर रही हैं, और वो भी एक गाना सुनाना चाहती हैं और सुनना भी चाहती हैं, और कह रही हैं कि सबको इतना ही बोलूँगी, बाहर मौसम ख़राब है तो थोड़ा सा अम्ब्रेला लेके जाओ, जैकेट पहनो, और बच्चे जो है ना जिनको फैशन का शौक़ होता है उनको लगता है नहीं नहीं ठंड नहीं है, और फिर बाद में बीमार हो जाते हैं, तो प्लीज़ उनका भी ख्याल कीजिए, और ज़रा सा आपको लगता है कि आपको खांसी जुकाम किसी तरीके का है तो थोड़ा सा कहवा बनाओ, थोड़ा सा काढ़ा बनाओ, चाय पियो गरम गरम, और कुछ खा पी के इंजॉय कीजिए अपने गाने। ये प्यारा सा गाना है स्वीट हार्ट मूवी का, जो कि एक हमारी स्वीट हार्ट से एक हमारी लिसनर ने मांगा है, तो हम भी चला देते हैं उनके लिए, क्यों ना हो, ये बहुत ही प्यारा सा गाना, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।
2: RM3 Radio.

0: सुहाना सफर।
1: 1:53 हो चुके हैं दोस्तों। हंसते मुस्कुराते रहिए, आज का सफर यहीं तक आपका साथ मिला, दिल से अच्छा लगा। मैं थी आपके साथ पूनम, और मेरे बाद आप सुन पाएंगे उड़ान की कहानी। तो जुड़े रहिए RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ, जो कि है आपके दिल के बहुत ही करीब। और आपकी पसंद के गाने हम यहाँ पर चलाते हैं, और ये आखिरी गाना मेरी पसंद का आप सबके लिए, इंजॉय कीजिएगा। और उसके बाद हम जुड़ेंगे फिर से अगले हफ्ते इसी समय इसी डेट को और टाइम को। बस आप इंजॉय कीजिएगा आपका ये गाना।
2: RM3 Radio.

0: खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। राष्ट्रसभा के कार्य जारी रखे जा रहे हैं। सत्र की शुरुआत में सप्लीमेंट्री अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 नंबर 2 और 2026 बिल नंबर 7 पर बहस की गई। मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर विपक्ष व्हिप एड्रियन जुवाल ने बहसों में भाग लिया। इसी सत्र के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने उल्लेख किया कि केपीआई का आगाज जून 2024 में ही किया गया था और रैंकिंग प्लेनरी को पिछली सरकार ने ही खारिज की थी। विधेयक को पारित किया गया और अब राष्ट्रसभा में बजट 2025-2026 के संदर्भ में अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 पर बहसें जारी हैं। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने कहा कि समाज में जुर्मों, ध्वनि प्रदूषण और दूसरे प्रकार के अपराधों का हल तालीम है। परवरिश की बुनियाद अच्छी शिक्षा

0: पर निर्भर हैं। बुलिंग के सिलसिले में बजट में ऐलान कदम पर बात करते हुए मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने चेतना अभियानों की अहमियत पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान कदमों की सराहना की। पीएमएसडी के नेता जावियर लुजीवाल ने आज पोटली में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। उन्होंने हालिया बजट भाषण पर टिप्पणी करते हुए कुछ खामियों और कन्फ्यूजन का उल्लेख किया। उन्होंने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के वास्ते माहिरों के आयोग की सिफारिशों का खंडन किया। इसके अलावा जावियर लुजीवाल ने सरकार में अनुशासन और समग्र जिम्मेदारी की कमी पर भी बात की। पीएमएसडी के नेता ने समाज सुरक्षा के प्रेस सम्मेलन को दाद दी। विदेश में आज वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान नए सिरे से बातचीत शुरू होने वाली है। बेरूत ने सीधे तौर पर बातचीत करने का फैसला लिया, बावजूद ये कि ईरान और अमेरिका के बीच जंगबंदी की शर्तों में लेबनान को शामिल किया गया था। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार और आदाब।
1: Center 95.5, North South 95.6, 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. उड़ान की कहानी
4: नमस्कार श्रोताओं और नमस्कार दर्शकों, हमारे फेसबुक पेज के सभी फॉलोअर्स का हम स्वागत करते हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। मैं हूँ रत्ना, उड़ान की कहानी में आपका फिर से हम स्वागत करते हैं, जो है सशक्त महिला की कहानी। और हर कहानी में एक नई बात, एक नया कह सकते हैं कि एक नया जज्बा, एक नई उमंग और एक नई जोश के साथ हर महिला अपना अपनी जगह बनाए हुए आज के समाज में, आज के कह सकते हैं कि देश के विकास के लिए बहुत मेहनत कर रही है। तो बिल्कुल आज एक और नई उड़ान की कहानी में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं एक और ऐसी सशक्त महिला का, जिन्होंने बहुत ही मुश्किलों का सामना करके अपना एक स्थल बनाया है। और बिल्कुल नर्सरी के साथ उन्होंने शुरू किया, किंडरगार्टन का काम करती हैं और साथ ही साथ डे केयर सेंटर चलाती हैं बच्चों के लिए। और बिल्कुल ऐसी एक सशक्त महिला से आज हम मुलाकात करेंगे, पर उससे पहले हम ज़रूर जोड़ना चाहेंगे कि हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है, हर कठिनाई में एक सबक छिपा होता है, बस देखने की नज़र चाहिए। और ऐसी ही नज़र, ऐसी ही परख उन्होंने पाई है। आइए स्वागत करते हैं श्रीमती प्रेमिला पदारत जी का, जो आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुकी हैं। प्रेमिला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
5: नमस्कार रत्ना जी।
4: और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम में हम आपको यहाँ पर प्राप्त करके बहुत हमें अच्छा लग रहा है।
5: आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ, आज MBC के स्टूडियो में आपके बदौलत आज अच्छा मौका मिला।
4: हाँ,
5: और सभी श्रोतागण को भी मेरी ओर से प्रणाम।
4: और आज के इस कार्यक्रम में बिल्कुल हम जानेंगे कि आपने ये कार्य की शुरुआत कैसे की और कितने वर्षों से आप ये कार्य कर रही हैं। प्रेमिला जी,
5: प्री प्राइमरी स्कूल की शुरुआत मैंने 4 जून 1984 यानी जिजनेव का तो वैकात में प्री प्राइमरी स्कूल की शुरुआत की। लगभग 25 साल तक स्कूल चलाने के बाद अब मैं केवल डे केयर सेंटर चला रही हूँ।
4: तो जैसे डे केयर सेंटर यानी बच्चों की देखभाल करती हैं, और बच्चों को संभालना, कहते हैं ना कि बच्चों को संभालना आसान नहीं होता, और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि बच्चे संभालना तो महिलाओं का नेचुरल काम है, वे तो कर सकती हैं। क्या ये सत्य है कि बच्चों को संभालना आसान काम है?
5: ये सिर्फ कहने की बात है, बच्चों को संभालना बिल्कुल आसान काम नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज पेरेंट का, जो परिवार है उनका भरोसा जीतना था। जब उन्होंने देखा कि हम उनके बच्चे को अच्छी तरह से देखभाल कर रहे हैं, तब धीरे धीरे उनका हौसला बढ़ा।
4: और जैसे जैसे आपने आगे बढ़ाया, आपने आगे आगे काम किया, आपको अनुभव बढ़ता गया। हाँ, तो पहले माला जी, प्रेमिला जी, मैं ये पूछना चाहूंगी कि इस कार्य को शुरू

0: करने से पहले आपने कैसे पहल की, मतलब आपने शुरुआत कैसे की?
1: देखिए रत्ना जी, उस समय बहुत से स्कूल नर्सरी नहीं था हमारे जहाँ गांव में रहते हैं
0: जी,
1: तो एक डिमांडिंग था वहाँ पर,
0: और मैं कह सकती हूँ कि पहले के ज़माने में ये कंसेप्ट ही नहीं था।
1: हो सकता है बिरला ही एक मिलेगा या दो मिलेगा, लेकिन मैं कह सकती हूँ हो सकता है कुछ दूरी में एक था, एक प्री प्राइमरी। तो अब जितने बच्चे थे यूँ ही खेल रहे थे घर पे, छोटे बच्चों को और परिवार को काम जाने को दिक्कत हो रहा था, तो जैसे कि एक मस्क है उस समय, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक प्री प्राइमरी के बाद ये नर्सरी खोलूं, चलाऊं
0: जैसे आपका, और
1: उसको हाँ।
0: और तब आपने ये सोचा, इसकी शुरुआत की, और फिर धीरे हाँ, धीरे करते धीरे, हुए
1: धीरे धीरे करते हुए तो नहीं मिला, लेकिन नहीं, धीरे धीरे मिला।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ। तो सबसे पहले जब आपने नर्सरी शुरू की, तो आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज पहले पहले क्या था, पैसे, लाइसेंस या फिर लोगों का भरोसा?
1: सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए लाइसेंस था, लेकिन क्योंकि आज के युग में अगर एक काम करेंगे तो लाइसेंस नहीं होगा तो आपको वो काम करने नहीं देंगे।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: लाइसेंस के लिए पहले कम से कम 10 बच्चों को रजिस्टर करना ज़रूरी था। जब रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद तभी आपको लाइसेंस मिलना था, अन्यथा नहीं मिलेगा।
0: तो मतलब जैसे आपको लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कितना टाइम लगा था पहले पहले में?
1: लगभग 2 महीने, 2 महीने हुआ,
0: 2 महीने,
1: क्योंकि जो प्री प्राइमरी यूनिट के जो इंस्पेक्टर वो आकर इंस्पेक्शन करते हैं आपके कितने बच्चे रजिस्टर्ड हैं,
0: तो मिनिमम कितने बच्चे चाहिए
1: होता है ना,
0: हाँ।
1: तो 10 बच्चे होने चाहिए, तो रजिस्ट्री बुक इंस्पेक्शन करने के बाद, तो फिर यहाँ से जब जाते हैं अपने ऑफिस में तब मुझे लाइसेंस का,
0: मतलब उनके पास ये होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए,
1: हाँ, एक रिकॉर्ड,
0: यानी ऑफिसर आके आपके यहाँ पहले चेक करते हैं
1: हाँ,
0: कि आपके यहाँ पर बच्चे कितने हैं और आपका मतलब जो घर वगैरह है ठीक है या हाँ, नहीं, ये सारा कुछ देखने के बाद आपको लाइसेंस मिलता है। ओके, तो इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ा था लाइसेंस के लिए शुरू में?
1: नहीं, मैं खुद ही प्री प्राइमरी स्कूल ऑफिस गई, वहाँ जहाँ पर मैंने उन लोगों को संपर्क किया, जहाँ मुझे रूल और रेगुलेशन सब की जानकारी हुई, तभी उसी के बाद मैं ज़रूरी प्रतिक्रिया पूरी किया, जब पूरी करने के बाद अपना स्कूल, तभी लाइसेंस मिलने के बाद ही शुरू किया,
0: मतलब बाद में जाकर आपको परमिशन मिला।
1: थोड़ी समय लगा, 2 महीना लगभग, बच्चों को बोलना जहाँ जहाँ अपने गाँव के परिवार है उसे संपर्क करना, तब अपने बच्चों को भेजने लगे मेरे पास
0: हाँ हाँ।
1: तब उसके लिए उस समय हमें एक रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए, जिस तरह प्राइमरी स्कूल में होता है हमारे भी
0: हाँ हाँ।
1: तो उसी को जो इंस्पेक्शन जब आते हैं तो
0: वो चेक करते हैं,
1: है या नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, कई बार ऐसा भी होता है कि बिना वजह का, मतलब आप किसी को यूं ही आप ठग नहीं सकते हो, और उसके लिए पूरी
1: तरह अनिवार्य है ना,
0: बिल्कुल अनिवार्य है,
1: तो वही रिकॉर्ड के अनुसार सब काम होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और प्रेमिला जी, मैं पूछना चाहूँगी कि नर्सरी को पहले के ज़माने में लोग व्यवसाय नहीं मानते थे, मतलब ऐसा आज के समय में कैसे एक बेबी किंडरगार्टन, बेबी सिटिंग, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी ये जो प्ले ग्रुप या प्ले स्कूल हैं, ये अनिवार्य हो चुका है। पहले के समय में नर्सरी को लोग व्यवसाय नहीं मानते थे, इस सोच को आपने कैसे बदला?
1: नर्सरी सिर्फ एक काम नहीं है, उसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। माता पिता अपने कीमती धन को, यानी उनके धन उनके बच्चे होते हैं, अपने बच्चे यानी अपने बच्चों को हमारे भरोसे छोड़ते हैं, इसी भरोसे के साथ अच्छी तरह से जो काम करता है उसका महत्व तभी समझ में आता है।
0: बिल्कुल, मतलब आप हाँ। आपने इस कार्य को कार्य के रूप में नहीं लिया, एक जिम्मेदारी के रूप में,
1: क्योंकि हम उसे हमेशा मदद करना चाहते हैं जो लोग काम करना चाहते हैं।
0: सही बात, और मैं समझती हूँ बच्चों को संभालना ये बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है,
1: जिस तरह आप
0: बहुत कठिन है
1: बोला अभी
0: हाँ, क्योंकि मान लीजिए अब एक महिला एक बच्चे को ही संभालती है, तो कहते ना कि दिन में तारे नजर आ जाते हैं, तो आप सोचिए एक किंडरगार्टन का स्कूल संभालना, जहाँ पर बच्चों की देखभाल करना, और जब तब तक करना जब तक उनके माता पिता उन्हें आकर ले नहीं जाते, तब तक
1: और तब तक देखना,
0: बिल्कुल

0: तो ये एक बहुत ही मुश्किल कार्य है और ऐसा ही कार्य कर रही हैं प्रेमिला जी। बिल्कुल, उन्होंने बहुत मेहनत के साथ आज इस कार्य को इस ऊंचाई तक लेकर वे आई हैं कि आज बिल्कुल 25 वर्ष, और जैसे उन्होंने कहा 4 जून को, तो मैं समझती हूँ जून का महीना है, तो इस साल ही इसी महीने में बिल्कुल जैसे 4 जून कह सकते हैं, बिल्कुल जैसे इसी दिन को आप आज भी मनाती हैं, बर्थडे मनाती हैं कभी?
1: नहीं, अब नर्सरी का मनाते हैं क्योंकि 15 साल हो गया नर्सरी को।
0: ओके ओके, तो जैसे 15 साल का आप बाकायदा बर्थडे मनाती हैं।
1: मनाती
0: है, चलो ये भी बहुत अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को आपने शुरू किया उसकी नींव कब डाली गई है उस दिन को याद करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। और आज हमारे साथ बिल्कुल उड़ान की कहानी में जुड़ी हैं प्रेमिला पदारत और उनकी कहानी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी प्रेमिला जी से कि आज के इस कार्य के साथ जुड़ने के लिए या शुरू करने के लिए आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं?
1: मेरे साथ 2 स्टाफ मेंबर हैं जो बच्चों की देखभाल करते हैं। दोनों स्टाफ मेंबर के पास वो अर्ली चाइल्डहुड का सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र है,
0: यानी उन्होंने भी ट्रेनिंग ली हुई है।
1: शुरू करने से एक काम जो हमारा नर्सरी है, जब वो आते हैं काम ढूंढने तब हम बोलते हैं उसको एक कोर्स करना है, अगर उसने उसका हो गया उसका कोर्स तो उसे ले लेते हैं।
0: तो ये जो आप कोर्स बोल रही हैं, ये कोर्स कितने समय तक का होता है?
1: कभी पुराने समय में कभी 6 महीने या तो 1 वर्ष तक चलता है।
0: हाँ। और आज के समय में ये कोर्स अगर कोई लेना चाहे तो मतलब ये कितने समय का कोर्स होता है आज के समय में? भी
1: होता
0: इतना
1: है, लगभग 1 या 1.5 वर्ष तक जाता है,
0: यानी 1 या 1.5 वर्ष तक का ये कोर्स होता है और उसके बाद ही मतलब बेबी सिटिंग या फिर हम लोग कह सकते हैं कि नर्सरी में बेबी को संभालने का है। बिल्कुल, तो जैसे कोई भी महिला आज के समय में भी ऐसा कोई कार्य ढूंढना चाहती है या वो कह सकते हैं कि वो क्षमता रखती है बच्चों की देखभाल करने में, तो बिल्कुल आज के समय में किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने से पहले आपके पास बाकायदा एक सर्टिफिकेट का होना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है, तब जाकर एक कार्य को आप आगे बढ़ा सकती हैं। और वैसे ही ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो आज महिलाएं कर रही हैं और बहुत अच्छी तरह निभा रही हैं, और इसी के साथ कहते हैं ना कि समाज में अपनी एक जगह बनाई है, आर्थिक समस्याओं से जूझती हुई मुस्कुराती हुई हर महिला आगे बढ़ रही है। और उड़ान की कहानी में हर मंच पर हम लेकर आते हैं ऐसी ही एक नई कहानी। चलिए गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी को आगे बढ़ाने के लिए।

0: की कहानी, उड़ान की कहानी।
1: रेडियो मनोरंजन पर उड़ान की कहानी। और हम आपको ये भी बताते चले, इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में हमारे तकनीक पर हमारा सहयोग दे रही हैं अपर्णा, साथ है हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका और हमारे प्रोड्यूसर हैं जिनेश। और बिल्कुल हमारे दर्शक जितने भी फॉलोअर्स हैं फेसबुक पेज पर इस कार्यक्रम को बेहद पसंद करते हैं, आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से हम धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल सशक्त महिला की कहानी, उड़ान की कहानी। और आज हमारे साथ है प्रेमिला जी। बिल्कुल प्रेमिला जी का काम इतना आसान नहीं जैसे वो बता रही हैं कि किस प्रकार से वो बच्चों को संभालती हैं, किस प्रकार से ध्यान रखा जाता है, ये कोई छोटी बात नहीं। और यहाँ पर जैसे हम बात कर रहे हैं कि बच्चों को संभालने के साथ साथ बहुत सारी इमरजेंसीज होती है, बहुत सारी समस्याएं होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी अभिभावक का कॉल आ जाता है, या फिर उनको देरी से मतलब बच्चे को देर तक संभालना है, या फिर कोई ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि फीस पेमेंट करने में देरी हो जाती है, कई सारी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर तनाव बढ़ता है। तो ऐसी तनाव भरी सिचुएशन में प्रेमिला जी कैसे हैंडल करती हैं, आइए जानते हैं प्रेमिला जी कैसे हैंडल करते हैं आप ये सारी सिचुएशंस को।
2: रत्ना जी, एडमिशन के समय ही सभी पेरेंट को हम सभी रूल रेगुलेशन दे देते हैं, उनकी जानकारी हो जाती है उन्हें सभी को। तो रही फीस अदा करने की बात, तो हम उन पर

0: परिवार को सब कुछ समय देते हैं जिससे उन लोगों को सहूलियत मिलती है।
1: अच्छा, मतलब फैसिलिटी दी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि कुछ पेरेंट्स को मतलब फीस पे करने में थोड़ी देरी हो गई तो आप उनको हेल्प करती है, फैसिलिटी दी जाती है उनको।
0: ना तो हमें करना है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं समझती हूँ कि चलो एटलीस्ट कैसे कहें कि जब जब समय बहुत टफ चलता है तो कई सारे पेरेंट्स के साथ हो जाता है कि फीस देने में कई बार चूक गए, एक महीना नहीं दे पाए या फिर 2 महीनों का साथ में वे देते हैं, तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती हैं आपके किंडरगार्टन नर्सरी स्कूल्स में। और मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि एक महिला होने के नाते शुरुआत में इस कार्य को शुरू करने के लिए आपको सरकार के द्वारा क्या किसी योजना आपको प्राप्त हुई, कोई ऐसी योजना का लाभ आपको प्राप्त हुआ है?
0: इस योजना को चलाने के लिए उसकी शुरुआत में मैंने DBM बैंक ऑफ डेवलपमेंट मॉरिशस से लोन ली थी और वो भी बहुत कम किस्तों पर।
1: अच्छा, यानी शुरुआत में आपको मिली थी?
0: हाँ, मिली थी, जिससे मैंने एजुकेशन टॉयज और ज़रूरी इक्विपमेंट यानी उनका सामान खरीदने में मुझे बहुत मदद मिली।
1: और प्रेमिला जी, मैं पूछना चाहूँगी, जब आपने ये प्लान शुरू किया, मतलब आपने सोच लिया कि अब आप एक नर्सरी शुरू करेंगे, तो जैसे एक नर्सरी शुरू करने के लिए मेन बेसिक कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? जैसे आप बता रही हैं कि खिलौनों की तो होती ही है, पर उसके अलावा
0: आसपास के उसके जो वातावरण है वो शुद्ध होना चाहिए। ऐसे होता है अभी कभी कभी कोई बोलता है कि मैं अपने घर में रहती हूँ, इधर एक कमरा खाली पड़ा है, उसमें 5 बच्चे को रख देते हैं, तो ऐसे में वो जो नर्सरी है रजिस्टर्ड नहीं होगा। उसके अलग सा एक रूम होना चाहिए,
1: एक अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए उसका। ओके,
0: साफ सुथरा, उसमें उसका जो बैठने का सुविधा हो, टेबल चेयर सब होता वैसे,
1: जैसे मतलब जैसे स्कूल की एक माहौल होता है बिल्कुल उसी तरह का होना बहुत जरूरी है।
0: क्योंकि रूम को क्या बोलते हैं, वो जब उनका अलग सा रूम होता है तो खाने के बाद उसे रेस्ट भी करना है,
1: यानी एक छोटा सा बेड होना,
0: बेड बहुत ऊंचा नहीं डाले लेकिन मैट डालते हैं। मैट, हर एक बच्चा का एक मैट होता है या बड़ा सा मैट होता है, उसमें वो आराम करते हैं।
1: और जैसे किचन की जो सहूलियत है या जहाँ पर उनका जो किचन खाने का जो चीजें रखी जाती
0: है
1: वो अलग से होना चाहिए,
0: अलग सा, जहाँ बच्चे खाना खाते हैं वो भी अलग सा,
1: और उनके लिए प्लेइंग का भी जगह अलग से होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप बता रहे हो कि आपके घर में 2 कमरे खाली हैं,
0: अलग
1: होना चाहिए। और मैं समझती हूँ टॉयलेट फैसिलिटीज भी बच्चों के लिए उनके अनुसार होनी चाहिए, क्योंकि जैसे बच्चों को सहूलियत हो वैसा नीचे टॉयलेट, जो छोटे बच्चों का टॉयलेट होता है उसकी सहूलियत अलग से होनी चाहिए। यानी ये छोटी छोटी बातें हैं एक किंडरगार्टन या एक नर्सरी को खोलने से पहले, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि आपके पास एक छोटी सी जगह है वहाँ पर आपने एक नर्सरी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके द्वारा ही आपको इस कार्य को आगे बढ़ने के लिए लाइसेंस प्राप्त हो सकता है। और बेशक जैसे प्रेमिला जी ने बताया कि आपके पास बाकायदा एक लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को संभालना कोई आसान काम नहीं। मैं यहाँ पूछना चाहूँगी प्रेमिला जी, एक आम माता और एक कह सकते हैं कि 15-20 बच्चों को संभालने वाली जो स्कूल वाली माँ है, क्या ये बैलेंस करना आसान होता है?
0: एक आम माँ और 5 या 20 बच्चों को संभालना आसान नहीं है, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के कोर्स के दौरान, जो कोर्स होता है उसके दौरान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है।
1: अच्छा,
0: क्योंकि अगर कोई जाता है कहीं पर कोर्स लेने तो वो जो उसका वहाँ का जो प्रोफेसर होता है
1: जी,
0: वो किसी ना किसी एक नर्सरी में उन्हें भेजते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए।
1: अच्छा, मतलब आपको फील्ड पर भी प्रैक्टिकल दिया जाता है।
0: तो उसके ट्रेनिंग की वजह से बच्चों को देखभाल आसान हो जाती है, जिसे अपने घर और काम के बीच अच्छा बैलेंस होता है।
1: मतलब आपको पूरी ट्रेनिंग पूरी तरह से पता चलता है कि फील्ड
0: क्या
1: पर
0: करना है, क्या नहीं करना है।
1: चलिए, कहते हैं ना कई बार आपको बुक पर तो पता चल गया कि आपको कैसे हैंडल करना है, पर जब तक आप रियल बच्चों के साथ डील नहीं करते तब तक आपको
0: आसान नहीं है,
1: पता नहीं चलेगा। और कहते हैं ना कि बड़ों

0: को, यानी हो सकता है कि बड़े बच्चे जो होते हैं ना, जो समझदार बच्चे हैं, उनको संभालना आसान होता है, पर जो नवजात शिशु हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनको संभालना बिल्कुल आसान काम नहीं है। और यहाँ पर नर्सरी में जो काम करते हैं उनको हम कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम। और साथ ही साथ ये जो नर्सरी स्कूल का काम करती हैं आप, तो इसके कारण कितनी महिलाओं को फैसिलिटी हुई है, कितनी महिलाओं को सहूलियत मिली है कि वे बच्चों को आसानी से आपके पास छोड़कर काम पर जा सकें?
1: रत्ना जी, हमारे डे केयर की वजह से बहुत सी महिलाओं को अपनी नौकरी और अन्य काम करने में भी सहूलियत मिली है, क्योंकि जब वे अपने बच्चों को हमारे पास छोड़ते हैं तो एकदम निश्चित होकर अपना काम करती हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसके कारण जिस तरह हम उनके बच्चे को देते हैं, उनसे एक पूरा विश्वास होता है कि हम आज सवेरे या नर्सरी में छोड़कर अपने बच्चे जा रहे हैं,
0: हाँ,
1: तो अच्छे खासे रहेंगे वो।
0: बिल्कुल, कोई है जो उनको बिल्कुल घर घर जैसी देखभाल करेगा,
1: हाँ, उसके माहौल भी बिगड़ेगा नहीं। जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखती है, वो यहाँ पे वही उसका जो अर्ली अर्ली चाइल्ड वाले जो माँ होती है, जो उसका ट्रेनिंग हो गया है भी,
0: जी जी,
1: तो वो अच्छी तरह से देखभाल करते हैं बच्चों को,
0: मतलब निश्चिंत होकर,
1: हाँ, वो अपना काम करते हैं दिन भर।
0: बिल्कुल, क्योंकि कई बार
1: शाम को आने के बाद,
0: हाँ,
1: जब अपन बच्चे को लेते हैं तो खुशी खुशी अपने घर जाते हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बच्चा एक सेफ हैंड्स, हाँ, में है। और सच में देखा जाए तो हर माँ चाहती है कि उनका जो बच्चा है वो एक ऐसे माहौल में बड़ा हो जहाँ पर उसको वो घर वाली फीलिंग, हाँ, दी जाए, उसको वो घर वाली देखभाल मिले, और बिल्कुल एक भरोसा डेवलप हो जहाँ पर एक टीचर बिल्कुल माँ की तरह देखभाल करती है। प्रेमिला जी, मैं पूछना चाहूँगी, कभी, हाँ, ऐसा होता है कि कोई बच्चा शरारत कर रहा हो और आप उनको डांटे या फिर आप उनको?
1: नहीं, कभी नहीं।
0: और आपके जितने भी, आपके अभी कितने डे केयर में आपके यहाँ कितने बच्चे हैं अभी के लिए? फिलहाल
1: अभी के लिए लगभग 20 हैं।
0: 20 है, हाँ। और आपको क्या क्या कहकर बुलाते हैं, मिस कह के बुलाते हैं?
1: कोई मिस बोलते हैं, लेकिन जब ये चश्मा लगाते हैं ना, किसी,
0: हाँ,
1: के घर में दादी होती है ना,
0: हाँ, हाँ,
1: कोई दादी बोलती है,
0: हाँ, हाँ,
1: कोई बोलती है मिस, कोई बोलती है मैडम।
0: ओके,
1: जैसे जिसे मन पड़ता,
0: जिसे है, जिसे, हाँ, मन पड़ता है। और
1: तो मिस होते हैं,
0: हाँ, हाँ,
1: स्टाफ वाली
0: जी
1: वे।
0: ओके,
1: लेकिन मुझे देखते हैं कभी कोई दादी दादी,
0: हाँ, तो मतलब दादी, तब उनके साथ, हाँ, दादी वाला प्यार, मतलब वो फिर वो वाली फीलिंग डेवलप हो जाती है,
1: हाँ।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन तो, कभी कभी ऐसा भी होता है जब माताएं काम करती है
0: जी,
1: तो फोन करती हैं,
0: हाँ,
1: हमें,
0: हाँ,
1: वीडियो कॉल भी कर लेती है,
0: हाँ, हाँ,
1: देखते हैं मेरी बच्ची क्या कर रही है,
0: बिल्कुल,
1: तो कभी बता देती है, क्योंकि मुझसे कुछ छुपाया नहीं जाता है।
0: सही बात,
1: कोई छुपाया नहीं जाता है, क्योंकि जिस तरह से वो बच्चे हैं, या खा रहे हैं खाना, या सो रहे हैं, या खेल रहे हैं
0: जी,
1: तो उन्हें बता देती हैं।
0: बिल्कुल,
1: जैसे उन लोगों को, जैसे जब काम करते हैं ना, कोई किसी चीज़ की फिक्र नहीं होती।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं समझती हूँ आज का समय में जैसे आप बता रहे हैं कि फ़ोन कॉल करते हैं, आपको वीडियो कॉल करते हैं, हाँ, ताकि वो अपने बच्चे को देख ले कि वो ठीक से, हाँ, खेल रहा, हाँ, है या नहीं,
1: खास करके जो नई होती है,
0: हाँ,
1: नई,
0: हाँ,
1: नई, उसे विश्वास दिलाने के लिए, हाँ, ठहरो, अब मैं तो, हम आपके बच्चे यहाँ, हम बच्चे बताते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसे एक तरह से उनको निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चे सेफ है। वैसे मैं पूछना चाहूँगी प्रेमिला जी, आपके जो नर्सरीज हैं उसका टाइमिंग क्या क्या है?
1: मेरे नर्सरी का टाइमिंग सुबह से 7:30 से शुरू होता है,
0: हाँ हाँ,
1: और शाम को 5:15 को सीमित रहता है,
0: मतलब 5:15 तक,
1: हाँ,
0: आपका ये चलता है,
1: हाँ, चलता
0: पर मान लीजिए प्रेमिला जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर माता पिता को आने में कुछ देरी हो जाए, या कई बार ऐसा हो गया कि उनके पास कोई इमरजेंसी चली आई, या फिर कोई ऐसा काम चला आया जिसके कारण वो 5:15 तक नहीं आते, तो क्या ऐसा कभी होता है कि एक्सेप्शनली आप उन बच्चों की देखभाल देर तक करें?
1: हाँ, कई बार पेरेंट को किसी खास वजह से,
0: हाँ हाँ,
1: देर हो जाता है, और उस दौरान हम अपने टाइमिंग नहीं देते हैं।
0: बिल्कुल
1: नहीं देखते हैं, नर्सरी के टाइमिंग के बाद भी उस बच्चे का देखभाल करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: जब तक वे पेरेंट हमारे अपने बच्चे को,
0: ऐसा कभी हुआ है कि मतलब मान लीजिए पेरेंट आ रहे हैं या ट्रैफिक में फंस गए या कहीं पर
1: ऐसा होता है?
0: ओके,
1: होता है, रास्ते में ट्रैफिक की वजह से देर हो जाता है, तो वो फोन करते हैं, मैं,
0: अच्छा,
1: आ ही रही हूँ, क्योंकि वो जो स्टाफ करने, तो उसे अपने घर भी जाना होता है।

0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ. सही. तो अगर ऐसा भी हुआ तो क्या स्टाफ को अलाउ करते हैं या फिर स्टाफ
1: हाँ,
0: को भी
1: हैं स्टाफ सो.
0: अच्छा, यानी थोड़ी देर के लिए वो भी रुक जाते हाँ, हैं बच्चों हैं. को संभालने के लिए.
1: उसका तो अपना काम होता है.
0: बिल्कुल सही. बिल्कुल
1: कल आएंगे तो फिर उसी पेरेंट को देखना है, उसी बच्चों को देखना है.
0: सही सही. तो थोड़ा सा जैसे आपको
1: छोड़ कर जाना तो
0: नहीं कर सकते क्योंकि कई बार, और ये आपका काम है. बिल्कुल. तो ऐसा भी हुआ है. और मैं पूछना चाहूँगी प्रेमिला जी, जैसे मान लीजिए अगर कई बार ऐसा होता है कि माता पिता को जैसे देर तक काम करना पड़े, या मतलब बहुत देर तक, कभी कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि 5:15 को एक्सीड करता हुआ, मान लीजिए 7 बज गए 8 बज गए या बहुत टाइम?
1: नहीं नहीं, कभी ऐसा हम उतना टाइम नहीं देते हैं.
0: नहीं.
1: क्योंकि हमारा जैसे बोलना और जैसे
0: स्टाफ
1: आपको
0: होता है,
1: सीमित होता है हमारा टाइम.
0: बिल्कुल.
1: तो 15 मिनट बाद तक हम वेट करते हैं.
0: अच्छा,
1: उसके बाद हमें पता है कि वे पेरेंटा कर ले जाएंगे.
0: बिल्कुल. या तो फिर वो अपनी जैसे अरेंजमेंट करें या हाँ. फिर कोई अरेंजमेंट हाँ. हो जाती
1: वो
0: है
1: भी प्रतिदिन नहीं होता है, कभी कभी
0: कभी एक्सेप्शनली एक्सेप्शनली, क्योंकि जैसे आपने बताया कि रूल्स और रेगुलेशंस हैं और वो पेरेंट्स को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करने होते हैं.
1: तो दोनों ओर से ये काम.
0: बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली कोई भी काम होता है तो उसमें कोऑपरेशन.
1: और कुछ भी होता है तो शाम सवेरे
0: हाँ जी
1: जो भी मैनेजर है तो वहाँ पर उनका स्वागत करना पड़ेगा. सर सवेरे कुछ भी पूछना हो
0: हाँ हाँ.
1: तो पेरेंट से पूछ सकते हैं. पेरेंट को भेंट करने के बाद उसको दिन के कुछ फोन नहीं करना, या रात्रि में भी फोन नहीं करना पड़ता.
0: अच्छा.
1: और शाम को भी अगर वहाँ हैं तो सिर्फ स्टाफ के नहीं, वो मैनेजर को भी भेंट कर लेंगे.
0: मतलब जैसे उनको भी कुछ भी है, इन्फॉर्मेशन है, तो वो वहाँ पर ड्रॉप इन कर सकते हैं. वहाँ पर
1: अब नहीं तो बोलेंगे तो मैं आती हूँ तो मैनेजर कभी दिखाई नहीं देती है, कुछ बोलना था क्या करे, तब तो फोन करेंगे ही.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही.
1: तो इस तरह हमारा काम चलता है.
0: बिल्कुल बिल्कुल. जैसे सारी तरह से हम कह सकते हैं कि ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल ढंग से सारा काम होता है, और जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर दे दिया जाता है ताकि फिर उस इंस्ट्रक्शन को
1: सवेरे पूछ लेते हैं.
0: सही.
1: जो स्टाफ भी होते ना, जब बच्चे आते हैं सवेरे को तो पूछ लेते हैं वो परिवार से कि बच्चे ने कुछ खाया या नहीं खाया, या सोकर अभी उठे हैं तो वो बोलते हैं हाँ खा लिया या नहीं खाया, तो कुछ ना कुछ खिलाते हैं.
0: बिल्कुल. जैसे एक तरह से आपका जो है कम्युनिकेशन होता है. ये जरूरी है कि आप उनको सारी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि
1: उसे भेंट करेंगे तब ना. अगर नहीं रहेंगे तो किससे बात करेंगे.
0: सही बात. जैसे यानी जो स्कूल का जो मैनेजर है उसे भी आपको जल्दी ही आ जाना चाहिए ताकि जब पेरेंट्स आते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए तो उनको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि बच्चे ने खाना खा लिया है या खाना बाकी है या जो भी है इन्फॉर्मेशन,
1: अच्छी तरह से खाया या नहीं खाया.
0: जी. तो बिल्कुल, जैसे छोटी छोटी बातें हैं कम्युनिकेशन. स्कूल के जितने भी कार्यकर्ता लोग हैं, साथ ही साथ माता पिता जो अपने बच्चों को नर्सरी में या प्ले ग्रुप स्कूल्स में छोड़ते हैं, वहाँ पर ये छोटी छोटी जानकारी के हिसाब से ही उनकी देखभाल की जाती है. और बिल्कुल सुरक्षित तरीके से एक बच्चे की वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से केयरिंग होती है, इसीलिए तो उसे डे केयर सेंटर कहा जाता है, जहाँ पर सच में आपने एक बार अपने बच्चों को वहाँ छोड़ा, फिर जिम्मेदारी होती है स्कूल वाली मम्मी की कि वो किस तरह
1: तो
0: से. बिल्कुल. जैसे हम उसको स्कूल वाली मम्मी ही कहेंगे, टीचर तो चलो पढ़ाकर फिनिश करती है, पर जो नर्सरी की मम्मीज होती हैं वो उनका काम बहुत ज़्यादा दुगना हो जाता है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी वाला होता है. तो चलिए एक गीत का ब्रेक लेते हैं, आते हैं अभी थोड़ी ही देर में उड़ान की कहानी आगे बढ़ाने के लिए.

0: की कहानी, उड़ान की कहानी,
1: उड़ान की कहानी रेडियो मनोरंजन पर। और बिल्कुल जैसे प्रेमिला जी हमें बता रही हैं कि किस प्रकार से छोटी छोटी बातों को लेकर ही इस कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। सुनने में बहुत आसान है पर ये कार्य करना आसान नहीं है। और जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले बताया कि कई बार होता है कि अभिभावक थोड़े देर हो जाए या कई बार संभालना पड़े या कुछ देर तक हमें रहना पड़े बच्चों के साथ, तो ये भी एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और यहाँ पर जैसे हम कहते हैं कि कई बार होता है कि बच्चों को मान लीजिए बुखार आ जाता है या कोई ऐसी समस्या हो जाती है, तो कैसे हैंडल करती हैं प्रेमिला जी? प्रेमिला जी, मान लीजिए अगर कोई बच्चे को बुखार हुआ है तो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं, और आप मान लीजिए अगर कोई बच्चा आपके यहाँ आ जाने के बाद उसे बुखार आता है तो कैसे हैंडल करती हैं?
2: हाँ रत्ना जी, अगर कोई बच्चा को बुखार आ जाए दिन को, तो सबसे पहले हम थर्मोमीटर से बच्चे का टेम्परेचर चेक करते हैं
1: जी।
2: उसके बाद तुरंत पेरेंट को फ़ोन कर दिया करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर फर्स्ट एड या प्राथमिक उपचार दिया जाता है।
1: अच्छा,
2: क्योंकि हमारे सभी स्टाफ को बेसिक फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है।
1: बिल्कुल,
2: इसके लिए उसे आसान होता है किस तरह से जब एक बच्चा को किसी भी बीमारी हो जाता है उसे, तो उसे खासकर जैसे आपने कहा उस बच्चे को फीवर हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब उस बच्चे को बुखार

0: हो जाता है तो हम उस बच्चे को अन्य बच्चों के साथ नहीं रखते हैं,
1: मतलब उसको आइसोलेट करते हैं ताकि किसी दूसरे बच्चों को ना लगे। हाँ।
0: जब तक वो पेरेंट ना आए उसका जो प्रथम जो उसका देखभाल करने वाली होती है
1: जी,
0: जब तक उसका पेरेंट ना आए वो अलग से रूम में रहते हैं बच्चा,
1: मतलब उनके साथ रहते हैं,
0: उसके साथ रहती है वो जब तक वो बच्चा, अगर साथ में डालेंगे तो एक रिस्क होता है
1: दूसरे बच्चों में भी बिल्कुल फैल सके,
0: चाहे उल्टी भी होता है बच्चे को दूसरे बच्चा को हो
1: लग सकता है। सही बात।
0: तो तुरंत हम पेरेंट को फोन करते हैं।
1: और मान लीजिए अगर कोई पेरेंट बुखार, जिस मतलब मान लीजिए रात में अगर किसी बच्चे को बुखार रहा है और ऐसे बच्चे को वे छोड़ने आते हैं तो कौन सी सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ता है, जैसे पेरेंट को आकर कौन सी इन्फॉर्मेशंस आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी हो जाती है?
0: हाँ जी, तो जब सवेरे बच्चे को छोड़ने आते हैं तो इतना स्ट्रेसफुल होते हैं वे लोग, काम जाते हैं,
1: सही बात,
0: काम पर जाना होता है, कभी कभी वो भूल जाते हैं, कोई किसी को याद होता है कि कभी कभी कोई भूल जाता है कि रात्रि में बच्चा को बुखार आया था तो हॉस्पिटल वगैरह डॉक्टर को दिखाने गए थे, उस दौरान उसे उसका मेडिसिन दिया गया है।
1: बिल्कुल।
0: तो जब फीवर का जो मेडिसिन होता है प्रायः वो उससे बच्चे लोग सोते ज़्यादा हैं, तो उसके लिए जब मैं कहूँगी वो जो पेरेंट होते हैं तो उनको हम पूछते हैं, कभी कभी पेरेंट बोलते हैं और फिर भी हम एक डिमांड करते हैं उन लोगों से, तो हमें बोलना है कि बच्चे ने कौन सा मेडिसिन लिया है
1: और क्योंकि कितने घंटे के अंतर उन्होंने दवाई पी है या पिलानी कभी चाहिए।
0: कभी कभी हम देखते हैं जो बच्चे आ रहे हैं हमारे यहाँ तो थोड़ी देर में वो सो जाते हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, तो इसके लिए हमें पेरेंट को फिर हम कॉल करना पड़ता है क्यों बच्चा इतना सो रहा है, तब बोलते हैं हाँ हम बोलना भूल गए कि उन्होंने रात्रि के समय वो मेडिसिन,
1: मतलब ये पेरेंट की जिम्मेदारी है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर
0: देना है, वो इन्फॉर्मेशन क्योंकि वहाँ तो स्टाफ होता है।
1: प्रेमिला जी, क्या ऐसा भी होता है कि कई बार अगर कोई बच्चे को लेकर आते हैं बुखार है बच्चे को और पेरेंट दवाई देना भूल गए हैं, यानी बैग में डालना भूल गए हैं, तो क्या आप अलग से दवाई देते हैं या
0: नहीं?
1: फिर
0: हमारे रूल रेगुलेशन से हम बच्चों को दवा नहीं देते हैं, हम अपने ओर से नहीं देते हैं, बच्चे को वे पेरेंट पिलाते हैं तो याती।
1: और अगर मतलब पेरेंट इंस्ट्रक्शन दे
0: दिन को
1: जी
0: तीन बार बच्चे को पिलाना है तो अगर उसके परिवार में कोई है तो आकर वो पिला कर तब जाएंगे।
1: मतलब वो जिम्मेदारी पेरेंट
0: अपने घर
1: गार्डियन या कोई भी होता है वो आकर,
0: क्योंकि वही लोग तो काम पर होते हैं।
1: सही बात बिल्कुल,
0: तो आकर पिला लेते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता,
1: मतलब वो जिम्मेदारी आप नहीं लेते।
0: नहीं।
1: बिल्कुल, क्योंकि एक रिस्क वाला काम है। और मान लीजिए, और जैसे आप बता रही हैं कि अगर बच्चे को आपके प्ले स्कूल में बुखार आ रहा है जिसकी जानकारी माता पिता को नहीं है तो आप तुरंत उनको इन्फॉर्म करते हैं। ओके। और क्या ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स फिर जल्दी आकर बच्चों को ले जाते हैं, कभी ऐसा भी हुआ है?
0: जिसके पास फैसिलिटी होता है चले आते हैं, अगर माँ नहीं आ तो उसके पिताजी आ सकते हैं, और नहीं अगर नहीं आ सकते हैं दूर में उनका काम होता है तो घर अपने घर फोन करते हैं, कोई ना कोई आकर बच्चे को ड्रॉप कर लेते हैं।
1: ले लेते हैं। ओके। और जैसे जब आप बच्चों को, इतने सारे बच्चों को, जैसे आपने बताया आपके यहाँ 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों के लिए फिर अब जो खाने की जो व्यवस्था है, फीडिंग जो है बेबी फीड के लिए, तो फिर ऐसी सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करती हैं?
0: बेबी फीडिंग के लिए जो परिवार है ना, हमारे जो पेरेंट होते हैं वे खुद के अपने खाना घर के बनाए, अपना घर का बनाया हुआ खाना आकर
1: छोड़ते
0: हैं नर्सरी में, और वो खाना भी हर एक रोज एक ही तरह के नहीं, हम बोलते हैं
1: वैरायटी
0: करना।
1: बिल्कुल।
0: आज दूसरा चीज खाने को, कल दूसरा, उस तरह से वो बच्चे खाएंगे भी।
1: और फिर जैसे एक तरह से उनके लिए भी एक वैरायटी रहती है। और आपके यहाँ पर भी मान लीजिए जैसे स्कूल में कैसा होता है कि एक ब्रेक होता है, एक रिसेस होता है, तो क्या आपके नर्सरी में भी ऐसा होता है कि एक रिसेस पीरियड हो जहाँ पर खाना सब साथ मिलकर बैठ कर खाते हैं?
0: एक रूम है।
1: अच्छा, मतलब उनको जैसे आपका जो टाइम शेड्यूल है वो भी पीरियड वाइज होता है? पीरियड वाइज होता है
0: उसमें। तो जो बच्चे सभी बैठते हैं एक
1: साथ में
0: खाते।

0: हाँ,
1: तो जैसे हाँ, उनको वो ट्रेन दिया जाता है, ट्रेनिंग हाँ, दी जाती है
0: बकायदा। जो बच्चे को मालूम भी नहीं है कैसे बैठना उठना है वो भी सीख लेते हैं
1: हाँ,
0: और कैसे स्पून लेकर
1: खाना है,
0: और जिससे जिस बच्चे को खाना नहीं आता वो हम ही खिला देते हैं।
1: अच्छा, मतलब जो बहुत छोटे होते हाँ, हैं छोटे उनको होते आप खिलाते हैं और जो किंडरगार्टन एज के मतलब 3 या 4 साल के हैं तो फिर उनको फिर आप उनको सिखाते हैं कि किस तरह से खाना है उनको, वो लोग देख कर
0: 1 महीने में 2 महीने में वो सीख लाते हैं,
1: सीख लेते
0: हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो जैसे ये सारी ट्रेनिंग भी आपके यहाँ दी जाती है। और साथ ही साथ क्या आपके किंडरगार्टन में या आपका जो नर्सरी है वहाँ पर बेसिक नॉलेज भी सिखाया जाता है बच्चों को? बेसिक नॉलेज जैसे मतलब मान लीजिए जैसे मैटरनल स्कूल में कैसे सिखाया जाता है कि उनको उनको गाना गाना या फिर उनको कहानियाँ या फिर पजल खेलना? हाँ,
0: हमारे जो दिनचर्या होता है ना
1: जी जी
0: टाइम टेबल में हाँ, वो भी है बराबर।
1: अच्छा, मतलब वो भी सिखाया जाता है
0: बिल्कुल
1: है, तो हाँ। और जैसे वहाँ पर आप उनको जैसे जैसे मैटरनल की प्री प्राइमरी की जो ट्रेनिंग होती है हाँ, वो सारी
0: कुछ कुछ
1: हाँ हाँ,
0: क्योंकि थोड़ा सी बदलाव आता है
1: बिल्कुल,
0: लेकिन प्रायः जो जो उनके जो टॉयज होता है
1: हाँ,
0: वही यूज करते हैं
1: ओके,
0: लेकिन उसके उम्र के अनुसार।
1: अच्छा,
0: और भी टॉयज होता है
1: ओके, और इसका भी कोई अलग सा जैसे आपका शेड्यूल आप बता रहे थे ब्रीफिंग सेशन में कि एक समय होता है जब बच्चों को टीवी देखने के लिए अलाउ किया जाता है और वो भी कुछ समय के लिए, यानी बच्चों में आप जैसे बता रही थी कि 20 मिनट तक टीवी देख लिया फिर अब टीवी बंद करके
0: दूसरा चीज।
1: अच्छा,
0: क्योंकि एक ही अगर टीवी दिखाते रहे आधे घंटे तो वो बोर हो जाते हैं, चेंज करना पड़ता है हर एक्टिविटी।
1: ओके, तो ये भी एक तरह का बहुत ही इंटरेस्टिंग। और क्या कभी ऐसा भी हुआ है प्रमिला जी कि आपके यहाँ कोई ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए कि एक साथ 3-4 बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहे हैं या फिर रोना शुरू कर दे रहे हैं, तो क्या ऐसी सिचुएशन में फिर आप कैसे मैनेज करती हैं सभी को?
0: उस समय हम बच्चों को ऐसे होता है जब बच्चे ज़्यादा रोते हैं
1: हाँ हाँ,
0: प्रथम दिन जब उसका एडमिशन होता है तभी ज्यादा रोते हैं।
1: अच्छा,
0: क्योंकि उनके लिए तो
1: नया
0: उनका घर और यहाँ नया है
1: बिल्कुल
0: एकदम नया, अडॉप्ट नहीं कर पाते और रोएंगे क्योंकि उसके परिवार छोड़कर जा रहे हैं।
1: सही बात है, सही बात है।
0: तो उस समय हम उसे प्यार से समझाते हैं, गाना भी सुनाते हैं और कार्टून टीवी में कार्टून दिखाते हैं जिससे उनका ध्यान आकर्षित रहे, उससे कुछ बदलाव हो जाता है लेकिन थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के बाद हो सकता है
1: वो फिर रोना शुरू कर
0: रोना,
1: फिर उसे याद आ जाए कि मम्मी तो चली गई अब तो मैं यहाँ कहाँ फंस गया हूँ। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब वो शुरू शुरू में मैटरनल जाते हैं तो रो रो के बुरा हाल कर देते हैं और टीचर्स के लिए ये बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन होती
0: है। होता है
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे ऐसी सिचुएशन को आप बहुत ही निपुणता के साथ हैंडल करना पड़ता है, और जैसे आपने बताया कि इसके लिए अगर आपके पास ट्रेनिंग ना हो
0: नहीं कर सकते
1: तो नहीं कर पाएंगे,
0: बिल्कुल सर पर हाथ लाकर बैठ जाएंगे और क्या,
1: सच में। और नहीं, और कई बार ऐसा भी होता है, कई माएँ महिलाएं होती है कि बच्चा रोना शुरू करे तो डांटना शुरू हो जाते हैं,
0: बिकॉज
1: सही बात है, सही बात,
0: सुझाव के लिए
1: ये एक बिल्कुल। और चलिए यहाँ पर उड़ान की कहानी की जब हम बात करते हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात आती है, और प्रमिला जी आपके लिए महिला सशक्तिकरण मतलब क्या?
0: एम्पावरमेंट।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब है कि महिला को अपने जीवन की चुनौतियों का सामना हिम्मत और विश्वास आत्मविश्वास से करनी है।
1: बिल्कुल,
0: जिस दिशा में वो जाए उसी दिशा में महिला अपने लक्ष्यों को पा सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है जब अगर वो अपने आत्मविश्वास से कोई काम करे तो अपने घर की समस्या चाहे वो समाज की भी समस्या हो तो बहुत आसान तरीके से हैंडल कर सकती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये आसान नहीं होता,
0: आसान नहीं होता।
1: मैं समझती हूँ हर
0: अकेले नहीं आसान,
1: अकेले हैंडल करना सारा कुछ बहुत मुश्किल। प्रमिला जी, यहाँ पर मैं एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि यहाँ पर आपने जब स्कूल शुरू की, एक नर्सरी स्कूल शुरू की, तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा सहयोग किसकी ओर से मिला? आपके परिवार में से किसकी ओर से आपको सबसे ज़्यादा सहयोग मिला?
0: उस समय मेरी सास थी, मेरी सास थी, क्योंकि जब मेरे बच्चे स्कूल से आते थे वही देखभाल करती थी, यानी कि मैं जब मैं काम करती थी

0: तीन बज के
1: बिल्कुल
0: 3 बजे जब स्कूल से लौटते थे
1: जी,
0: तो मेरी सास जी उन्हें चाय वगैरह देती थी, पान पान जब तक मेरे काम समाप्त हो जाता।
1: तो उनका एक सहयोग, उनका एक साथ,
0: हाँ, एक बहुत, साथ था,
1: बहुत बड़ा सहयोग था। और आज आप जब ये स्कूल हैंडल करती हैं, तो क्या आज भी आपके फैमिली मेंबर में से कोई आपको सपोर्ट कर रहा है?
0: अभी मेरी बेटी सपोर्ट करती है।

0: एक रुचि है उसे काम करने के लिए।
1: तो यानी वो भी आपको इस कार्य के लिए सहयोग दे रही है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका दाहिना हाथ है जो आपके साथ आपके बिल्कुल बगल में खड़ा है, जो आपको सहयोग दे रहा है। तो बिल्कुल अगर आपकी बेटी जी इस वक्त सुन रही हैं तो बिल्कुल उनको हम शाबाशी देना चाहेंगे, क्योंकि माँ के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब उनके बच्चे उनके साथ खड़े रहें, उनको सहयोग दे, उनको एनकरेज करे आगे बढ़ने के लिए। और बिल्कुल एक महिला हमेशा चाहेगी कि एक फैमिली का सपोर्ट होना उतना ही बहुत ही आवश्यक है। और चलिए बिल्कुल हम ज़रूर पूछना चाहेंगे प्रेमिला जी से आज का ये आखिरी सवाल कि प्रेमिला जी, हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो हो सकता है कि इस कार्य को करना चाहती हैं, तो इस कार्य को शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है?
0: हाँ जी, प्रायः मैं उन महिलाओं से यही संदेश देना चाहती हूँ जो महिला चाइल्ड डे केयर या नर्सरी शुरू करना चाहती है, तो सबसे पहले उनके पास धैर्य, बच्चों के प्रति प्यार और समर्पण होना चाहिए। बच्चों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अच्छी जगह के साथ उचित जगह और उचित जगह भी बहुत ज़रूरी होती है।
1: बिल्कुल, जैसे एक साफ़ सुथरी जगह होनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल,
0: पूरी जगह पूरी तरह रजिस्टर्ड करवाया चाहिए। बच्चों के की देखभाल करने वाले सभी स्टाफ के पास अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की प्रोफेशनल ट्रेनिंग और सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
1: बिल्कुल,
0: इन सब बातों का ध्यान रखकर एक सफल और विश्वसनीय चाइल्ड केयर सेंटर चलाया जा सकता है। और खासकर उसमें सैनिटरी प्रिकॉशन भी अनिवार्य है,
1: यानी ये सारी प्रिकॉशंस के साथ साथ सैनिटरी प्रिकॉशंस। और जब तक इन सारे मिनिस्ट्रीज की ओर से आपको अनुमति ना मिले तो हो सकता है कि लाइसेंस मिलने में भी
0: वो उन्हें? भी जब कभी कभार आकर इंस्पेक्शन करते हैं, खाकर जब बारिश होती है
1: रैंडम इंस्पेक्शन होता है
0: तो आकर देखते हैं, जो पानी होता है कभी रूफ पर हो जाता है पानी या फूलदान में पानी, तो सभी का हमें ध्यान देना पड़ता है।
1: क्या कभी ऐसा भी होता है प्रेमिला जी कि आपको लाइसेंस मिल चुका है पर आपकी हरकतों की वजह से या कई बार गैर जिम्मेदारियों की वजह से आपका कैंसिल हो जाए लाइसेंस? ऐसा भी हुआ?
0: ऐसा कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें अपना रूल रेगुलेशन में हम शामिल हुए।
1: नहीं, मैं बताना चाह रही हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर किसी ने इन सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना किया हो, मान लीजिए अगर
0: उनके लिए बहुत मुश्किल,
1: या कई बार ऐसा होता है कि लाइसेंस तो हमारे पास है, मान लीजिए हमारे पास लाइसेंस है लेकिन हम गैर जिम्मेदार हैं,
0: चलाना जाना चाहिए
1: और अगर रैंडम इंस्पेक्शन में ऐसा हुआ कि हम इन सारे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है?
0: हो सकता है,
1: हो सकता है।
0: और मेरे ओर से मैं जो कहना चाहती हूँ
1: जी,
0: इतने साल हुए, लगभग 40 वर्ष हो गया
1: जी जी,
0: हमें कोई भी मिनिस्ट्री से या सैनिटरी ओर से कभी कोई भी,
1: क्योंकि आप सभी नियमों का पालन अभी तक कर रहे हैं,
0: जिससे मेरे जो नर्सरी, चाहे मेरे प्री प्राइमरी था या स्कूल नर्सरी स्कूल है
1: जी,
0: उसका नाम हो गया आज।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूँगी आपकी जो नर्सरी है वो कहाँ पाई जाती है, क्योंकि हमारे जितने भी श्रोता हैं बिल्कुल जानना चाहेंगे, कभी ऐसा हुआ कि वे भी अपने बच्चे आपके पास छोड़ना चाहें तो जरूर आप अपना नंबर भी दे सकते हैं। और
0: हाँ जी, तो मेरे जो नर्सरी स्कूल लेओशे तेरूज में मिलता है।
1: ओके, लेओशे तेरूज में पाया जाता है नर्सरी। और आपका नंबर भी अगर आप देना चाहें तो?
0: हाँ दूंगी।
1: हाँ जी, बता सकते हैं ऑन एयर?
0: हाँ 5 7 7 8 जी 4 2 हाँ जी 0 5।
1: बिल्कुल, तो 5 7 7 8 4 2 0 5 ये है नर्सरी स्कूल का नंबर। और अगर आप भी अगर कहीं नॉर्थ साइड में रहते हैं और ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी नर्सरी जहां पर आप बिल्कुल बिना किसी टेंशन के बच्चों को छोड़ सकते हैं तो ज़रूर आप प्रेमिला जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हमारे साथ जुड़ी प्रेमिला पदारत जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमिला जी, और हमारी टेक्निकल टीम पर हमारे साथ
0: सभी को धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल हमारे साथ जुड़ी रही अपर्णा, दीपशिका हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट और दिनेश हमारे प्रोड्यूसर, जिनके सहायक जिनके सहयोग से ये कार्यक्रम आप तक

पहुंचाया गया। और हमारे जितने भी फॉलोअर्स, दर्शक और श्रोता हमारे साथ बने रहे, आपको कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई उड़ान की कहानी को लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ संध्या आप सभी को।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है सुमेरा अकबर अली. आपको नमस्कार और आदाब.
1: नमस्कार आदाब. लंच ब्रेक के बाद राष्ट्रसभा में रोड्रिग्स की सांसद मनन ने राष्ट्र बजट पर अपनी राय पेश की. उन्होंने कहा कि रोड्रिग्स के लिए 11.2 बिलियन रुपए का बजट निर्धारित करने के अलावा ये बजट कई पहलुओं के मद्देनजर हिम्मत वाला है. श्रीमती मनन ने मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने के प्रावधान पर खुशी जताई. टैक्स के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों पर टैक्स का बोझ है, इसके बावजूद राष्ट्रीय अर्थनीति और खरीद ताकत में संतुलन लाया गया है. साइबर जुर्मों में बढ़ोतरी हो रही है. एक साल में 866 महिलाओं के साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है, जबकि 548 पुरुष शिकार है. यह मसला ज्यादातर नौजवानों को मुवस्सिर कर रहा है. 14 से 15 साल के शिकार नाबालिगों के साथ धोखाधड़ी के करीब 5000 मामले दर्ज हुए हैं. फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने नौजवानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया. विषय रहा इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ डिजिटल मजबूती. अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए 60 दिनों का रोड मैप तैयार करने पर मंजूरी जताई गई है. अमेरिका ने ईरान पर तेल निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों को 60 दिनों के लिए हटा दिया, जिससे ईरान अब अपनी तेल और पेट्रोकेमिकल उपज का निर्यात कर सकेगा. अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को देश में वापस आने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है. फ्रांस, स्पेन और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के अन्य देशों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी है. आने वाले दिनों में गर्मी की स्थिति और अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जिससे तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है. यूरोप में चल रही भीषण गर्मी की वजह से फ्रांस में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है. कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है. तो अभी के

0: मंगलवार 23 जून आज की चर्चा इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का स्वागत है। सुमिता की ओर से नमस्कार स्वीकार करें और इस प्रोग्राम से आप जुड़ चुके हैं, आपकी सेवा में हम आ गए हैं। आशा करते हैं आप सभी बिल्कुल अच्छे हैं और हमेशा की तरह हमारा साथ दे रहे हैं। आपको बता दें, ये जो प्रोग्राम है ये आप इसे इस समय सुन पा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पर, साथ ही इसे आप लाइव देख पा रहे हैं हमारे रेडियो मॉरिशस के फेसबुक पेज पर, और साथ ही इसका सीधा प्रसारण हो रहा है MBC के चैनल 3 पर। आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम का रीब्रॉडकास्ट जो है वो होगा आज ही दोपहर के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर, साथ ही इसे आप दोबारा देख पाएंगे आज ही दोपहर के 4 बजे MBC के चैनल 3 पर। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत हम करते हैं। आप सभी को पता है हर महीने, मतलब कि हर वर्ष जून महीने की 21 तारीख एक बहुत ही विशेष दिन होता है जो संगीत दिवस के साथ साथ योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और योग और संगीत अपने आप में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जहां पर संगीत हमारे मन को शांत करता है और वहीं योग जो है हमें स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करता है, और दोनों ही दिन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन आज का हमारा जो कार्यक्रम का जो फोकस है वो रहेगा संगीत दिवस पर। ऐसे तो संगीत दिवस की बात करें तो सिर्फ एक दिन के लिए ये दिन नहीं मनाया जाता है, संगीत तो हमारे जीवन का हिस्सा है, प्रकृति में संगीत है, हमारे शायद हमारे सभी इंद्रियों में संगीत है ना, हमारे श्वास में संगीत है, हमारे हृदय में संगीत है। और संगीत पर ज़्यादा जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ IGCIC की एक पूरी टीम उपस्थित है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करेंगे IGCIC को यहाँ पर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम डायरेक्टर IGCIC के डायरेक्टर मिस्टर रंजन सिंह जी का स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद MBC टीम को, हमारी टीम को आज मौका देने के लिए आपसे हमारे संगीत और हमारे जो कार्यक्रम है उस पर अपने विचार साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके दर्शक और श्रोता को अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसके बाद हम शुरुआत करते हैं।
0: बिल्कुल, रंजन जी जो है IGCIC के डायरेक्टर हैं, भारतीय उच्चायोग से पिछले 3 वर्षों से जुड़े हुए हैं और कला और संस्कृति में इनकी काफ़ी रुचि है। ऐसे रंजन जी हमारे पिछले काफ़ी कार्यक्रमों से जुड़ चुके हैं और आज आप दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और आज ये अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं। जब हम संगीत की बात करते हैं तो ऑब्वियसली गायकी अपने आप में इसका बड़ा एक हिस्सा है। संगीत की बात करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट्स भी इसमें शामिल होते हैं और डांस भी संगीत के बिना अधूरा है। तो आज हम रंजन जी से जानना चाहेंगे कि आपके जो साथ आए हैं IGCIC के टीचर्स, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं और फिर एक एक पहलुओं पर हम कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे।
1: जैसा कि आप दर्शकों को पता है कि IGCIC कला और संस्कृति, भारतीय कला संस्कृति प्रचार प्रसार के लिए हमेशा से काम करती रही है, और इस सिलसिले में हमारी एक बड़ी टीम है जिसमें हमारे साथ संगीत के कला का जो टीचर हैं, गुरु हैं, जो भारत से आते हैं, काफ़ी ट्रेंड और प्रशिक्षित होते हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग देते हैं लोगों को, और हम लोग आउटरीच करते हैं बाकी भारतीय संगीत पर। तो आज हमारे साथ टीम में हमारे 3 लोग हैं, जो सबसे पहले हमारे साथ निर्माल्या सेन हैं जो वोकल टीचर हैं, हिंदुस्तानी वोकल टीचर हैं। इसके साथ तबला टीचर हमारे कुणाल काले हैं, उसके अलावा हमारे साथ भारतीय कथक की जो बहुत प्रसिद्ध टीचर हैं समीक्षा शर्मा जी हैं। तो आज हम इन 3 के साथ, पूरी अपने सहयोगी के साथ, इस अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस पे एक एक करके बात करेंगे। शुरुआत में हमारे

0: साथ अभी निर्माल्य जी हैं।
1: बिल्कुल, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे श्रोता और दर्शकों को बता दें, आज का जो हमारा कार्यक्रम है तीन हिस्सों में जो है डिवाइडेड है। बारी बारी से हम टीचर्स से मिलेंगे और संगीत पर उनके क्या विचार है इस पर जानेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि संगीत दिवस को इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया जाता है? सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर जो है संगीत का अपने आप में एक बड़ा महत्व है।
0: सो एंशियंट पीरियड से ही, जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, संगीत कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ा हुआ था। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय संगीत दिवस की शुरुआत होती है जब फ्रांस में 1982, दैट वाज द 21 जून ऑफ 1982, जब वहाँ की कला और संस्कृति मंत्रालय ने ये महसूस किया कि संगीत जो ट्रेडिशनल म्यूजिक है वो अभिजात वर्गों के लिए है, जो एलिट क्लास के लिए है। तो दे वॉन्टेड टू इंट्रोड्यूस म्यूजिक टू द पब्लिक। सो फर्स्ट जो ट्रेंड टीचर होते हैं, जो डांसर्स होते हैं, परफॉर्मर होते हैं, उनके परफॉर्मेंस जो उनके साथ, उन्होंने मैच्योर आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक कार्यक्रम बनाया कि कैसे मैच्योर संगीत के लोग जोड़े, कैसे इसे आम जनता तक पहुंचाया जाए। तो ये इसका विशेष दिन है, इसीलिए इसको एक क्रांति की तरह देखा जाता है कि संगीत को कैसे आम जनता तक पहुंचाना है। तो इसीलिए 21 जून को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय म्यूजिक डे के हिसाब से मनाते हैं। और इस उद्देश्य के देश से देखें, जो ऑब्जेक्टिव है उसी को फुलफिल करने के लिए हम IGCIC में भी बैठे हैं, जहां हम कोई भी रजिस्टर्ड करके वहां पे डांस संगीत म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है। इसके अलावा हमारे कलाकार मॉरिशियस गणराज्य के हर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में,
1: मतलब कि ये कहीं ना कहीं एक अवसर है, एक मौका है, और टीचर्स के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी अपनी कला को दिखाने का अवसर मिलता है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, और अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आपको हम धन्यवाद देंगे, ऐसे ही आप अपने कार्य को करते रहे। और काफ़ी मॉरिशियंस जो है इससे जुड़ते हैं, क्योंकि छोटे से छोटे हो या बड़े से बड़े हो, जिसको भी कला और संस्कृति में दिलचस्पी है वो IGCIC से जुड़ता है। और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि हर कोई जो है अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं। और अगर हम गायकी की बात करें, इस समय हम गुरुजी कहेंगे क्योंकि ये हमारे गुरुजी हैं, हमें भी इनसे जो है वोकल म्यूजिक सीखने का, जो है वोकल का, जो है हिंदुस्तानी वोकल सीखने का अवसर मिला। तो हमारे साथ निर्मल्य सेन जी उपस्थित है, जो IGCIC में हिंदुस्तानी वोकल टीचर है। नमस्ते गुरुजी, कैसे हैं?
2: ठीक है।
1: आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम गायकी की बात करते हैं, वोकल की बात करते हैं, तो किस तरह से संगीत इसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है?
2: जी, पहले सारे आपको एंड सारे दर्शकों का वर्ल्ड म्यूजिक डे का बहुत बहुत शुभकामना।
1: धन्यवाद।
2: पहले ये मैं बोल रहा हूँ कि संगीत जो है, डांस ये तो एक कला है, आर्ट फॉर्म है। वोकल म्यूजिक एंड वाद्य मतलब रिदिम एंड डांस, ये तीनों एकत्रित करके हम लोग संगीत बोलते हैं। तो संगीत में वोकल का भी इम्पोर्टेंस ही है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक का भी है और डांस का भी है। जहाँ पे वोकल म्यूजिक नहीं रहेगा वहाँ पे हम लोग संगीत नहीं बोल सकते, जहाँ पे डांस नहीं रहेगा वो भी संगीत नहीं बोल सकते। तीनों आर्ट फॉर्म को एकत्रित करके हम लोग संगीत बोल सकते हैं। तो संगीत हम लोग जो हमारा जो संगीत का जो लैंग्वेज होता है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है। तो इसमें हमारा संगीत सीखने के लिए माइंड रिफ्रेश होता है। और संगीत और एक चीज़ है कि ये कोई एंटरटेन का माध्यम नहीं है,
1: सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है।
2: तो संगीत सीखने के बाद बहुत रास्ता भी खुल जाता है, और संगीत का अलग अलग जॉनर भी है, वो भी समझना पड़ेगा। और पहले संगीत को हैव टू लिसन, संगीत को पहले सुनना जरूरी है। तो और संगीत सीखने के बाद हमारा जो डिप्रेशन है ये भी दूर होता है। ये और ये जो है, ये हम लोग कुछ दिन पहले इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है। तो जो योगा में जो प्राणायाम है, ये प्राणायाम का भी एक दूसरा रूप है,
1: कहीं ना कहीं वो रिदमिक है ना।
2: हाँ। तो यही है संगीत। संगीत सीखना जरूरी है, सीखना और संगीत सुनना भी जरूरी है। ऑल द म्यूजिक मतलब

0: हिंदुस्तानी म्यूजिक, गजल, ठुमरी, सारे हिंदुस्तानी म्यूजिक का जो जो जॉनर है, जो जो अलग अलग जॉनर है, वो भी सीखना भी जरूरी है और सुनना भी जरूरी है।
1: आप आए हैं तो हम चाहेंगे कि दो लाइन आप गाकर सुना दे कुछ, तो इससे बढ़कर हमारे लिए क्या बात हो सकती है। क्योंकि आज की चर्चा इस प्रोग्राम में हम हमेशा बातें करते रहते हैं, आज हमें गाना सुनने का अवसर मिलेगा तो इस अवसर को हम कैसे जाने दें।
2: बिल्कुल सही है मॉरिशस देश में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो म्यूजिक के लिए जो प्रेम है, जो लगाव है, चाहे वो किसी भाषा का हो, किसी भी क्षेत्र का हो, और हिंदुस्तानी और बॉलीवुड म्यूजिक का यहाँ पे जो जिस तरह से लोगों में लगाव है, रुचि है, देख के बड़ी बहुत अच्छा लगता है।
1: ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी जैसे कि ऐसे तो जो भी बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, शादियों की हम बात करें या कोई भी बड़ा फंक्शन होता है, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं गाने का प्रोग्राम तो ज़रूर होता है, गाने का, डांस का, और कभी फैमिली गैदरिंग भी होती है तो हर कोई जो है अपने अपनी कला को दिखाने का, कराओ के डालकर किसी ने कुछ गा दिया या कुछ परफॉर्म कर दिया, तो हमारे मॉरिशन भाई बहनों के बीच जो है ये गाने का, ये कल्चर के प्रति जो है, जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं उनके प्रति उनकी रुचि काफ़ी है। चलिए हम अपने गुरुजी से कुछ सुनेंगे, दो शब्द, दो लाइन।

धन्यवाद गुरु जी इन सुंदर लाइनों के लिए। और ये गाना तो अपने आप में इतना मशहूर है कि हम क्या कहे, न जाने कितनी बार इसको रिक्रिएट किया गया है, कितने रूप में, और आज भी उतनी ही दिलचस्पी से लोग इस गाने को सुनते हैं। तो चलिए, जितने श्रोता और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप 4028085 पर हमें कॉल कर सकते हैं। अभी के लिए गाने के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: बार फिर से हमारे सभी श्रोता और दर्शकों का स्वागत हम करते हैं आज की चर्चा इस कार्यक्रम में जो आज संगीत दिवस पर आधारित है। ऐसे तो इसे पिछले रविवार को मनाया गया, लेकिन संगीत के बारे में बोले जितना बोले उतना ही कम है। शायद एक दिन सिर्फ जो है काफ़ी नहीं होता है संगीत के बारे में बोलने के लिए और उसके बारे में चर्चा करने के लिए। तो इसलिए आज इस विशेष कार्यक्रम को हम लेकर आए हैं जहाँ पर संगीत से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर आज हम बात कर रहे हैं। और साथ ही 4028085 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमें पता है हमारे श्रोता और दर्शक भी जो है गायकी में दिलचस्पी रखते हैं, संगीत में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे साथ जो है IGCIC के डायरेक्टर श्री रंजन सिंह जी उपस्थित हैं और साथ में इस समय हमारे साथ IGCIC के तबला टीचर मिस्टर कुणाल काले जी भी जुड़ चुके हैं। हम रंजन जी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वोकल की हमने बात की, किस तरह से यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स के प्रति लोगों का जो है लगाव है, क्योंकि जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक अगर बच्चे को गिटार सीखना है या कोई भी इंस्ट्रूमेंट सीखना है माता पिता उन्हें प्रेरित करते हैं, फिर समय के साथ साथ पढ़ाई का प्रेशर हो जाता है तो बच्चे इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं और दर्शकों को कि किस तरह से संगीत की बात करें या किसी भी जो है संगीत की शैली की बात करें, किस तरह से उससे जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि इससे हमारा फोकस भी बढ़ता है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। सो एक बात बोलना चाहूँगा कि मॉरीशस में जो म्यूजिक के लिए जो नेचुरल एक कनेक्ट है, सो लोगों को बहुत रुचि है जुड़ने के लिए, बहुत से वाद्य यंत्र बजाते हैं और हम समय समय पे हमारे यहाँ भी हिंदुस्तानी जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हम अपने बहुत ट्रेन टीचर्स बुलाते हैं। उसका जैसा बताया कि दो उद्देश्य होता है, उसको आउटरीच के तहत हम जो लोकल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके साथ भी हम जो कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ मिलके परफॉर्मेंसेज करते हैं। दूसरा जो इच्छुक होते हैं, जो इंटरेस्टेड लोग होते हैं, जो यूज करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ क्लासेस भी चलती जी, है जी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि तबला इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिक को एक अपलिफ्ट करता है। हमारे जाकिर हुसैन साहब और हमारे कंट्री में जो दोस्त दुनिया भर में उसका नाम बढ़ाया, और हमारे जो टीचर हैं मिस्टर कुणाल काले, ही इज अगेन वेरी द सीनियर, वेरी ट्रेंड, वेरी एक्सपीरियंस्ड टीचर। तो मैं चाहूँगा कि लोग इनसे आए, जुड़े, देखें।
0: बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम मिलते हैं मिस्टर कुणाल काले जी से जो आई

0: ऐसे में तबला टीचर है, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्ते।
0: नमस्कार। और अगर हम तबला की बात करें और संगीत की बात करें, हम चाहेंगे आपके विचार इस पर क्या है।
1: जी, सबसे पहले सभी लोगों को, सभी दर्शकों को विश्व संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और संगीत एक ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जो दुनिया भर में लोगों को संस्कृति, भाषा और परंपरा इससे इसके परे जोड़ती है। और तबला इस वाद्य का भारतीय अभिजात संगीत में एक अमूल्य धरोहर और इसका एक अमूल्य योगदान है। जैसे आप देखेंगे तबला ना कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में आप देख सकते हैं, इसका उपयोग आप जैज म्यूजिक है, वर्ल्ड म्यूजिक है, या आजकल का आधुनिक जो संगीत है इसमें भी इसका बहुत अमूल्य योगदान है और इसका महत्व भी है। इसका महत्व होने का एक कारण ये है कि तबला ये जो वाद्य है, इसका जो नाद है, जो उसका एक साउंड जो है इंस्ट्रूमेंट का, वो और इस साउंड से जुड़े हुए उसकी जो लैंग्वेज है, तबला भारतीय संगीत ना कि केवल भारतीय संगीत बल्कि दुनिया भर में जितने भी परकशन इंस्ट्रूमेंट है उसमें सबसे ज़्यादा भाषा जो जिस इंस्ट्रूमेंट को है वो तबला है। जैसे कि हम लोग हमारी चीज़ें जो एक्सप्रेस करते हैं, हमारी भावनाएँ एक्सप्रेस करते हैं, वो सारी भावनाएँ हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट में देख सकते हैं। तो ना कि ये बस स्वर से जुड़ा हुआ इंस्ट्रूमेंट है, इसमें भाषा भी है। तो भाषा का योगदान बहुत है और इसके कारण ये इंस्ट्रूमेंट आजकल के युवा लोगों में और आजकल के म्यूज़िक में ज़्यादा पॉपुलर है। ये ना कि बस भारतीय संगीत का एक हिस्सा है बल्कि ये पूरे विश्व संगीत का एक हिस्सा है, ये हम लोग मानते हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ पे IGCIC में मेरे पास जो छात्र सीख रहे हैं उसमें सारे स्टूडेंट्स ना कि बस तबला और ढोलक, इंडियन परकशंस, जैसे पखावज भी मेरे पास सीखते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ के जो आर्टिस्ट है जो ड्रम्स बजाते हैं, परकशन बजाते हैं और जेम्बे या ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, रावण प्लेयर जो है, यहाँ के सारे लोग यहाँ पे भारतीय संगीत और लयताल सीखने के लिए हमारे पास आते हैं। तो मुझे इस बात से खुशी होती है कि संगीत बस दो संस्कृति को नहीं जोड़ता है, तो संस्कृति के आगे लोगों को जो जोड़ने का काम होता है वो तबले से हो रहा है मॉरिशस में। इस बात के लिए मैं खुश हूँ। हम लोग ना कि बस यहाँ पे संगीत सिखाते हैं बल्कि यहाँ के विविध, मतलब यहाँ के जो कलाकार हैं, संस्थाएं हैं। और मैंने यहाँ पे देखा मॉरिशस में, बहुत खुशी होती है कि नेल्सन मंडेला एक जो संस्था है वो, या फिर आप देखिए चाइनीज म्यूजिक स्कूल है और फिर आई गेस तमिल फेडरेशन जो है यहाँ के, तो इन सबके साथ हमने कोलैबोरेशन करके एक संगीत के बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे किए हैं। तो यही है विश्व संगीत की सारे संस्कृति और सारे कलाओं को जोड़ते हैं और उसमें से एक अपनी कला प्रस्तुति करते हैं।
0: इसलिए तो कहते हैं ना, संगीत जो है सीमाओं के पार जाता है, संगीत को ना ही कोई सीमा बांध सकती है, क्योंकि कहते हैं सरहद तो सिर्फ हम जैसे

0: तो सिर्फ हम जैसे
1: को परंपरा के पास जाना पड़ता है। परंपरा गुरु शिष्य से जुड़ी हुई है और भारतीय संगीत और भारतीय संस्कृति की नींव गुरु शिष्य परंपरा से ही है। आप कोई भी चीज देखेंगे तो गुरु शिष्य परंपरा से ही जुड़ी है। तो मेरा भी वही जोड़ना हुआ। मेरी शुरुआत मैं बचपन में 6 साल का था, वहां से मेरी शुरुआत हुई। मेरे प्रारंभिक गुरु के पास मैंने शिक्षण लिया। उसके बाद मैंने भारत के एक लीजेंडरी तबला आर्टिस्ट है और उनका अमूल्य योगदान है भारतीय संगीत में, तालयोगी पंडित सुरेश तलवलकर जी मेरे गुरु, जिनके पास मैं 15-16 साल गुरु शिष्य परंपरा में रह के मैंने अपना शिक्षण प्राप्त किया और फिर एमए कंप्लीट किया मैंने तबले में। और उसके बाद बहुत जगह पे प्रोग्राम्स भी किए हैं और विश्व संगीत में भी मुझे तबला का एक अपना प्रोग्राम करने का मौका भी मिला है।
0: जी, तो चलिए हम तो आपसे पूछना चाह रहे थे कि किस तरह से जो है मॉरिशन कल्चर में आप देखते हैं कि लोगों के दिल में जो है तबला के प्रति रुचि है, लेकिन आपने अपने बातों में बता ही दिया कि किस तरह से नौजवान है और किस तरह से काफ़ी संस्थाओं के साथ आप लोग जुड़कर कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं जब कोई भी स्टूडेंट आप लोगों से जुड़ता है ICIC के माध्यम से, उन्हें सिर्फ सीखने का अवसर नहीं बल्कि एक मंच भी प्रदान किया जाता है जहाँ पर वो अपनी कला को दर्शा भी सकते हैं। सिर्फ ICIC तक ये मंच सीमित नहीं है, हमने तो कई बार टेलीविजन पर देखा भी है, विभिन्न संस्थाओं के साथ आप जुड़ते हैं, बड़े बड़े जब आयोजन होते हैं, फिर चाहे वो गणेश चतुर्थी हो, दीपावली हो या कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, तो इसमें जो है आपके स्टूडेंट्स भी भाग लेते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: जी, इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। मुझे खुशी है कि तबला ये जैसे देखा जाता है कि मेल डोमिनेटिंग परकशन इंस्ट्रूमेंट ऐसे कुछ जगह पे बोलते हैं लोग, पर मैं इसके लिए एक उदाहरण मॉरिशस का देना चाहूंगा कि मेरे पास यहाँ पे लगभग 50-60 महिला है तबला सीख रही है।
0: ओ, ये तो बहुत ही कमेंडेबल है।
1: ना कि वो बस तबला सीख रही है, उसमें से यंगस्टर्स का जो नंबर है वो सबसे ज्यादा है। और यंगस्टर्स लड़कियों में से बहुत सारे मेरे जो स्टूडेंट्स है उन्होंने बहुत सारे जगह पे परफॉर्मेंसेस भी दिए है। तो ये खुशी की बात है कि महिलाएं भी इसमें हैं,
0: जुड़ रही है
1: और अपनी कला के प्रति अपना प्रेम दिखा रही है, ना कि सीख रही है, बल्कि कुछ इनमें से ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे जाके तबला आर्टिस्ट बनना भी है। तो ये मैं चाहता हूं कि ये अच्छी बात है और IGCIC ना कि बस एक क्लासरूम नहीं है कि जहाँ पे आप आते हैं और बस तबला सीखते हैं, गाना सीखते हैं, डांस सीखते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे आर्टिस्ट भी बाहर उभरते हुए आ रहे हैं और इसके लिए हम लोग बहुत खुश है कि मॉरिशस में इतना बड़ा अच्छा काम हो रहा है।
0: और तबला की बात करें तो यहाँ पर तो इतने प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, रामायण गान होता है या जो भी होता है, खासकर जिसमें युवा जुड़े हैं उनमें तो तबला की आवश्यकता तो पड़ती ही है, क्योंकि आई बिलीव ये सारी चीजें तबला के बिना अधूरा है।
1: जी जी जी, यहाँ पे भजन के बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, हर जगह पे तबला आर्टिस्ट है, तबला का योगदान है।
0: कभी कभी तो तबला आर्टिस्ट की कमी भी महसूस होती है, कभी आवश्यकता होती है। तो हमें पता है हमारे सामने ऐसे काफी सिनेरियोज आए हैं जहां पर लोग ढूंढते और नहीं मिलते हैं। तो अच्छा है कि युवा जो है यहां के जुड़ रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में शायद ऐसी कमी हम नहीं देख पाए। तो आपको बहुत बहुत हम धन्यवाद कहेंगे और शुभकामनाएं देंगे आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और इस अच्छे कार्य के लिए। आपको हम कुछ बजाने के लिए तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई संदेश अगर आप देना चाहें तो कुछ सुना दीजिए। बिल्कुल,
1: आज के इस शुभ अवसर पे मैं जितने भी कलाकार है यहाँ के मॉरिशस के, जितने भी गुरु है, जितने भी संगीत से जुड़े शिक्षक है, शिष्य है, उन सबको एक संदेश यही दूंगा कि आप आगे की पीढ़ी के लिए ऐसे ही काम करते रहिए, संगीत को आगे बढ़ाते रहिए। और इसके लिए कुछ एक छोटी सी चीज मैं
0: बहुत धन्यवाद। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगी, अपने गुरु शिष्य परंपरा की बात की, जो समय के साथ हम देख रहे हैं काफी कम होता जा रहा है। और गुरु की बात करें तो जरूरी नहीं है कि एक संगीत ही के क्षेत्र में या किसी भी आर्ट फॉर्म में ही एक गुरु की आवश्यकता होती है। अभी का हमारी जो नौजवान है, जो नई पीढ़ी है, वो जल्दी बहक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आइडल का होना, एक गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। मतलब माता पिता तो है ही, लेकिन गुरु का होना बहुत जरूरी है, जो आपको गाइड करे, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए।
1: गुरु आपको सही मार्ग दिखाता है।
0: जी।
1: तो वो मार्ग दिखाने वाला जो व्यक्ति है,
0: जी।
1: वो होना आपके जीवन में बहुत
0: आवश्यक
1: जरूरी है।
0: और अभी के समय में तो शायद ज्यादा इसकी आवश्यकता है।
1: जी जी,
0: तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल काले जी।

0: रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने वोकल से शुरुआत की तबला पर, और अब बारी है डांस की। क्योंकि संगीत की बात करें तो इन सब के बिना संगीत जो है अधूरा है। और इस समय हमारे साथ IGCIC के डायरेक्टर श्री रंजन सिंह जी तो उपस्थित है ही, साथ ही IGCIC की कथक डांस टीचर भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, डॉक्टर समीक्षा शर्मा जी। आपका स्वागत हम करते हैं। उससे पहले हम एक श्रोता से मिलेंगे जो हमारे साथ लाइन पर है, चलिए उनको सुनते हैं। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं हूँ बसंती।
0: नमस्ते बसंती जी, कैसी है आप?
1: मैं ठीक हूँ। अच्छा, संगीत दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत धन्यवाद।
1: मैं दो लाइन गाने जा रही हूँ।
0: बिल्कुल
1: जी। चांदी जैसा रंग,
0: ओके।
1: चांदी जैसा रंग है तेरा,

0: चोरी बाकी सब कंगाल। जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, जिस रस्ते से तू गुजरे वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर के कोमल राहट सोते भाग जगाए, जो पत्थर छुए गोरी वो ही राह बन जाए, तू जिसका मिल जाए वो, तू जिसका मिल जाए वो हो जाए मालमाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल।
1: बहुत धन्यवाद वसंती जी इन सुंदर पंक्तियों के लिए। चलिए अन्य कोई श्रोता है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं, संगीत दिवस के महत्व पर बात करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। 4028085 है नंबर हमारा। रंजन जी आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम डांस की बात करते हैं, नृत्य की बात करते हैं, ऑब्वियसली ये भी संगीत में अपने आप में एक बहुत बड़ा योगदान देता है, एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, इस पर आपके क्या विचार है?
2: हमारी भारतीय संस्कृति में नृत्य की बहुत पुरानी परंपरा रही है। एक सिंधु सभ्यता जो वन ऑफ द एंशियंट सभ्यता है, वहाँ से अगर जो अवशेष मिले हैं उसमें एक डांसिंग लेडी हैं, सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट अन आई मीन जहाँ से हमारे जो रिटेन हिस्ट्री नहीं, उससे पहले भी डांस की परंपरा है। नाट्यशास्त्र भरत मुनि ने लिखा वहाँ से लेकर के, और सबसे खास बात है कि भारत देश में जो विविधता है, जितने क्लासिकल डांस के फॉर्म्स हैं, हर क्षेत्र हर एरिया में अलग अलग विधाएं हैं और अलग अलग परंपराएं हैं। और हमारे साथ आज परंपरा है जो नॉर्थ जहाँ से जहाँ मॉरिशियस में भारत से ज़्यादा जो लोग आए हैं वहाँ की नृत्य परंपरा को ये आगे ले करके आने वाली हैं। और इनके बारे में मैं बताना चाहूँ कि ये बहुत ट्रेन टीचर हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने डॉक्टरेट किया हुआ है और कई कंट्रीज में सिखा चुकी हैं, और डांस सिखाने में इनका करीब करीब 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव रहा है। तो
1: चलिए बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं डॉक्टर समीक्षा शर्मा जी से, जो IGCIC में कथक डांस टीचर हैं। और लोग जितने हमारे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो सोच रहे होंगे ना कि संगीत की बात करें तो क्यों हमने इन अलग अलग जो है इसको जोड़ा, पर कहीं ना कहीं वोकल की बात करें, तबला की बात करें, डांस की बात करें, संगीत के बिना तो सब कुछ अधूरा है। तो डॉक्टर समीक्षा जी आपका स्वागत है, थोड़ा सा अपने बारे में बताया। ऐसे हमें भी सौभाग्य मिला है आपको देखने का और सुनने का, ये बड़ा अच्छा गाती भी है हमें पता है।
3: सबसे पहले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरी ओर से विश्व संगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे बारे में, मैं जब 8 साल की थी तब से मैं नृत्य कर रही हूं, और मेरे जो गुरुजी हैं, प्रथम गुरुजी हैं, वो गुरु श्री पुरुषोत्तम नायक जी थे। मैं बेसिकली ग्वालियर की हूं, मध्य प्रदेश से आती हूं। उसके बाद मैंने दिल्ली कथक केंद्र में गुरु श्री पंडित राजेंद्र गंगानी जी से नृत्य की शिक्षा ली। और मेरे बारे में बस एक लाइन यही कहना चाहूँगी कि नृत्य मेरे लिए सिर्फ नृत्य नहीं है, मेरे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे जिसके बिना मैं शायद सांस भी ना ले पाऊँ। तो नृत्य जो मैंने सीखा उसके प्रति मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं विश्व स्तर पर और जहाँ जहाँ भी मुझे अवसर मिले मैं उसको फैलाऊँ, लोगों को उससे प्यार करना सिखाऊँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है। जिस तरह से मैं नृत्य को देखती हूँ, सभी उसी नज़रिए से देखें। मेरे लिए नृत्य कथक कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और मैं ऐसा ही अपने सभी शागिर्दों को कहना चाहती हूँ कि जो कथक नृत्य है बहुत भावपूर्ण है, और कथक का जो शब्द शाब्दिक अर्थ है वही अपने आप में ये कहता है कि नृत्य कथा कहे सो कथक कहावे, जैसा कहा वैसा करके दिखाया तो वो नृत्य हुआ। और

0: यहाँ पर हम संगीत की बात कर रहे हैं, तो संगीत में अभी आपने गायन, वादन और नृत्य तीनों को शामिल किया, तो जो हमारी गायन परंपरा है वो स्वर नाद आधारित होती है, जो तबला वादन परंपरा है वो ताल आधारित होती है, ताल से प्रभावित होती है, और जो नृत्य है वो भावपूर्ण होता है, जो आपको मेरा चेहरा देखकर शायद पता चल रहा होगा। तो इन तीनों विधाओं को मिलकर संगीत बनता है। और हम जहाँ तक भारतीय संगीत की बात करते हैं, तो ये तो शायद पूरा विश्व में अभी सभी लोग इस बात के लिए जागरूक हो चुके हैं कि हमारा जो संगीत है वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हम नटराज को देखते हैं, जैसा आपने शुरुआत की इंद्रियों की, अभी हमारे पॉडकास्ट की जो शुरुआत हुई आपने इंद्रियों की बात की, तो जो नटराज की मूर्ति है उसमें हमें पूरा ब्रह्मांडीय ऊर्जा देखने को मिलती है, और वो हम अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं हमारे संगीत के माध्यम से। और जो हमारा नृत्य है वो मनोरंजन का साधन तो है ही, मनोरंजन, और जैसा कि कुणाल ने कहा आत्मरंजन, और आत्मरंजन के साथ साथ हम इस सृष्टि से जुड़े, इस प्रकृति के सूक्ष्म रूप से जुड़े, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और हम अगर छोटे रूप में भी इसको सीखते हैं तो भी हम वो उसको करने में बहुत हद तक सफल हो पाते हैं। तो ये नृत्य है, ये हमारा संगीत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। और नृत्य की बात करें और खासकर मॉरिशन कंटेक्स्ट में बात करें, आपके यहाँ तो बहुत सारे शिष्य जो है सीखने आते हैं, और हर उम्र के बच्चे हो, बड़े हो, और कुछ तो ऐसे भी हैं जो रिटायर होने के बाद सोचते हैं कि अब मुझे जो है अपने शौक को पूरा करने का अवसर मिला है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपके क्या विचार हैं?
0: ये आप बात आपने बिल्कुल सही कही कि मेरे पास हर उम्र के बच्चे आ रहे हैं, मतलब 3-4 साल से लेकर 70-80 साल की महिलाएं तक आ रही हैं, और सर वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं सीखने में कि मतलब उनसे शायद सीधा खड़ा भी नहीं हुआ जाता, पर वो डांस करना चाहती हैं और वो सीखना चाहती हैं। तो हमारे पास जैसा मेरा अनुभव है, तो मैं अपने अनुभव के अकॉर्डिंग उन लोगों को उसी तरीके से सिखाती हूँ कि मतलब उनको कम्फर्टेबल रहे, उनको इंटरेस्ट भी रहे, और वो अपने व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ चीज़ें जोड़ती रहें। मतलब ये एक अवसर IGCIC मॉरिशंस को प्रोवाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए, अपनी उम्र को भूल जाना चाहिए, और अगर पूरे जीवन तक वो नृत्य नहीं कर सके हैं और अभी वो करना चाहते हैं तो भी उन्हें ज़रूर जुड़ना चाहिए।
1: बिल्कुल शमीक्षा जी, अभी का जो समय है, अभी की हमारी जीवन शैली काफ़ी बदल चुकी है, हर कोई स्ट्रेस में जीता है, हर कोई तनाव में जीता है, आज हमारी एक इच्छा पूरी हो रही है तो कल दूसरी इच्छा जागरूक हो जाती, तो किस तरह से डांस के जरिए अपने इंद्रियों की जब बात की तो किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, और किस तरह से ये हमें आने वाले चैलेंजेस के लिए तैयार कर सकता है?
0: देखिए, सारी फसाद की जड़ जो होता है हमारा माइंड होता है, माइंड और इंद्रियां आप कह लो, तब जब आप उसके वशीभूत होते हैं तब आप एक ही डायरेक्शन में सोचते हैं। नृत्य में आपको या किसी भी संगीत विधा में आपको अपने अभ्यास की पुनरावृत्ति करनी होती है, मतलब आपको निरंतर उस चीज़ पर फोकस्ड होना पड़ता है, काम करना पड़ता है, वो एक मेडिटेशन की तरह है। और जब आप किसी भी प्रकार के मेडिटेशन में इंटू होते हैं, जाते हैं, तो आप स्वतः ही अपनी इंद्रियों को समझने लग जाते हैं। आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको एक आइसक्रीम की शॉप दिखी, आपको आइसक्रीम खाने का मन किया, तो अगर आप नृत्य से जुड़े आप समझ जाएंगे, नहीं नहीं ये तो सिर्फ माइंड का एक मतलब आकर्षण है जिसे मुझे नहीं हैंडल करना है, मुझे अपने आप में रहना है। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों पर विजय प्राप्त करते हैं, तो आप अपनी इंद्रियों को समझ पाते हैं। जैसे नटराज का मैंने उदाहरण दिया, तो नटराज के पैर के नीचे जो राक्षस है वो अपस्मार कहते हैं उसको, तो वो हमारी इंद्रियों को ही शो करता है, और निरंतर वो अभी तक भी वो उनके पैर के नीचे मारा नहीं गया है, क्योंकि इंद्रियों को आप मार नहीं सकते, आप सिर्फ उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? अपने इंटेलेक्चुअल, अपने सबसे ज़्यादा विस्तृत स्वरूप जो आपका आत्मिक स्वरूप है उसको जानकर, और वो हमें सहयोग करता है जानने में, हमारा संगीत, हमारा नृत्य।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, खासकर हम मॉरिशन समाज की बात करें, तो डांस किस तरह से आज की सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जा रहा है, क्योंकि आज से कुछ समय पहले की यदि हम बात करें तो ऐसा होता था कि इस प्रोफेशन को उस तरह से नहीं लिया जाता था, शायद एक शौक के तौर पर लोग जो है इसे छोटे है तब तक सीख रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी कॉलेजेस के बच्चे भी उन्हें कॉलेज में सीखने का अवसर मिलता है, लेकिन एक लेवल पर आता है जब पढ़ाई, जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो बच्चे जो शौक को अलग कर देते हैं और फिर पढ़ाई पर फोकस करने लगते हैं, लेकिन कितना जरूरी है अपने शौक को भी बनाए रखना और साथ ही अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना, तो इस पर आप कैसे जोड़ना चाहेंगे?
0: जीवन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक भौतिक में हमें भौतिकता में रहना ही पड़ता है, समाज की जो परंपरा है उसका निर्वहन करना ही पड़ता है, अपना जो भी खाना कमाना है वो करना पड़ता है। उसके अलावा जो आप कह रहे हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आत्मिक संतुष्टि बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप अपना 80% अपने भौतिकता को दे रहे हैं, अपने जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों को दे रहे हैं, तो 20% मुझे लगता है आत्मिकता की ओर ज़रूर देना चाहिए। जैसे रोज़ दिन में एक बार दिया करना हमारे लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार मुझे

0: लगता है हफ्ते में एक बार हमें हमारी कलाओं से, हमारी जड़ों से और किसी भी विधा से ज़रूर जुड़ना चाहिए। और वो जुड़ना मतलब सिर्फ टेक्निकल नहीं हो, जैसे कि आजकल लोग कहते हैं कि हमने बच्चों को स्विमिंग सिखा दिया, ठीक है स्विमिंग भी सीखो, बट स्विमिंग सीखना और संगीत सीखना इसमें बहुत फ़र्क है। मतलब स्विमिंग सिर्फ आपको एक तरह का स्किल्स दे रहा है, बट संगीत आपको ओवरऑल चीज़ें दे रहा है, आपको जीवन की सच्चाई से और अंतिम लक्ष्य से जोड़ रहा है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, संगीत अपने आप में सुनने में शब्द अपने आप में छोटा है, लेकिन उसका जो गहराई है उसमें आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आजकल डांस बोले हम, वोकल बोले या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाना बोले, इसे लोग एज अ प्रोफेशन आजकल बहुत चुन रहे हैं, है ना। एक समय था कि हमें सिर्फ डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, और माता पिता भी ऐसे ही ज़्यादातर जो है इस शैली पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इस जो है अलग अलग इस पर। लेकिन अभी समय के साथ आर्ट फॉर्म को एज अ करियर के रूप में देखा जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल देखा जा रहा है, और बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। मॉरिशस में भी कई सारे कथक इंस्टीट्यूट हैं, और जहाँ पे IGCIC के पुराने स्टूडेंट्स ने अपना खुद का इंस्टीट्यूट डेवलप किया है और बहुत अच्छा सिखा रहे हैं, काफ़ी सारे उनके पास स्टूडेंट हैं, तो ये करियर ऑप्शन भी बन चुका है। तो उसकी तरफ भी अगर जो इंटरेस्टेड हैं उन्हें ज़रूर आना चाहिए।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्या हमें सुनाएंगे।

0: जाना चाहिए और IGCIC से हमेशा के लिए जुड़ जाना चाहिए।
1: कुछ हम चाहेंगे आपसे कुछ सुने, ऐसे आपको हम नहीं जाने देंगे।
0: मैंने जैसा कि कहा नृत्य भावपूर्ण है, तो एक भाव की ही चीज़ मैं करना चाहूँगी। नृत्य की खास बात यह है कि इसमें सुर भी है, नाद भी है, ताल भी है और भाव भी है। तो भाव सभी लोग जानते हैं, कृष्ण से जुड़ा एक भाव है, कृष्ण के बचपन की छोटी सी छोटी कथाएं हैं, बहुत फेमस है यहाँ पर, माखन चोरी। तो उसका एक छोटा सा सुंदर कवित्व, पारंपरिक कवित्व है ये, तो वो मैं सुनाना चाहूँगी। धा धिन धिन धा धिन धिन धा तिन तिन ता त्रक धिन धिन दा कृष्ण सखा मिल गए ग्वालिन घर हिरत फिरत जब देख लियो तब ग्वाल के कांधे चढ़ माखन उतार लियो और खाए लियो दद की मटकी हटकी पटकी और दूध को पी के बखेर दियो पकड़ लियो राधा ने जब तब ग्वाल बाल सब भाग गए दधी खाए गए देख नारायण ताल बजावे नाचन लागे किट थे तथे तथे तकिट थे तथे तथे तकिट ताथे ता।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत खूब। आप तो हमें इंस्पायर कर रही है कि अब हमें भी आकर जो है कथक थोड़ा बहुत तो सीखना ही चाहिए, एटलीस्ट बेसिक।
0: बिल्कुल, आप संगीत सीख रही है, आप कथक की क्लास में भी आई है।
1: चलिए बहुत बहुत धन्यवाद समीक्षा जी, इतनी सारी जानकारियों के लिए, और इतनी सुंदरता से आपने जो है इस चीज़ को प्रस्तुत किया। हम जो है श्री रंजन जी से जानना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से कला का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है।
2: जैसा अभी समीक्षा जी ने भी बताया और बाकी हमारे साथी जो कलाकार हैं उन्होंने समझाया, जीवन में हमारा आज हम भाग दौड़ की जीवन में, हमारा लाइफ स्टाइल इज टू बिजी, सो वी आर टोटली इनग्रॉस्ड इन आर वर्क, जो प्रोफेशनल स्पेस ऑफ वर्क को ज़्यादा हम टाइम देते हैं। बट लाइफ का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ, वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत होती है, सम टाइम वी आर रनिंग बिहाइंड समथिंग, इट्स अ गुड थिंग, बट सब एक बार आपको ध्यान देना होता है, आपको खुद से देखना होता है। तो लाइफ का एक उद्देश्य है कैसे हम खुश रहें, हैप्पी रहें, कैसे जो आत्मसंतुष्टि की बात हो रही थी जो, वो कैसे मिले। संगीत वन ऑफ द बेस्ट थिंग वन कैन डू फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो इस संगीत से जुड़ने का कई तरीके हो सकते हैं, आप सुनते हैं उससे भी काफ़ी रिलैक्स मिलता है, बहुत टेंशन का टाइम है, कंसंट्रेशन बढ़ता है एंड हैप्पीनेस आती है, थोड़ी देर के लिए आप चीज़ों को भूल के आप जो आपकी जो जीवन में तनाव है, जो समस्याएं हैं, सम टाइम आप को ब्रेक भी मिलता है, सफर ब्रेक के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कार्यक्रम में आप बीच बीच में म्यूजिक लेके आ रहे हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि सब लोग अपने जीवन में थोड़ा ब्रेक लें, बहुत फास्ट जा रहे हैं आज डिजिटल एज में है, हम मोस्ट ऑफ टाइम स्क्रीन टाइम एंड द ऑफिस टाइम सब के चल, ब्रेक लें थोड़ा, अपने हॉबीज को परस्यू करें, वन ऑफ द म्यूजिक्स एंड IGCIC आपको एक प्लेटफॉर्म देगा, नॉट फॉर जो जिनको 1 ईयर और 6 मंथ का रेगुलर कोर्स करना है सीरियस, वो भी कर सकते हैं, मेच्योर भी आ सकते हैं, और इसके लिए प्री रिक्विजिट कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ओनली एलिजिबिलिटी यू आर विलिंग टू लर्न समथिंग, यू वॉन्ट टू इन्जॉय सेल्फ, सो प्लीज कम। उसके लिए हमने रजिस्ट्रेशन ओपन किया है एंड न्यू बैचेज हमारे जुलाई से फिर से प्रारंभ होते हैं, और हम अपने वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू इसको पॉपुलराइज भी कर रहे हैं, बट मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े उससे। और जैसे हमारे अभी आपने देखा हमारे साथी वोकल टीचर हैं, तबला टीचर हैं, डांस टीचर हैं, योग की भी टीचर हैं, तो ज़्यादा से लोगों से चाहूँगा कि जुड़ें, और हमारे कार्यक्रम में भी है, और हम विश्व संगीत दिवस मनाने की जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, सो हम आमंत्रित करेंगे और उसके टाइम और बाकी चीज़ें हम नोटिफाई करेंगे, तो उसमें हम लोग फिर एक बार लोगों के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, और सभी लोग आमंत्रित हैं। और एक बार फिर से बोलना चाहूँगा आपके मंच के माध्यम से, संगीत हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इससे जुड़िए, जिस फॉर्म में भी जुड़ना चाहते हैं जुड़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद श्री रंजन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। और जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे आपके सभी टीचर्स का, मिसेज डॉक्टर समीक्षा शर्मा जी जो डांस टीचर है, कथक डांस टीचर, फिर हमारे साथ जुड़े मिस्टर कुणाल काले जी तबला टीचर, और मिस्टर निर्मल्य सेन जी हिंदुस्तानी वोकल टीचर, आप सभी का बहुत बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और

संगीत के अलग अलग शैलियों को प्रस्तुत किया, नृत्य के जरिए, वोकल के जरिए, तबला के जरिए, और बेशक संगीत को अपने जीवन का हिस्सा बनाया, और देखिए किस तरह से स्ट्रेस जो है अपने आप में दूर होता है और लाइफ को आप एक पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख सकते हैं। तो जब बस आज के लिए बस इतना ही, जाते जाते हम हमारे सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों का धन्यवाद करेंगे, और साथ ही धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी प्रोडक्शन टीम, हमारी टेक्निकल टीम, प्रोड्यूसर हमारे निज़ाम जी रहे, साथ में टेक्निक पर हमारा साथ दिया कादिर ने, और हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट दीपशिका का आपका भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, जल्द हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। नमस्कार आप सभी को।

0: घड़ी मिलाते चलिए, शाम की ठीक 4 बज रही है। समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम सुमेहरा अकबर अली के साथ है। संत नमस्कार आदाब आपको सुमेहरा।
1: नमस्कार आदाब। साइबर जुर्मों में बढ़ोतरी हो रही है। एक साल में 866 महिलाओं के साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है जबकि 548 पुरुष शिकार हैं। ये मसला ज्यादातर नौजवानों को मुवस्सिर कर रहा है। 14 से 15 साल के शिकार नाबालिगों के साथ धोखाधड़ी के करीब 5000 मामले दर्ज हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने नौजवानों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ डिजिटल मजबूती। राष्ट्रसभा में सांसद रविराज बिचुक ने बजट में गन्ना और चाय उद्योगों के लिए घोषित प्रेरणादायक कदमों पर तसल्ली जताई है, लेकिन पब्लिक गैदरिंग और पर्सनलाइज्ड नंबर प्लेटों के फैसलों पर उन्होंने अपनी नामंजूरी जताई है। आज राष्ट्रसभा में ही रविराज बिचुक के बाद किशोर जुवाल ने सॉलिडारिटी और जिम्मेदारी पर बात की। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में अतिरिक्त 2 मिलियन रुपए लगाए जाने पर उन्होंने सरकार को दाद दी। उन्होंने कहा कि पेंशन प्रणाली में मीन्स टेस्ट को फ्रीज करने का फैसला के फैसले से लोगों को राहत पहुंची है। विदेश में कतर की सबसे बड़ी एलएनजी सुविधा जो रास अल अफान में स्थित है उसमें हुए जोरदार धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है और 66 लोग घायल हुए हैं। इस विस्फोट को एक तकनीकी दुर्घटना बताई जा रही है। और कनाडा में मोंट्रियल पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह को गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी, एक नागरिक और एक संदिग्ध, कुल 3 लोगों की मौत हुई है। एक सशस्त्र और खतरनाक संदिग्ध के संबंध में पहले जारी किया गया आपातकालीन अलर्ट अब समाप्त कर दिया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार और आदाब।
2: You're listening to RM3 Radio।

0: के सितारे।
1: तो प्यार भरा नमस्कार हमारे सभी दोस्तों को जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन। मैं हूं परी आपके साथ और वेल दो घंटों का ये सफ़र होने वाला है सुरों के नाम, मस्ती के नाम और उन आवाज़ों के नाम जिसने एहसास को गीत बना दिया। ब्यूटिफुल डुएट्स ऑफ किशोर कुमार एंड आशा भोसले आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। जब किशोर दा की जादुई आवाज़ का साथ मिला आशा जी की रंगीन और एक्सप्रेसिव सिंगिंग को, तो कुछ ऐसे डुएट्स बने जो आज भी दिलों पर राज करते हैं। तो तैयार हो जाए इस म्यूजिकल सफ़र के लिए जहां पर होंगे कुछ रोमांटिक मेलोडीज, नॉटी डुएट्स, फुट टैपिंग नंबर्स एंड किशोर दा के कुछ एवरग्रीन सोलो जेम्स भी। तो आपके लिए ये सफ़र हम बनाने वाले हैं खास। किशोर दा के सोलो सॉन्ग्स इन्जॉय करना चाहते हैं या फिर

कुछ वंडरफुल डुएट्स ऑफ किशोर कुमार एंड आशा भोसले. आप आए हैं बिल्कुल सही जगह जहां पर आपकी इस दोपहर को हम सजा रहे हैं इन खूबसूरत गीतों के साथ. और जब हमने बात की है किशोरदा के सोलो सॉन्ग्स की, सो हाउ कैन वी नॉट प्ले दिस वन. एक गाना ऐसा जो हमेशा रहा यादगार, किशोरदा की आवाज जिसमें जादू था, जो आज भी हमारे दिलों पर राज करते हैं. चलिए सभी के लिए थोड़ा सा प्यार हम भी मांग रहे हैं आपसे. आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 हो रहा है आपका इंतजार. परी का साथ है प्रोग्राम आपके सितारे ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.

0: RM3 Radio.
1: सो लेकर जा रहे हैं आज आपको यादों के उन सफर पर जहां पर कुछ प्यारे गाने आपका इंतजार कर रहे हैं। आशा भोसले किशोर कुमार के गाए हुए डुएट्स और किशोर कुमार के कुछ एवरग्रीन सोलो जेम्स सब कुछ मिलने वाला है आपको यहाँ ऑन रेडियो मनोरंजन। अभी के लिए विजया जी आप भी आ गई है अपना प्यार लेकर। सो ये गाना आपके नाम श्यामा रितेश रानी थनीश आदर्श निष्ठा युश्रा जयश्री राधा वशिष परवेज सभी जीवन परिवार बेल ऐसे हमारा साथ दे रहे हैं और कहते हैं गाना हो जाए फॉर द एंटायर क्रू ऑफ रेडियो मनोरंजन। थैंक यू सो मच फॉर द लव। साथ ही यहाँ पर आप हमारा साथ दे रहे हैं ये जानकर बहुत अच्छा लगा। सो ऐसे ही आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशंस 5250-6200-5250-6200 मैं कर रही हूँ आपका इंतजार।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. So, चलिए दोस्तों यहाँ पर किशोर दाओ और आशा जी की जो केमिस्ट्री है सिर्फ स्क्रीन पर नहीं बल्कि उनकी आवाज़ों में भी महसूस होती थी. ब्यूटीफुल वॉइसेस जो आज गूंज रहे हैं ऑन द वेव्स ऑफ RM3 रेडियो मनोरंजन. परी का साथ है आपके सितारे प्रोग्राम जो आज हमने डेडिकेट किया है इन सितारों पर उनके कुछ प्यारे गाने आपके नाम. और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर गोविंद रघुनंदन फ्रॉम वाकवा. हमारे लिए भेजा है आपने प्यार, सो वी हैव सम ब्यूटीफुल सॉन्ग्स आपके लिए एंड गोज आउट फॉर योर ब्यूटीफुल वाइफ वेदा. सभी रघुनंदन परिवार जो हमारा साथ दे रहे हैं. That's a beautiful track आपके नाम. मौसम प्यार का है और बस इस प्यार को हम आप तक पहुंचा रहे हैं दोस्तों. So messages, dedications 5250-6200-5250-6200. मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक.

0: के सितारे
1: सो वेल दैट वाज किशोर दा की आवाज और छोटा सा हिस्सा जो गाया था एनिट ने एंड दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल ट्रैक जैसे हम कहते हैं जिंदगी तो मिलती है एक बार इसे हंसकर जीना खुलकर जीना मुस्कुराकर जीना बहुत ज्यादा जरूरी है सो वेल दोस्तों आपको बता दें तार किशोर कुमार एक सिंगर ही नहीं बल्कि एक्टर कंपोजर प्रोड्यूसर और कॉमेडियन भी थे उनकी स्पॉन्टेनिटी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी और वेल दोस्तों जैसे हमने कहा कि आज कुछ ब्यूटीफुल डुएट्स हम लेकर आए हैं जिनको गाया है किशोर कुमार और आशा भोसले जी ने प्यार हो शरारत हो थोड़ी सी नोकझोंक किशोर दा और आशा जी हर मूड को परफेक्टली कैप्चर करते थे सो उसी लिस्ट में शामिल होता हुआ ये गाना बातों बातों में एफएम से लिया हुआ ये गाना फॉर ऑल द लिसनर्स एंजॉय दिस वन
2: सुनिए
3: कहिए कहिए ना

0: के सितारे।
1: तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं। जैसे हमने कहा कि आज किशोर कुमार आशा भोसले दोनों ही ऐसे लेजेंड्स हैं जिनकी आवाज़ हम आपको सुना रहे हैं, उनके प्यारे गाने आपको सुना रहे हैं ऑन रेडियो मनोरंजन प्रोग्राम आपके सितारे। ये सितारे ऐसे जो आज भी हमारे दिल में बसे हैं। एंड वैसे दोस्तों, जैसे हमने कहा कि गाने तो हर कोई स्पेशल होते हैं, गाने हर कोई लाजवाब होते हैं, लेकिन कुछ गाने ऐसे होते हैं जो एक गाने में पूरी कहानी बयां कर जाते हैं। द नेक्स्ट गाना, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। और जब हम किशोर दा हम आशा जी की बात कर रहे हैं और ये गाना ना चलाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। सो लेकर चलते हैं आपको इन द एरा ऑफ 1980s। एक फिल्म ऐसी आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। कहानी ही कुछ ऐसी थी जहाँ पर मोंटी डिस्कवर करता है अपनी पास्ट लाइफ को, रवि वर्मा और उनकी कहानी। सो यस, बात कर रहे हैं फिल्म कर्ज की। एंड जब ये फिल्म रिलीज हुई थी दोस्तों, तो ये फिल्म इतनी कुछ खास चली नहीं, लेकिन उसके बाद डीवीडीज, वीसीआर एंड सीरीज पर इस फिल्म को इतना देखा गया कि इसे एक कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला। सो कर्ज और ये फिल्म जिससे जुड़े हुए हैं कितने सारे किस्से, पूरा ही एल्बम इतना लाजवाब था, लेकिन उस एल्बम में से चुनकर लाए हैं ये एक आइकॉनिक गीत आप सभी के लिए। Enjoy this one.

पटना। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली, किसी ने जान

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: So, चलिए दोस्तों, एक हसीना थी फिल्म थी कर्ज, और यस, हमने देखी आउटस्टैंडिंग एक्टिंग ऑफ ऋषि कपूर. उनके साथ फिल्म में नजर आए राज किरण, सिमी गरेवाल एंड द वेरी क्यूट टीना मुनीम. अभी के लिए मूड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, लेकर आए हैं एक हैप्पी सॉन्ग आप सभी के लिए, जो इस वक्त हमारा साथ दे रहे हैं. जैसे हमने कहा कि आशा भोसले और किशोर दा के गाए हुए कुछ लाजवाब सॉन्ग्स आज आपके लिए हम पेश कर रहे हैं. प्रोग्राम आपके सितारे, मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन.
2: अरे देख रहे हैं
3: तो देखने दो,
2: जल भी रहे हैं.
3: अरे तो जलने दो,
2: खुली सड़क है बाबा.
3: तो क्या हुआ भाई?
2: हाँ तो हट जाए
3: हो जाए.

डेडिकेटेड है किशोर कुमार और आशा जी के गाए हुए कुछ ब्यूटीफुल डुएट्स के नाम कुछ ऐसे ही यादगार सोलो हिट्स भी लाए हैं हम जो किशोर दा ने गाए हैं उनकी आवाज़ से सजे हुए ये नगमे जो हम आपके लिए पेश कर रहे हैं उम्मीद करते हैं इन गानों को आप पसंद कर रहे हैं सो बस दोस्तों अभी थोड़ी ही देर में हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आवर की ओर जहाँ पर ये गानों का कारवां आपके लिए जारी रहेगा अगर आप भी साथ निभा रहे हैं आपके मैसेजेस आपके डेडिकेशन 5250-6200-5250-6200 मैं हूं परी आपके साथ शाम के 6 बजे तक ऑन द वेव्स ऑफ RN3 रेडियो मनोरंजन

वेल दोस्तों इट्स 4:58 और यहां पर नेक्स्ट आवर की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं, लेकिन ये जो गाने हैं आपके लिए तो चलते ही रहेंगे। जैसे हमने कहा कि आज आपके सितारे हमारा ये जो प्रोग्राम है

0: आपके सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, ये जो सफर है बस अभी यहाँ पर जारी है और जारी रहने वाला है शाम के 6 बजे तक। सुरों का जादू तो कभी भी फीका नहीं पड़ता और आज हम आपको तो उस दौर में लेकर गए हैं जहाँ पर बहुत सारे यादों के कारवां जुड़े हैं। सुमेल, एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं जहाँ पर लेकर आए हैं किशोर दा आशा जी के कुछ मेमोरेबल डुएट्स एंड किशोर दा के गाए हुए कुछ एवरग्रीन मेलोडियस सॉन्ग्स। कुछ उनके सोलो हिट्स भी आपके लिए हम पेश कर रहे हैं क्योंकि आपके इस आफ्टरनून टाइम को हम खास और स्पेशल बनाना चाहते हैं। सो वेल फ्रेंड्स, अभी के लिए मैं हूँ परी आपके साथ और आपके लिए ये प्यारा सा प्रोग्राम जिसका नाम है आपके सितारे। कहते हैं ना दोस्तों कि कुछ सितारे आसमान में चमकते हैं लेकिन कुछ सितारे हमारे दिलों में उतर जाते हैं। तो आज दो ऐसे ही सितारे जो आज भी हमारे दिलों में इतने ही प्यार से चमक रहे हैं। बात कर रहे हैं हम किशोर कुमार आशा भोसले की, उनके कुछ प्यारे गीत और उसी लिस्ट में शामिल होता हुआ ये गाना एंजॉय दिस वन। परी का साथ है ऑन द वेव्स ऑफ रेडियो मनोरंजन। प्यारे प्यारे गाने आपके नाम आपके सफर को बना रहे हैं खास एंड स्पेशल, लेकर आए हैं प्रोग्राम आपके सितारे।

0: साहब।
1: कौन? मैं?
0: जी हाँ, आप ही से कह रहा हूँ। यहाँ आएंगे आप?

0: क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम सुनीता।
0: लवली नेम।
1: थैंक यू।
0: गाएंगे आप मेरे साथ?
1: ना, डर लगता है।
0: डरने की क्या बात है, मैं आपके साथ गाता हूँ।

दोनों हमारे साथ गा सकते हैं तो आप सब क्यों नहीं गा सकते? रेडी रेडी रेडी रेडी यस 1 2 3 4 ला ला ला म्यूजिशियंस आप लोग मत बजाइए। रेडी 1 2 3 4 ला

0: के सितारे
1: यादों की बारात फिल्म का ये गाना आशा भोसले किशोरदा आर डी बर्मन व्हाट अ कॉम्बिनेशन। चलिए दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं आपके सितारे हमारा ये प्रोग्राम जिसमें आज कुछ खास गाने शामिल हो रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपकी मैसेजेस आपके डेडिकेशंस आप हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस जादुई मैजिकल नंबर पर जहां पर आपका प्यार हम तक पहुंच जाता है। सो नंबर है 5250-6200-5250-6200। यहाँ पर प्रोग्राम को एंजॉय कर रही हैं हमारी प्यारी सी रेखा जी, कहती हैं वंडरफुल प्रोग्राम और डेडिकेट करना चाहती हैं गाना उनके नाम बेटा है अंश उनके लिए, वो मुझे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हैव अ वंडरफुल टाइम रेखा जी और बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यार से आप हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सरिता जी काट्रबोन से कहती हैं आशा जी और किशोर कुमार के डुएट्स चल रहे हैं तो मेरा नाम भी शामिल कर दीजिए। चलिए सो यहाँ पर नाम आपका शामिल हो गया और चल पड़ा ये गाना, डेडिकेट कर रहे हैं आपके नाम। ये गाने ऐसे हैं जो दिन में ही नहीं रात में भी नींदों को चुराते हैं, कुछ प्यारे गाने टेकिंग यू डाउन मेमोरी लेन, आशा जी किशोर दा की आवाजें, अ ब्यूटीफुल ट्रैक आप सभी के नाम। एंजॉय दिस वन।

0: के सितारे।
1: तो जी हाँ दोस्तों, शाम के 5:30 कुछ प्यारे गाने आपके लिए हम लेकर आए हैं। यहाँ पर विजया जी, आप पसंद कर रही हैं गानों को, जानकर अच्छा लगा। चलिए ये प्यारा सा गाना आपके नाम, माया जी आप हैं मोंटाई ब्लॉन्च से और कहती हैं दैट इस प्लेलिस्ट में मेरा नाम भी ज़रूर जोड़िए। तो चलिए चल पड़ा ये गाना आपके नाम, हमारे सभी लिसनर्स जो दे रहे हैं साथ ऑन रेडियो मनोरंजन।

You're listening to RM3 Radio Manoranjan. जी हाँ दोस्तों, हवा के साथ साथ घटा के संग संग इन गानों को हम भी आप तक पहुंचा रहे हैं. ब्यूटीफुल डुएट्स ऑफ किशोर कुमार, आशा भोसले, जो आज गूंज रहे हैं ऑन RM3 रेडियो मनोरंजन. आपके सितारे प्रोग्राम, प्यारे गाने आपके नाम, परी का साथ शाम के 6 बजे तक. एंजॉय दिस वन.

कुछ सितारे ऐसे जो हमेशा ही यादगार रहते हैं और कुछ गाने ऐसे जो हमेशा ही हमारे दिल के करीब रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जिन्होंने इतने प्यार से मेरा यानी कि परी का साथ दिया। आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी और सफर में ऑन रेडियो मनोरंजन। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और प्यारे गानों को सुनते रहें। छोड़े जा रहे हैं आपको विद दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। हमारे गाने भी बिल्कुल इसी तरह चलते रहेंगे रेडियो मनोरंजन पर, आपके दिल को बहलाने के लिए, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ाने के लिए। सभी के लिए परी को दीजिए इजाजत। थोड़ी ही देर में सुन पाएंगे समाचार बुलेटिन और उसके बाद कुछ खूबसूरत प्रोग्राम आपके लिए चलते रहेंगे ऑन रेडियो मनोरंजन। तब तक के लिए ये प्यारा सा गाना आप सभी के नाम। अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे म्यूजिकल एंड स्टे कनेक्टेड RM3 रेडियो मनोरंजन के साथ।

0: पेश है समाचार बुलेटिन। आप सभी का खैर मकदम। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। आज राष्ट्रसभा में वित्तीय साल 2024-2025 के लिए 2.2 बिलियन रुपए के अतिरिक्त बजट पर मंजूरी जताई गई। इस विधेयक को पेश करते हुए प्रधान एवं वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट 2024-2025 पुरानी वित्त मंत्री की तरफ से गैर जिम्मेदारी की एक बड़ी मिसाल है। राष्ट्रीय बजट में ऐलान किए गए जिन कदमों ने मुर्शिदों की तवज्जो आकर्षित की, उनमें माओं को प्रदान खास छुट्टियां और लड़कियों को प्रदान मेंस लीव शामिल। यूरोप में भीषण गर्मी, 15 से ज्यादा लोगों की मौत। और कोंगो में इबोला के संक्रमित मामले 1000 के पार। नमस्कार और आदाब। राष्ट्रसभा में वित्तीय साल 2024-2025 के लिए 2.2 बिलियन रुपए के अतिरिक्त बजट पर मंजूरी जताई गई है। इस विधेयक को पेश करते हुए प्रधान एवं वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि बजट 2024-2025 पुराने वित्त मंत्री की तरफ से गैर जिम्मेदारी की एक बड़ी मिसाल है। उन्होंने साफ कहा कि सरकार अर्थनीति को मजबूत बुनियादों की राह पर दोबारा गामजन करने के लिए कटिबद्ध है। मिगन पुन्ना पनायकन, करुणा लालू।
1: सप्लीमेंटरी अप्रोप्रिएशन बिल 2024-2025 में 7 सार्वजनिक विभागों और मंत्रालयों के व्यय के लिए 2,264 मिलियन रुपए का प्रावधान है। इनमें खासकर प्रिजन सर्विस, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर दफ्तर, आवास, उच्च शिक्षा मंत्रालय, प्रांतीय प्रशासन, दमकल विभाग और पार्लियामेंटरी काउंसिल दफ्तर शामिल हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार पूर्व वित्त मंत्री द्वारा खर्चों का गलत अनुमान लगाया गया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने कहा, वित्त वर्ष 2024-2025 का बजट पूर्व वित्त मंत्री की फिस्कल गैर जिम्मेदारी का एक और स्पष्ट उदाहरण है। आय के अनुमान अत्यधिक बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए, जबकि व्यय की आवश्यकता को काफी कम आंका गया। ऐसा प्रतीत होता है कि बजट घाटे को कम दिखाने और सार्वजनिक कर्ज को GDP अनुपात यानी रेशो को घटता हुआ प्रदर्शित करने के उद्देश्य से किया गया। सरकारी नेता ने कहा कि सार्वजनिक स्थिति में सुधार के वास्ते साहसिक फैसले लिए गए। हमने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटने का रास्ता नहीं लिया। सरकार अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक वित्त को मजबूत आधार पर स्थापित करने तथा सतत और समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। बहसों के दौरान विपक्षी व्हिप आरजी अग्रवाल ने उच्च शिक्षा मंत्रालय के लिए निर्धारित अतिरिक्त 1.3 बिलियन रुपए के बजट पर रुचि दिखाई और सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में बोर्ड के गठन में विलंब का उल्लेख किया।
2: Les conseils d'administration n'ont été constitués que cette année-ci. Quel est le résultat final? Madame la présidente, l'université de Maurice a régressé de la 2457e place mondiale est arrivée aujourd'hui à 2484. Elle a perdu 27 places.
1: उच्च शिक्षा मंत्री ने स्पीकर द्वारा खास रूप से अनुमति प्राप्त करने के बाद उन्हें जवाब दिया। कविराज सुको ने हाई एजुकेशन एक्ट में लाए गए सुधारों का उल्लेख किया।
3: The ranking is their doing. They did nothing for this sector. That's why we are in this position today. When we came, we changed the High Education Act immediately. I tell you now, go and check the QS ranking. University of Mauritius is ranked in the top 150 in the world in tourism and hospitality.
1: प्रधानमंत्री ने बहसों के समाहार के दौरान भी विपक्षी व्हिप को जवाब दिया। इस बिल को सुधार के साथ पारित किया गया।

0: और राष्ट्रीय सभा में राष्ट्रीय बजट 2025-2026 के संदर्भ में अप्रोप्रिएशन बिल 2026-2027 पर बहसें जारी हैं। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने कहा कि समाज में जुर्मों, ध्वनि प्रदूषण और दूसरे प्रकार के अपराधों का हल तालीम है। परवरिश की बुनियाद अच्छी शिक्षा पर निर्भर है। बुलिंग के सिलसिले में बजट में ऐलान कदम पर बात करते हुए मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने चेतना अभियानों की अहमियत पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए ऐलान कदमों की सराहना भी की है। और लंच ब्रेक के बाद रोड्रिग्स की सांसद माना ने राष्ट्रीय बजट पर अपनी राय पेश की। उन्होंने कहा कि रोड्रिग्स के लिए 11.2 बिलियन रुपए का बजट निर्धारित करने के अलावा ये बजट कई पहलुओं के मद्देनजर हिम्मत वाला है। श्रीमती मनन मैटरनिटी लीव को एक साल तक बढ़ाने के प्रावधान पर उन्होंने खुशी जताई और टैक्स के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुस्लिम परिवारों पर टैक्स का बोझ है, इसके बावजूद राष्ट्रीय अर्थनीति और खरीद ताकत में संतुलन लाया गया है। इसके अलावा आज ही जोना बेगोंजी, रुबना दोगियाऊ, रिशो जुवाल और सांसद रविराज बिचुक के भी भाषण रहे। राष्ट्रीय बजट में ऐलान किए गए जिन कदमों ने मुशनों की तवज्जो आकर्षित की उनमें माओं को प्रदान खास छुट्टियां और लड़कियों को प्राप्त छुट्टियां भी शामिल हैं। मैटरनिटी लीव को 12 महीनों तक बढ़ाया जाना और मेंस लीव शामिल किया जाना। हर महीने जिन लड़कियों और महिलाओं को मेंस के दौरान दर्द होता है उनको एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। अंजुराम गुलाम, विधि मासीपुरन।
1: रिमोट में नई बैटरी डाल दी गई है, एंटीना और कान खड़े हो गए हैं, बजट भाषण शुरू हो गया है, चर्चा हो रही है, नोट्स लिए जा रहे हैं। दिलशा और प्रिशिला दो बहनें हैं, एक प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं और दूसरी सरकारी क्षेत्र में। दिलशा निर्माण सेक्टर में काम करती हैं और संस्कृति से संबंधित उपायों में भी उसकी रुचि है। विरासत स्थलों में निवेश पर चर्चा की गई, साथ ही नेशनल हेरिटेज ट्रस्ट फंड पर फिर से गौर करने की बात की गई, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय पहचान है। दूसरी बात हाउसिंग थी।
2: Peut-être le gouvernement qui pouvait bien revoir. Plan social housing qui précisément plus A pour bonne femme. Déjà peut-être à maman célibataire.
1: घोषणाएं आ रही हैं, उपाय एक एक करके सामने रखे जा रहे हैं। प्रिशिला उस चीज का इंतजार कर रही हैं जिसके लिए वो एक दशक से संघर्ष कर रही थी, मासिक धर्म अवकाश यानी मेंस्ट्रुअल लीव। बजट भाषण के दौरान इसकी घोषणा नहीं की जाएगी लेकिन ये कदम परिशिष्ट में शामिल होगा। उसने जो लड़ाई लड़ी थी वो अब हकीकत बन गई है। एक सकारात्मक बिंदु मेंस्ट्रुअल लीव है जिसे मंजूरी दी गई है। 10 सालों से इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, हमने जेंडर इक्वालिटी पर भी जोर दिया, यानी 12 महीने का मैटरनिटी लीव जबकि पैटर्निटी लीव 4 सप्ताह से 6 सप्ताह तक बढ़ाई जा रही है। सांसद जोआना बेगोंजे का भी मानना है कि पेरेंटल लीव पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। पेरेंटल लीव गायब हो गया है, ये 1 साल का मैटरनिटी लीव हो गया है। मैं पेरेंटल लीव के लिए लड़ाई लड़ रही हूँ क्योंकि ये एक गेम चेंजर होगा
3: l'accessibilité à l'emploi pour bonne femme. Parce que si bonne femme et bonne homme gagnent même congé, c'est-à-dire un congé parentalité, ils sont capables de décider en deux qu'ils en ont pour prendre combien.
1: पिज्जा आ गया है और बातचीत अब उपभोग पर केंद्रित हो गई है। बहुत से लोग कठिन स्थितियों में जी रहे हैं, इन लोगों की मदद के लिए अन्य विकल्प होने चाहिए थे। दिलशा, प्रिशिला और मोशस के लोग अब ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि ये उपाय व्यावहारिक रूप से उनके दैनिक जीवन में कैसे लागू होंगे।
0: साइबर जुर्मों में बढ़ोतरी हो रही है। 1 साल में 866 महिलाओं के साथ ऑनलाइन हरासमेंट हुआ है जबकि 548 पुरुष शिकार हैं। ये मसला ज्यादातर नौजवानों को मवस्सिर कर रहा है। 14 से 15 साल के शिकार नाबालिगों के साथ धोखाधड़ी के करीब 5,000 मामले दर्ज हुए हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने नौजवानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया। विषय रहा इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी के खिलाफ डिजिटल मजबूती। कुणाल गोजी, करुणा लालू।
4: 1 मिलियन से अधिक इंटरनेट यूजर और 21.6 मिलियन मोबाइल

0: मोबाइल ग्राहकों के साथ इंटरनेट की दुनिया में चुनौतियां और खतरे भी अनेक हैं। फर्जी प्रोफाइल, अश्लील तस्वीरों की अवैध बिक्री तथा टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म जो स्थानीय न्यायिक नियंत्रण के बाहर हैं, सभी अवैध ऑनलाइन गतिविधियों से केवल लगभग एक तिहाई मामलों का ही कारिक रूप से रिकॉर्ड रखा जाता है।
1: For the past 15 months, we are investigating into 57 cases related to cybercrime, electronic fraud and other related offenses.
0: कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम के अनुसार वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 30 साइबर दुरुपयोग के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, जबकि 2008 में ये संख्या माहवार केवल 5 थी। एक और चिंताजनक प्रवृत्ति, कम सीन उम्र, लगभग 100 पीड़ितों की आयु 13 वर्ष से कम पाई गई।
2: Il n'y a pas besoin même créer un faux profil, il commence à target sur une victime. Mais ce n'est pas le nombre, c'est la manière qu'ils ont de connecter, c'est la façon qu'ils ont de chercher d'informations, c'est la façon qu'ils ont de behave dans les sur les social media.
3: Les youtubeurs, ils target des jeunes, ils ont un crypto scam avec des jeunes, ou même ils ont dit, oui, comme le truc caché. Est-ce que l'illégal, mais est-ce qu'il y a une façon capable d'empêcher ces affaires-là?
4: Si je trouve un profil, puis trop série mal emotes, donc je trouve mal emotes, mal smiley, donc pour ça, c'est supposément une red flag. Un professionnel, à LinkedIn, je vais vérifier, un professionnel, un real person, un professionnel, il n'est pas pour série mal smiley.
5: Tout le temps, double check. Je vais prendre l'exemple de Facebook.com. Donc, tu nous avons un Facebook.com, mais là-dedans, il y a un spécial caractère. Donc, quand vous êtes visuellement, c'est Facebook.com. Mais quand les pays redirigent vers le lien, ce n'est pas Facebook.com. C'est un site identique qui fait Facebook.com.
0: साल की शुरुआत से अब तक 23 वित्तीय म्यूल्स अर्थात ऐसे लोग जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अवैध धन के हस्तांतरण में शामिल होते हैं एफसीसी की जांच के दायरे में हैं। ये नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है और इसमें केन्या तथा दक्षिण अफ्रीका के नागरिक भी शामिल हैं। अधिक प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस ने 2021 के साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम एक्ट में सुधार लाने का प्रस्ताव रखा है।
6: पीएमएसडी के नेता जावियर लुक जुवाल ने आज पोर्टवी में एक प्रेस सम्मेलन बुलाया। उन्होंने हालिया बजट भाषण पर टिप्पणी करते हुए कुछ खामियों और कंफ्यूजन का उल्लेख किया। उन्होंने पेंशन प्रणाली में सुधार लाने के लिए माहिरों के आयोग की सिफारिशों का खंडन किया। इसके अलावा जावियर लुक जुवाल ने सरकार में अनुशासन और समग्र जिम्मेदारी की कमी पर भी बात की। पीएमएसडी के नेता ने समाज सुरक्षा मंत्री के प्रेस सम्मेलन को भी दाद दी। क्रिस्टल लुब्रास, रजनी बेकर।
7: पीएमएसडी के सदस्यों ने राष्ट्रीय बजट के प्रमुख कदमों पर बात की। पीएमएसडी के नेता ने खासकर पेंशन सुधार से संबंधित फैसलों की आलोचना की, जैसे मींस टेस्टिंग शुरू किए जाने की बात को लेकर।
8: Côte avant, tu te payais environ 4 milliards de roupies en poste pensionnaire. Ces réformes-là, tu restes comme tu étais annoncé vendredi, tu te payais environ 10 milliards de roupies. Nous, PMSD, nous payons en gage, nous, l'eau, un retour au système de pension avant l'élection 2024.
7: दूसरी तरफ जावेद लुक जुवाल ने मैटरनिटी लीव को 12 महीने के लिए बढ़ाए जाने के कदम का अच्छा स्वागत किया। फिर भी उनका मानना है कि सरकार को इस कदम से जुड़े वेतन अंतर की जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी बात की गई, जैसे कि देश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। जावेद लुक जुवाल ने इस बात पर खेद जताया कि पुलिस फोर्स के उपकरणों की मजबूती के लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं है। अन्य मुद्दे पर भी टिप्पणी की गई, खरीद शक्ति में गिरावट और सार्वजनिक कर्ज।
6: वित्तीय साल 2026-2027 की पेशकश के चंद दिन बाद कॉन्फेडरेशन दे ट्रावायर दे सेक्टर पब्लिक और सेक्टर प्राइवेट सीटीएसपी आज प्रेस से मुखातिब हुआ। श्रमिक संघ ने मुख्तलिफ कदमों पर बात की जिनका असर मुर्शन परिवारों पर पड़ेगा। मुर्शस में बांग्लादेशी कामगारों के संदर्भ में हिंदू कॉमन प्लेटफॉर्म अधिकारियों के साथ बातचीत करना चाहता है। प्लेटफॉर्म के मुताबिक बांग्लादेशी कामगारों की भर्ती करने से देश में समस्या पैदा होगी। इस प्रेस सम्मेलन के दौरान कई हिंदू संगठन एकत्र हुए थे।

0: एक कुणाल गोजी की रिपोर्ट पर ये विवरण।
1: सरकार द्वारा बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्ती की अनुमति देने के हालिया फैसले को लेकर हिंदू कमन प्लेटफॉर्म ने अपनी आपत्ति और चिंताओं को सामने रखा है।
2: नुनाप्लिस की सेट आ जिस मिल बांग्लादेश की डॉला नेचर उपाका पा फे जी टू जी को उत्रूव मेम पे ही सो बन जिमुन पंको ट्रूवे पंको रामासे panko depoté azodi de pays du monde gouvernement comment ban bangladesh capable rentre de maurice voter écoute je capable débalance une élection dans une circonscription quand pas trouve ban mauricien dans une place ça veut dire je prends droit à voter mais bangladesh même li connaît na d'autre li pas là ça va pas voter।
1: इस प्लेटफॉर्म के अनुसार बांग्लादेशी श्रमिकों की भर्ती की प्रक्रिया और प्रणाली की समीक्षा की जानी चाहिए।
3: Zoji nous tenons une réunion avec l'objectif de ce regroupement là après le premier meeting qui nous fait à Goldcrest de ces jeunes nous tous nous venons ensemble pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec mon travailleur de Bangladesh.
4: Est-ce que l'autorité avant ils pensent pour amener 10,000 Bangladeshis, est-ce qu'ils conduisent un background check tout ça dans les affaires là? Il est aussi important l'autorité bien considérée.
5: Et si dans sa commune plateforme qui finit organisée, nous pas compte personne, mais il y a une circonstance qui nous peut guetter autour du monde, qui peut arriver, et surtout Bangladesh, qui peut faire. Donc, si un groupe peut venir ici, et comment votre comportement ici, qui votre fait ici, et comment votre fait une conspiration pour rester la même. À cause de ça, qui Human Service Trust n'est pas d'accord qui Bangladeshi pour venir dans Maurice.
2: Nous silence, c'est pas une faiblesse. Nous silence, c'est pas une approbation. Nous silence, pas ça veut dire qu'il nous peut dire oui. Nous silence, c'est un qui peut montrer nous peut coopérer avec la décision qui nous pas accepté pour amener Man Bangladesh ici à Maurice.
1: प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है इस मुद्दे पर संबंधित प्राधिकरणों के साथ संवाद स्थापित किया जाए, साथ ही उन्होंने पुलिस से भी आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है।
0: विदेश में कल लखनऊ भारत की एक इमारत में आग लगने से कम से कम 15 लोगों की मौत हुई। इस घटना के चलते एक जांच शुरू की गई है। इमारत में पेट शॉप भी थी। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक आग से बचने के लिए लोगों को इमारत से कूदते हुए देखा गया। वाशिंगटन में लेबनान और इसराइल के दरमियान नए सिरे से बातचीत शुरू। बेरूत ने सीधे तौर पर बातचीत करने का फैसला लिया, बावजूद ये कि ईरान और अमेरिका के बीच जंगबंदी की शर्तों में लेबनान को शामिल किया गया था। फ्रांस, स्पेन और पश्चिम तथा मध्य यूरोप में दूसरे मुल्कों की तरह तेज़ गर्मी की चेतावनी है। आने वाले दिनों में गर्मी की हालत ज़्यादा गंभीर होने का अनुमान है। कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। विधि मासिबुरन।
6: ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालिबाफ के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने 18 घंटे की वार्ता के बाद सोमवार को वार्ता स्थल छोड़ा। बैठकों में अमेरिका, पाकिस्तान और कतर के मध्यस्थ शामिल रहे। ईरान ने इस्लामाबाद समझौते के क्रियान्वयन और अंतिम समझौते की शर्तों पर अपना रुख स्पष्ट किया। वार्ता में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित व्यापारिक आवाजाही और लेबनान संघर्ष को कम करने के लिए एक डी कॉन्फ्लिक्शन सेल बनाने पर सहमति बनी। अमेरिका ने ईरान पर तेल निर्यात से जुड़े प्रतिबंधों को 60 दिनों के लिए हटा दिया है, जिससे ईरान अब अपनी तेल और पेट्रोकेमिकल उपज का निर्यात कर सकेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने दावा किया कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को देश में वापस आने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है। फ्रांस, स्पेन और पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के अन्य देशों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी किए गए हैं। आने वाले दिनों में गर्मी की स्थिति और अधिक गंभीर होने का अनुमान है, जिसमें तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोप में चल रही भीषण गर्मी के कारण फ्रांस में स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। इस लू की चपेट में आने से अब तक कम से कम 18 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पेरिस समझौते के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखने के लिए तीन सबसे बड़े पक्षों के बीच सोमवार को बातचीत शुरू हुई। इस दौरान यूरोपीय संघ के जलवायु आयुक्त ने कनाडा और चीन के

0: मंत्रियों के साथ मिलकर 2015 के ऐतिहासिक जलवायु समझौते के प्रति अपने समर्थन को फिर से दोहराया। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को पूर्वोत्तर भारत, पश्चिमी तट और दक्षिणी राज्यों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ इलाकों में लू की स्थिति भी बने रहने की संभावना है। सोमवार को उत्तरी भारत के लखनऊ शहर में एक इमारत में लगी आग में कम से कम 15 लोगों की मौत के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। इस इमारत में एक पालतू जानवरों की दुकान और एक एनिमेशन सेंटर था। चश्मदीदों ने बताया कि लोग बचने के लिए खिड़कियों से कूद रहे थे और केबल के सहारे नीचे उतर रहे थे, जबकि बचाव दलों ने लोगों की जान बचाने के लिए एक दीवार तोड़ दी। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। अधिकारियों ने कहा कि इमारत में आपातकालीन निकास का अभाव था और धुआं फैलने के कारण लोग अंदर ही फंस गए। कतर की सबसे बड़ी एलएनजी सुविधा जो रास्ताफान में स्थित है में हुए एक जोरदार धमाके में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 66 लोग घायल हो गए। इस विस्फोट को एक तकनीकी दुर्घटना बताया गया है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि पीड़ित विदेशी श्रमिक थे। इस घातक घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। रूस द्वारा रात भर किए गए हवाई हमलों में यूक्रेन में 6 लोग घायल हो गए हैं। मंगलवार तड़के राजधानी कीव में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया और लोगों को सुरक्षित स्थानों में जाने के लिए कहा गया। मोंट्रियल पुलिस ने बताया कि सोमवार सुबह कोत दी नेज इलाके में हुई गोलीबारी में एक पुलिस अधिकारी, एक नागरिक और एक संदिग्ध सहित कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। एक सशस्त्र और खतरनाक संदिग्ध के संबंध में पहले जारी किया गया आपातकालीन अलर्ट अब समाप्त कर दिया गया है। सोमवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य में इबोला संक्रमण के 1000 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जहां इस ताजा प्रकोप से अब तक 250 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। देश के राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान ने 1003 मामलों और 254 मौतों की पुष्टि की है, जिसमें मृत्यु दर 25% है।
1: और अब फुटबॉल की बात करते हैं। अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हुआ और अर्जेंटीना ने 2-0 से ऑस्ट्रेलिया को हराया है। मेसी ने एक बार फिर अपनी निराली काबिलियत का मुजाहिरा मैदान में दिखाया, जिससे पूरी दुनिया चौंके यानी दंग रह गई है।
2: एक बहुत ही कीमती जीत है नॉर्वे के लिए। इसके साथ बेस्ट ऑफ 32 का रास्ता खुल गया। सेनेगल को 3-2 से हराकर नॉर्वे ने इस वर्ल्ड कप में अपनी शानदार शुरुआत की पुष्टि की। ग्रुप आई के इस मैच में शुरू से ही तेज रफ्तार पर मैच खेला गया। दोनों टीमें बराबर खेल रहे थे। सेनेगल को कुछ अच्छे मौके मिले पर गोल नहीं बना। नॉर्वे मैच में धीरे धीरे पकड़ मजबूत कर पाया और पहला गोल स्कोर करता है मार्कस पेडरसन। इस गोल के बाद सेनेगल के डिफेंस में कुछ खामियां देखने को मिली। सेकंड हाफ में नॉर्वे के सबसे खतरनाक स्ट्राइकर अर्लिंग अलोन ने अपना गोल स्कोर किया। जब प्रतिद्वंद्वी टीम के क्षेत्र में गेंद मिलता है तो अलोन मौका नहीं देता। सेनेगल को जब झटका लगा तब नींद टूटी और इस्माइल असा एक गोल स्कोर करता है, पर इस गोल के बाद नॉर्वे उल्टा जवाब देता है, दूसरा गोल स्कोर करके अलोन का गोल। सेनेगल ने भरसक कोशिश की मैच में आने के लिए। इंजरी टाइम में जाकर इस्माइल असा अपनी टीम के लिए दूसरा गोल बनाता है। नॉर्वे 3 सेनेगल 2। इस ग्रुप में आखिरी मैच में नॉर्वे का सामना फ्रांस से होगा। सेनेगल का मुकाबला इराक से।
1: और आज रात पुर्तगाल और उज़्बेकिस्तान के बीच मुकाबला होने वाला है। ग्रुप एल में इंग्लैंड गाना को टक्कर देने वाला है रात के 12 बजे, जबकि पनामा और क्रोएशिया मैदान में उतरेंगे 3 बजे।
2: पुर्तगाल की टीम मैदान में उतर रही है। मकसद उद्देश्य एक ही है, पहले मैच के खराब परफॉर्मेंस को भूलकर वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल करना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कुछ खास नहीं कर पाया था पहले मैच में। कोच रोबर्टो मार्टिनेज को अपनी टीम पर पूरा विश्वास है। पुर्तगाल के सिलेसाओ के सामने

0: होगी उज़्बेकिस्तान की टीम जो पहली बार वर्ल्ड कप में है। पहले मैच में कोलंबिया के खिलाफ हार हुई थी पर इस टीम ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया था, एक गोल भी स्कोर किया था उज़्बेकिस्तान ने। कोलंबिया का आत्मविश्वास प्रबल है, पहले मैच में जीत हुई थी उज़्बेकिस्तान के खिलाफ। लुइस डियाज इस वर्ल्ड कप में अपना खाता खोल चुका है, उसे रोकना आसान नहीं होगा। काफेटेरोस टीम इस ग्रुप में फेवरेट है पर कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने पोर्टुगल को मुर्गा बना के रखा था, 0-0 का स्कोर था। निडर है ये टीम, मजबूत डिफेंस, काउंटर अटैक में घातक साबित हो सकती है ये टीम। ये मैच कल सुबह 6 बजे खेला जाएगा। ग्रुप एल में आज इंग्लैंड के द थ्री लायंस आ रहे हैं क्वालिफिकेशन का टिकट बुक करने। सामने होगी गाना की टीम, तगड़ा मुकाबला होगा। अपने पहले मैच में टोमास टुखेल की टीम ने आक्रामक फुटबॉल के साथ 4 गोल स्कोर किए थे पर डिफेंस में छेद है, 2 गोल कंसीड हुए थे क्रोएशिया के खिलाफ। गाना की टीम की भी जीत हुई थी 1-0 से पनामा के खिलाफ। आक्रामक गति है कोंगो की टीम में। ये मैच रात्रि के 12 बजे MBC 11 पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। पनामा वर्सेस क्रोएशिया, दोनों पहला मैच हार कर आ रहे हैं, मतलब जो आज हारेगा वर्ल्ड कप के अगले राउंड का दरवाजा लगभग बंद हो जाएगा। क्रोएशिया ने फर्स्ट हाफ में इंग्लैंड पर 2 गोल दागे थे, इंग्लैंड को चौंकाया था। अनुभवी टीम है क्रोएशिया, पनामा को हराना आसान नहीं होगा। अंतिम मिनट में जाके गाना ने पनामा को हराया था। ये मैच कल सुबह 3 बजे।
1: बुलेटिन के आखिर में करते हैं मौसम की बात। आम हालत मस्किरिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन की वजह से हमारे इलाके में ठंडी हवाएं चल रही हैं और ठंड महसूस हो रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात घने बादल होंगे और हल्की वर्षा होगी, खासतौर पर हवाई ढलानों और ऊंचे इलाकों में। हवा दक्षिण पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा, दक्षिण में 3.50 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दूर समुद्र में न जाने की सलाह है। तापमान सेंट्रल प्लेटो में न्यूनतम तापमान 15 से 17, अधिकतम 20 से 23, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 19 से 21, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 7:45 बजे सूरज उगेगा और शाम को 5:39 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो ये थी अब तक की खबरें, अब तक के बुलेटिन पहुंचाने में हमें समाचार और फ्रेंच विभागों और हमारी तकनीकी साथी अपर्णा बदलोगन की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आदाब, शुभ रात्रि। एमबीसी के साथ जुड़े रहिए।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस बुधवार 24 जून 2024 पायोत आर्य समाज में दिन के 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। गायत्री जयंती के संदर्भ में वाल्टो रोड मोताईलोंग के वेद माता गायत्री शक्ति पीठ बुधवार 24 जून को सुबह 9 से दिन के 12 बजे तक 24 कुंडिया गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहा है। गायत्री जयंती के संदर्भ में प्लेन दे रोश के सरस्वती मंदिर द्वारा बुधवार 24 जून को शाम 6:30 बजे से रात्रि के 8 बजे तक महायज गायत्री चालीसा कीर्तन और प्रवचन का आयोजन किया गया है।
3: MBC Radio 24 hours a day.
4: विज्ञप्ति सुनिए। सीबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि
5: इन जगहों में बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 24 जून को पिछी वैश्य पॉइंट साबल में विशेषकर मोसिल माली रादे दे बुगैविली में सुबह 9 बजे से

0: दिन के 12 बजे के बीच प्लैंडेगोश में विशेषकर रॉयल रोड डालिया रोड तथा जुमन रोड में सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे के बीच और पॉइंट सैबल में विशेषकर सोहन लेन तथा तटीय इलाकों के एक हिस्से में सुबह 9 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच और गुरुवार 25 जून 2026 को मोसिलमा तिरासिन मोसिलमा लेडी बॉकली सुलियाक व एनएचडीसी तिरासिन में सुबह 8:30 बजे से दोपहर के 3 बजे के बीच मरम्मत कार्यों के बाद बिना पूर्व सूचित के बिजली की आपूर्ति पुनः जारी की जाएगी। इस कटौती के कारण सीबी क्षमा प्रार्थी है।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस Center 95.5 North South 95.6 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music all day all night right here on your one and only station
5: शाम के 6:30 बज चुके हैं दोस्तों। नमस्कार आप सबको। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन के साथ। आज मंगलवार 23 जून 2026 और आप लोग सुन रहे हैं नई सोच कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाऊंगी 7 बजे तक। और नई सोच कार्यक्रम के बाद जी हाँ आप सुन पाएंगे दिनों की आवाज़ प्रोग्राम। जी हाँ रोज़ की तरह यहाँ पर आज आप सुन पाएंगे 80s और 90s के खूबसूरत गाने। अभी के लिए चंद खूबसूरत भावगीत आप लोगों के नाम

जीवन के दिन बहुत ही छोटे हैं दोस्तों, इसलिए हर पल को महसूस करना चाहिए, क्योंकि आज है कल क्या पता। सोनू निगम की आवाज़ में अग्निपथ फिल्म से लिया गया ये अगला गाना सुनिए।

जहाँ जब यार ऐसा हो तो हर एक पल को हम कभी नहीं भूल पाएंगे। चलिए ये साथी फिल्म्स का ये खूबसूरत गाना सुनते हैं कुमार सानू और विपिन सचदेव की आवाज़ों में। और इसी गीत के साथ ये प्रोग्राम नई सोच कार्यक्रम यही समाप्त हो चला, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, 7 बजे के बाद ढीलों की आवाज़ प्रोग्राम आप सुनेंगे।

सात बज चुके हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मनोरंजन और एम फ्री रेडियो के साथ, और मैं उषा कौर यहाँ पर साथ निभाने के लिए। आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। जी हाँ, आज मंगलवार 23 जून 2026, ये कार्यक्रम आप लोगों के नाम हम कर रहे हैं। श्रोताओं, प्यार की शाम में हर खामोशी भी एक खूबसूरत बात बन जाती है, और जब प्यार साथ हो तो शाम भी चांदनी जैसी सुकून भरी लगती है। और यहाँ पर आपको याद दिला दें, हमारा फ़ोन नंबर है 5250-6200। आप हमें मैसेजेस कर सकते हैं, ऑन फ़ोन कर सकते हैं ऑन 4028070।

0: दिलों की आवाज
1: 7:20 को है श्रोताओं और आप लोग जुड़ चुके हैं बहुत बहुत धन्यवाद 90s के खूबसूरत तराने आप लोग एंजॉय कर रहे हैं जी हाँ और आज की शाम आप लोगों के नाम और हम यहाँ पर डेडिकेट करेंगे अगला गाना मानती जी के लिए जो हमें सुन रही है मेबर्ग से धन्यवाद आप साथ दे रही हैं और साथ में रोहित जी जो हमें सुन रहे हैं फ्रॉम बोबासे बहुत ही प्यारा गाना डर का ये खूबसूरत गाना चलिए उदित नारायण की आवाज़ में

साढ़े सात बज चुके हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ प्रोग्राम। जी हाँ, हम यहाँ और आप लोग वहाँ हैं, लेकिन फिर भी ये जो केमिस्ट्री है हमारे बीच और आपके बीच, क्या बताएं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग सुन रहे हैं और हम आपको कहते हैं बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत प्रोग्राम में और इस शाम को रंगीन बनाने के लिए अगला गाना सुनते हैं। सैनिक फिल्म से लिया गया ये बहुत ही प्यारा गाना, जी हाँ, कुमार सानू की आवाज़ में, और ये गाना हम चलाएंगे गिरीश हरलोल के लिए जो इस समय साथ दे रहे हैं।

दिल मेरे तो दीवाना है जी हाँ, बहुत ही प्यारा गाना फिल्म सूर्यवंशम फिल्म से लिया गया जी हाँ, जिसमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन साहब। बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही भावनायक मूवी है। और ये गाना इश्मिता जी के लिए जो हमें सुन रही है कथोवन से साथ देने के लिए, थैंक यू आपको।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज
1: 7:55 हुए हैं, बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हमने जैसे कहा है कि हम लाइव टिकटॉक भी करेंगे और वैसे हो रहा है यहाँ पर और इतने सारे लोग जुड़ चुके हैं, आपको हम कहेंगे बहुत बहुत

और साथ ही साथ में गाना जाएगा माधुरी जी के लिए, जय के लिए, और सूरज सजादा जी के लिए जो रहते हैं त्रियोले, दिनेश गोपी हैं और साथ में हैं सिद्दिक जी हैं, मोहिनी कौतिक सुविता है, अनिस आपके लिए, और क्या कहें यहाँ पर साधना है फ्रॉम लालमाटी, आपके लिए भी गाना जाएगा। हमारी प्यारी सुदेवी जी जो हमें सुन रही हैं, आपके लिए दस कोल है, और स्वीटी है जी हाँ, स्वीटी गाना मांग रही है। चलिए बाद में आपका गाना हम चलाएंगे। और यहाँ पर किरण है, किरण भी हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच, और नेपाल से भी लोग हमें सुन रहे हैं, तो चलिए। और साथ में नीरम है, और आर्ज प्रताप जी हाँ, आर्ज प्रताप हमारे कॉलीग्स जो है हमें सुन रहे हैं, वो भी आर्ज प्रताप सिंह, और गाना वो मांग रहे हैं आशा रियाना, संगीता और डॉक्टर अंजू के लिए। रेशमा है, नमस्ते आपको, राजेश जुतन है, हेलो आपको, और साथ में है माया रामदोस, आपको भी हम कहते हैं नमस्ते। और रेशमा जी हाँ, चलिए अगला गाना सुनते हैं। नीलिमा के लिए भी गाना जाएगा, और वो रहती है नुवेल फ्रांस।

0: दिलों की आवाज की आवाज की आवाज।
1: हाँ, ये तो सच है कि पहला प्यार जो है हमेशा पहला प्यार ही रह जाता है। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं सुबी जी, उनके लिए अगला गाना मोहरा फिल्म से लिया गया, हम लेकर आए हैं उनके लिए। और साथ में सैरा बानू है जो हमें सुन रही है, और साथ में कोकोला सानिश भी जुड़ चुके हैं, आवी सैन है, और प्यारी सी लक्षिता उनके लिए भी गाना जाएगा। और यहाँ पर खास गाना हम चलाएंगे इंद्रानी जी के लिए जो हमें सुन रही है क्यूपिप से, आपके नाम, आपके लिए गाना और आपके परिवार के लिए भी। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, बस उनका नाम ही हम जपते रहते हैं क्योंकि प्यार उन्हीं को हम करते हैं।

0: दिलों की आवाज, की आवाज, दिलों की आवाज।
1: आठ बजकर 11 मिनट हुए हैं। जी हाँ, सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आप सुनते रहते हैं खूबसूरत गाने, खासकर RM Free पर, रेडियो मनोरंजन पर। और आपके मनोरंजन के लिए यहाँ पर प्रस्तुत है दिलों की आवाज़ प्रोग्राम, और 9 बजे तक आप सुन पाएंगे ये कार्यक्रम। और जो साथ दे रहे हैं उनको हम कहेंगे तहे दिल से धन्यवाद। 8 बजकर 12 मिनट, और यहाँ पर जुड़ चुकी हैं मालिनी विश्राम, उनको हम कहते हैं नमस्ते। साम गुलामोली, आपके नाम भी गाना जाएगा। सालिमा, जी हाँ, आपके लिए भी हम गाना चला रहे हैं। वसंती गोकुल जो है उनके लिए भी, और शारदा लखनऊ जी नमस्ते आपको। और विमला माथुर जो है गाना मांग रही है, फिल्म जान तेरे नाम, जी हाँ फिल्म का नाम है जान तेरे नाम। और साथ में है प्रवीण कुमार बंदुआ, आपके नाम भी हम गाना चला रहे हैं। सारामा, थैंक यू फॉर लिसनिंग। और यहाँ पर हमें सुन रहे हैं राजन जी फ्रॉम UK, जो हमेशा वो साथ देते हैं। धन्यवाद आपको।

0: RM3 Radio. Radio. Radio.
1: चलिए अगला गाना एक रोमांटिक गीत अदनान सामी की आवाज़ में उन सभी लोगों के लिए जो घर पर है इस समय और काम से वापस घर आ गए हैं और इस रोमांटिक सॉन्ग आपको रिलैक्स करने के लिए साथ में यहाँ पर हमें सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं यू नो और अनिस्ता रामटोहल आपके लिए भी राजीव आपके नाम गाना जाएगा अंजु मौगा फिया जाद गंगादीन मनीष है थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग नाइम सिरातन आपके लिए भी प्रकाश और अनिता प्यातब जी आपके लिए जो रहती है फिकॉफ्लाक और खासकर स्वीटी के नाम

अगला गाना चलिए रोमांटिक गाना जन्नत फिल्म से लिया गया एक ऐसे कलाकार की आवाज़ में के जो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन फिर भी आज उनके गाने हम सीने से लगाकर और एंजॉय करते हैं उनके गाने यहाँ पर हम गाना चलाएंगे दीपक बुढ़ू ड्राइवर के लिए फ्रॉम समवन हु लव्स हिम सो मच क्या बात है और राजेश जुतन है जो हमें सुन रहे हैं आपके लिए भी और दीप मेहरा है जो गाना मांग रहे हैं अपनी वानी के लिए जी हाँ वानी के लिए गाना मांग रहे हैं बहुत धन्यवाद आपको वो है और आप है ऋषि गोपी आरती राम सहाय और साथ में हमारी प्यारी डॉक्टर पूनम कुमारी जी भी है वो भी सुन रही है इस समय तो उनके लिए और सूरज सिबागन आपके लिए भी गाना हम चलाएंगे हाई टू यू और जावेद है रोमांटिक गाना मांग रहे हैं वशिष रागुन जागरनत है आपके नाम भी और लचम सिगोबिन आपके नाम हम गाना चला रहे हैं अगला गाना अंजलि चेतिया आपके नाम अगला गाना सुनते हैं और वैदेही के लिए भी बीबी सुमैया आपके नाम और खासकर जो लोग इस समय गाड़ी चला रहे हैं और हमें सुन रहे हैं आपके लिए भी ये गाना एंड फॉर एलियाना आल्सो

0: RM3 Radio. Radio.
1: आठ बजकर 33 मिनट हुए हैं और चलिए सुनते हैं अगला गाना वशिष के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं आपके लिए, और खास गाना हम चलाएंगे मंजुलिका के लिए। साथ में है परी और लवना। जी हाँ, लवना गाना मांग रही है अपनी भतीजी नवनी पसंद, आज उनका जन्मदिन है। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद उनकी मौसी अनुषा की ओर से।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: जी हाँ दोस्तों, अभी तो 8:40 होने को है, और हमेशा जैसे कि हम कहते हैं, इतने सारे लोग सुनते हैं यहाँ पर ये कार्यक्रम, अच्छे अच्छे लोग हैं, और आपका प्यार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, इंकरेज करता है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। तो यहाँ पर गाना जावेद के लिए फिल्म राजा हिंदुस्तानी से लिया गया, हम चलाएंगे। और जी हाँ, प्रिंसेस नाज है जो गाना मांग रही है अली के लिए।

वैसे उदित नारायण और उनकी आवाज कहते हैं ना एक ही है लाखों में एक अभी हमने सुना ना फिल्म राजा हिंदुस्तानी का एक खूबसूरत गाना उदित नारायण अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजों में चलिए उदित जी की आवाज को हम सुनते हैं एक बार फिर से पापा कहते हैं फिल्म से लिया गया और गाना हम चला रहे हैं आशा की ओर जी हाँ गाना वो मांग रही है साफा और वाहिदा के लिए रोशन जो है हमें सुन रहे हैं आपके लिए भी गाना जाएगा लाली जो है हाय टू यू हरमनदीप दिलन जी आपके लिए भी और मिस्टर तरुण राम आपके लिए गाना बिस्वानी जुमन जी है विजया लक्ष्मी है चलिए गाना सुन

8:55 हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और आज का ये आज का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त होने चला है। आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। इसी गीत के साथ उषा को दीजिए अनुमति। मिलते हैं बहुत जल्द। नमस्कार, शुभ रात्रि।

रात के 9:07 हो गल बा भोजपुरी तड़का के पसंद करे लोगन भाई बहन और मित्र लोगन तोहर एकदम सालन पूर्वक का स्वागत बाते ई रात के बेला में हर रात्रि के रेडियो मॉरिशस से जुड़े के बहुत धन्यवाद मन करता है एगो बढ़िया भोजपुरी गीत सुने के तब बिना हिचहिचकाए फरमाइश करसा तुरंत पूरी करे और कोशिश करबसा नंबरवा घुमावा 402-80-85 उषा तुहर संगे रात्रि के 11 बजे ले तो चला किशोर किमिया के गावल गीत आज का पहल का गीत सुना जा

रात के 9:17 श्रोता लोग, इतना फुटबॉल के मैच रोज के रोज मिलता देखे के यही वर्ल्ड कप की जादू चार साल ले एक बार आवेला एमबीसी प्ले डाउनलोड कर ला कि नहीं अगर नहीं तो देर का है चला तो चला अगला गीत सुनाव जा नीरज गुप्ता मधु के गावल गीत सुजाता के लिए जो हमने के सुनता रोजिल से और गाना मांगा तवंजा अपन खातिर और अपन पर अपने परिवार खातिर

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: रात के 9:32 हो गल बा श्रोता लोगन और एक सप्ताह में तो आधा बारिश गुजर जाए अपन ख्याल रखत हवा कि नहीं व्यायाम करत हवा अच्छा भोजन के सेवन करत हवा ऐसा आशा करत है काहे कि स्वास्थ्य ही तो सोना है और स्वास्थ्य से बढ़कर तो कुछ नहीं बा स्वास्थ्य रह मस्त रह और अगला गीत चला भोजपुरी बॉयज के गावल गीत खासकर विशाल भाई की खातिर और एक धर्म पत्नी रीना खातिर और ई बखत जितना कोई की काम करा था वो एकर खातिर है ई गाना

सुनो बस तू ऐसे काम पड़ल बा।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का।
1: रात के 10:03 हो गलबा और हियाँ परी सुदेवी जी जो हमने के सुना था वाकवा से गाना मांगा था वंजा दीदी ललिता खुशल परिवार आत्माराम भैया सुनीता दीदी शोभा देवीना मालेंगा के राम रतन परिवार राम गुलाम परिवार कुआरू परिवार खातिर। तो चला अगला गीत सुना

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का।
1: धोलो मारे भा...

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का, तड़का।
1: रात के 10:16 हो गए बा श्रोतालोक रविवार के विश्व भर में संगीत दिवस मनावल गल सगरो सगरो संगीत के महफिल और कार्यक्रम के आयोजन करल गल कलाकार लोगन अपन कला के प्रदर्शन करलन यह संगीत के प्रति स्नेह और प्रेम संगीत तो पूजा है उपासना है स्तुति है माता सरस्वती के पावन मन से सोचबत तुहर कल्याण अवश्य होए। चल अगला गीत सुना रंभा राम तुहर के गावल गीत और ये गाना खास कर अनीता जी खातिर जोन हमनी के ये वक्त सुना ताफी कॉन्फ्लैक्स से धन्यवाद गानाएकर खातिर और अपन संगतिया खातिर

0: भोजपुरी तड़का
1: रात के 10:37 हो गए बाशुरा लोग और यहाँ पर महेंद्र जी जो हमने के सुना था ये वक्त और गाना मांगा था वन जा बिल बिल दे मोसी भोजपुरी बॉयज के गावल की धन्यवाद तो रात चला ये गाना तुहर खाते

0: तो संगतिया लोग जब दो घंटा गुजर गल पता ही नहीं चलल आ गया दे के वक़्त आ गए बातें हमेशा खुश रहिए हमने के मुलाकात काल होए आपकी पसंद कार्यक्रम में अंताक्षरी प्रोग्राम में भी
1: से क्या होगा जब बत्ती से धुआं निकलने लगी
0: तो चला उषा की और शुभ रात्रि नमस्कार
1: जब असर के भूत सर से उतर गया तो अरे गुनी बुलाने से क्या होगा जब देवता देवी आसन छोड़ दिया तो खीर पूरी चढ़ाने से क्या होगा आ भर पेट जब भात खा लिया तो अब खुदी चुनने से क्या होगा अरे गंदे पानी पीकर प्यास बुझा लिया तो कुआं में डुबकी लगा

अरे रिश्ता जोड़ने से क्या होगा, अपने घर के कुत्ता जब काट दिया तो पुलिस को बताने से क्या होगा। अरे सफेद चादर में दाग लग गई तो अरे नदी में जाकर धोने से क्या होगा, जब घर की चौखट साफ किया नहीं तो आंगन

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। प्रणाम श्रोताओं, सुनहरे पल कार्यक्रम है रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। एक बार फिर आपके नीतु आपके समक्ष रात्रि के 12 बजे तक। एक्टर्स हो, एक्ट्रेसेस हो, संगीतकार, गीतकार, गीत, बोल, शब्द, सुर, ताल, यही तो है सुनहरे पल जिनकी यादें उभर कर आती हैं हर रोज। आज हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता संजय खान, इनका नाम उन कलाकारों में शुमार किया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिभा, मेहनत और लगन के दम पर बॉलीवुड और टेलीविजन की दुनिया में एक खास पहचान बनाई। आज का ये सफर उनके नाम।

वैसे उनका जन्म 3 जनवरी 1941 को बेंगलुरु में हुआ था। संजय खान वैसे प्रसिद्ध एक्टर फिरोज खान के भाई हैं और दोनों भाइयों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग अलग पहचान बनाई।

संजय खान ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1960 के दशक में की। उनकी पर्सनालिटी, दिलकश मुस्कान और शालीन अभिनय ने दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्मों में काम किया, जिनमें दोस्ती, एक फूल दो माली, इंतकाम, मेला, धुंध, धड़कन जैसे नाम शामिल हैं। उनकी फिल्मों में रोमांस, ड्रामा और भावनाओं का सुंदर संगम देखने को मिलता था।

संजय खान की एक्टिंग स्टाइल बहुत ही सरल और प्रभावशाली रही। वो कभी भी अत्यधिक नाटकीय अंदाज पर निर्भर नहीं रहे। उनके चेहरे के भाव, आंखों की भाषा और संवादों को बोलने का अंदाज ही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। वो हर किरदार में एक गरिमा और सच्चाई लेकर आते थे, जिस वजह से दर्शक उनके किरदारों से जुड़ जाते थे। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत मजबूत थी और वो रोमांटिक हीरो के रूप में खास तौर पर पसंद किए जाते थे।

फिल्मों के साथ साथ संजय खान ने टेलीविजन की दुनिया में भी इतिहास रच दिया। उनका सबसे बड़ा और यादगार योगदान था द सॉर्ट ऑफ टीपू सुल्तान। इस भव्य टेलीविजन सीरियल ने भारत के घर घर में लोकप्रियता हासिल की। इस सीरियल के निर्माण और निर्देशन में संजय खान ने अपनी पूरी प्रतिभा और समर्पण लगा दिया था। वैसे टीपू सुल्तान के जीवन को पर्दे पर इतनी भव्यता और गौरव के साथ दिखाना उस समय एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई।

वैसे उनके जीवन में एक बहुत ही दुखद घटना भी आई थी जब द सोट ऑफ टीपू सुल्तान के सेट पर भयंकर आग लग गई। इस दुर्घटना में संजय खान गंभीर रूप से जल गए थे और उन्हें कई सर्जरी से गुजरना भी पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी इच्छा शक्ति और अपने संघर्ष के बल पर वो फिर से खड़े हुए और अपने अधूरे सपनों को पूरा किया। उनकी ये कहानी आज भी हौसले और जज्बे की मिसाल मानी जाती है।

श्रोताओं, संजय खान सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक सफल प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी रहे हैं। उन्होंने हमेशा गुणवत्ता और भव्यता को महत्व दिया। उनके प्रोजेक्ट्स में इतिहास, संस्कृति और देशभक्ति की झलक देखने को मिलती है। इसी वजह से उन्हें मनोरंजन जगत में एक दृष्टिकोण वाले कलाकार के रूप में देखा जाता है।

आज भी संजय खान का नाम हिंदी सिनेमा और टेलीविजन के इतिहास में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं बल्कि संघर्ष, धैर्य और कभी हार न मानने वाले जज्बे से मिलती है। एक एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और प्रेरणा के स्रोत के रूप में संजय खान ने भारतीय मनोरंजन जगत को अमूल्य योगदान दिया है और उनकी विरासत हमेशा याद रखी जाएगी। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग NBC रेडियो
1: निंजे नीले

0: I love you
1: NBC Radio हर पल आपके साथ।